90.8 FM झाबुआ की आवाज में आपका स्वागत है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ भक्तिमय दिव्य दर्शन में। ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सुनते रहें रेडियो टंटिया भील 90.8 FM। सन 1884 की बात है। कलकत्ता में उन दिनों चैतन्य लीला नाटक की धूम मची हुई थी। बड़ी संख्या में लोग वो नाटक देखने जा रहे थे और उसकी काफी प्रशंसा भी कर रहे थे। कुछ भक्तजन स्वामी रामकृष्ण परमहंस को महान भक्त चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर आधारित इस नाटक को दिखाने के लिए नाट्य गृह में ले गए। विनोदिनी दासी नामक नगर वधु ने चैतन्य लीला में सजीव अभिनय किया। स्वामी रामकृष्ण उसके अभक्तिपूर्ण अभिनय को देखकर अभिभूत हो उठे। उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। नाटक की समाप्ति के बाद जब विनोदिनी ने दर्शक दीर्घा में स्वामी रामकृष्ण को बैठे देखा तो वो भागी भागी उनके पास पहुंची और उन्हें प्रणाम करके गदगद हो गई। स्वामी जी ने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी तुम्हारा अभिनय बहुत प्रभावी है, जीवन उसी के अनुरूप ढालो तो कल्याण हो जाएगा। विनोदिनी दासी एक महान सिद्ध संत के आशीर्वाद स्पर्श से सुदबुद खो बैठी। उसका जीवन बदल गया। जीवन पर्यंत वो भक्ति और साधना में लगी रही।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ। बने रहिए मेरे साथ। मैं हर रोज गुनाह करता हूँ, तू हर रोज माफ कर देता है। मैं आदत से मजबूर हूँ, तू रहमत से मशहूर है।

इंग्लैंड का पादरी जोसेफ करुणा के आध्यात्मिक शक्ति में अटूट विश्वास रखता था। दीन हीन और बेसहारा लोगों के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। एक बार की बात है, एक दिन एक बहुत ही कुख्यात अपराधी पुलिस की निगाहों से बचता हुआ पादरी के घर पहुंच गया। पादरी ने उसे शरण दी, भोजन कराया और रात को आराम करने की भी स्वीकृति दी। अपराधी ने देखा कि पादरी की मेज पर चांदी के दो दीपदान रखे हुए हैं। पादरी सो गया तो उसने दीपदान उठाकर जेब में रखे और वहां से भाग निकला। वो कुछ ही दूर जा पाया था कि पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसने पुलिस को बता दिया कि वो दीपदान उसने पादरी के घर से चुराए हैं। पुलिस उसे पादरी के पास लेकर आई। पादरी को दीपदानों की चोरी का पता लग गया था। उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, इसे छोड़ दीजिए, ये दीपदान तो मैंने अपनी इच्छा से इसको दिए थे। पादरी के शब्द सुनकर चोर पानी पानी हो गया। उसने उसी समय प्रभु में अपना दिल लगाने का निश्चय किया और भविष्य में अपराध न करने का संकल्प लिया। अब वो पादरी जोसेफ के शिष्य के रूप में दीन हीनों की सेवा का कार्य करने लगा।

कन्नौज राज की एक विधवा ब्राह्मणी बहुत ही गरीबी के बावजूद अपने 5 पुत्रों को गुरुकुल में अच्छी शिक्षा दिला रही थी। वो रोज चरखे पर सूत काटकर अपना और पुत्रों का जीवन यापन करती थी। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया उसने। कन्नौज के एक धार्मिक सेठ ने ब्राह्मणी के गरीबी में दिन गुजारने की बात सुनी तो वो उसके पास गए। बड़ी ही विनम्रता से उन्होंने कहा, क्या मैं आपकी कुछ आर्थिक मदद करके अपने को धन्य कर सकता हूं? ब्राह्मणी ने कहा, सेठ जी, मैं गरीब बिल्कुल नहीं हूं। मेरे पास तो 5 अमूल्य रत्न हैं। आपकी सहानुभूति के प्रति मैं कृतज्ञ हूं। सेठ जी ने कहा, मुझे अपने अमूल्य रत्न तो दिखाइए। कुछ देर बाद उसके 5 बेटे गुरुजी के आश्रम से वापस लौटे। आते ही उन्होंने मां के चरणों को स्पर्श किया। उसके बाद सामने बैठे हुए सेठ जी को हाथ जोड़कर अभिवादन किया। ब्राह्मणी ने संस्कृत में कहा, पश्यमय पंच रत्नानी, और सेठ उन 5 रत्नों को देखकर कह उठे, वास्तव में माताजी, आपके इन अनूठे मात्र भक्त संस्कारी 5 रत्नों के होते हुए आपको दरिद्र समझना मेरी भारी भूल थी। जिसकी संतान आज्ञाकारी, संस्कारी और योग्य हो, उससे बड़ा धनवान कौन होगा।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर और आप सुन रहे हैं दिव्य दर्शन के भजन। सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, जो तुम चल सको तो चलो। इधर उधर हैं कई मंजिलें, इधर उधर हैं कई मंजिलें, जो तुम चल सको तो चलो। बने बनाए हैं सांचे, जो तुम ढल सको हाँ तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहां बदलती है जिंदगी, जो तुम खुद को बदल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। यहां कोई किसी को नहीं देता रास्ता, जो मुझे गिरा कर चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो।

दोस्तों, प्रार्थना करो न केवल इसलिए कि आपको कुछ जरूरत है, पर इसलिए कि आप शुक्रगुजार हैं जो कुछ भी आपके पास है। शायद मेरे पास सब कुछ नहीं, पर ईश्वर ने मुझे वो सब दिया है जिसकी मुझे जरूरत है। मैं इसके लिए ईश्वर का आभारी हूं।

एक बार कुछ शिक्षक आचार्य महाप्रज्ञ के सत्संग में पहुंचे। महाविद्यालय के एक प्राचार्य ने कहा, आचार्य जी, अन्य क्षेत्रों की तरह शिक्षा का भी अवमूल्यन होते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब स्कूल कॉलेज तो बिजनेस बनते जा रहे हैं, आपकी नजर में इस पतन के क्या कारण हो सकते हैं? आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा, ज्ञान का तो सार है आचार। दूध में मक्खन ना निकले तो दूध को सारोहीन मानना पड़ेगा। अगर दूध से मक्खन ना निकले तो दूध बेकार है। नैतिकता पर ध्यान नहीं देने के कारण ही आज शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट दिखाई दे रही है। जब से शिक्षा का उद्देश्य धन कमाना और नौकरी करने के लिए सीमित हो गया है, तब से यही गड़बड़ी शुरू हो गई। गुरुदेव आचार्य तुलसी ने भी कहा है, शिक्षा केंद्रों से ऐसे छात्र निकलने चाहिए जिनका आदर्श जीवन हो और वो जिस क्षेत्र में जाएं वहां नैतिकता का आदर्श स्थापित करें। लेकिन आज तो डिग्री पाने के लिए और फिर उसके बाद धन कमाने की होड़ चल पड़ी है। कोरे बौद्धिक विकास से न तो राष्ट्र का भला होगा न ही समाज का। बौद्धिक विकास के साथ साथ भावनात्मक विकास भी जरूरी है। जब तक नैतिक मूल्य सदाचार की शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसे उद्देश्य नहीं बनाया जाएगा, तब तक देश और समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आप कुछ भी कर लें।

दोस्तों, भक्ति में दिव्य दर्शन में आज इतना ही। कल हम फिर नए भजनों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सुनते रहिए।

0: कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
1: हेलो हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3, एनर्जी चेक, चाय रेडी, दिल रेडी। मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट

0: सोचो, बातें इधर की उधर की, जहां बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुंचती हैं। यहां हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहां फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM।
1: यह कैसा जादू मेरे लिए तो सच भी भरम है। सुनिए
2: कहिए कहिए,
1: सुनिए सुनिए,
2: कहिए कहिए।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी तनुषा, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, और लेकर आई हूं एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड बातें इधर की उधर की। आज की कहानी शुरू होती है एक छोटी सी मक्खी से, जिसे हम आम तौर पर देखते ही हाथ हिलाकर भगा देते हैं। हां जी, मैं बात कर रही हूं हनी बी की, एक छोटी सी मधुमक्खी। लेकिन जरा सोचिए, इतनी छोटी सी जान, इतना छोटा सा दिमाग, और फिर भी पूरी की पूरी कॉलोनी को कैसे पता होता है कि कब क्या करना है, कौन खाना ढूंढेगा, कौन छत्ता संभालेगा, कौन बच्चों का ध्यान रखेगा, कौन खतरे की खबर देगा, और सबसे बड़ी बात, ये सब डिसाइड कौन करता है? क्या कॉलोनी में कोई एक बड़ी सी मक्खी होती है जो रानी मक्खी होती है, जो सबको इंस्ट्रक्शंस देती है? सुनो भाई, तुम उधर जाओ, तुम फूलों से रस लेकर आओ, तुम गेट पे खड़े रहो, और तुम, हाँ तुम, इतना शहद मत खा जाना कि बाकी सबके लिए कुछ बचे ही ना। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता दोस्तों। हनी बी कॉलोनी में कोई एक बॉस नहीं होता, कोई सीईओ नहीं होता, कोई मैनेजर नहीं होता, कोई चेयरमैन नहीं होता, और कोई डेली मीटिंग्स तो बिल्कुल नहीं होती। सबसे बड़ी बात, कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं होता जहां हर सुबह मॉर्निंग मैसेज आए, गुड मॉर्निंग टीम, लेट्स कोऑर्डिनेट। फिर भी ये छोटी छोटी मधुमक्खियां मिलकर एक ऐसी दुनिया चलाती हैं जो हैरान कर देने वाली है। साइंटिस्ट्स जब हनी बी के दिमाग और उनकी कॉलोनीज का बिहेवियर समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझ आ रही है। पूरे ग्रुप को चलाने के लिए हमेशा एक सेंट्रल बॉस की जरूरत नहीं होती, कभी कभी हजारों छोटे छोटे फैसले मिलकर एक बहुत बड़ा और बहुत समझदार फैसला बना देते हैं। मतलब एक हनीबी को पूरी कॉलोनी का प्लान पता नहीं होता, उसे ये नहीं पता होता कि आज पूरी कॉलोनी कितना खाना जमा करेगी, उसे ये भी नहीं पता होता कि अगले हफ्ते मौसम कैसा होगा, उसे सिर्फ अपना छोटा सा काम पता होता है, फूल ढूंढो, रस लेकर आओ, खतरा दिखे तो सिग्नल दो, और जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो दूसरों तक पहुंचाओ, बस इतना ही। लेकिन जब हजारों हनी बीज एक साथ छोटे छोटे काम करती हैं, तो पूरी कॉलोनी एक इंटेलिजेंट सिस्टम की तरह बिहेव करने लगती है, और यही बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक हनी बी अकेली शायद बहुत कुछ ना कर पाए, लेकिन पूरी कॉलोनी एक अलग ही दुनिया है। सोचिए, एक हनी बी को कहीं दूर एक ऐसी जगह मिलती है जहां बहुत सारे फूल खिलते हैं, वो अकेली वहां बैठकर ये नहीं सोचती, मैं तो यहाँ सीईओ हूं, अब पूरी कॉलोनी को यहीं शिफ्ट करवाऊंगी। वो हाइव में वापस आती है, अपने तरीके से दूसरी बीस को बताती है कि खाना कहाँ है। दूसरी बीस उस इंफॉर्मेशन को समझती है, किसी ने ऑर्डर नहीं किया, किसी ने ऑर्डर नहीं दिया, किसी ने अनाउंसमेंट्स नहीं की, किसी ने वोटिंग नहीं करवाई, बस छोटे छोटे इंडिविजुअल डिसीजंस, और उन सब डिसीजन से एक बड़ा कलेक्टिव डिसीजन बन गया। अब जरा इसका कनेक्शन हमारी जिंदगी से देखते हैं। हम इंसानों को लगता है कि हर बड़े काम के लिए एक लीडर चाहिए, एक बॉस, एक जीनियस, एक ऐसा आदमी या औरत जो सब कुछ जानता हो, ऑल वाइज हो। लेकिन प्रकृति बार बार हमें कुछ और ही दिखाती है। कभी कभी पूरी समझदारी एक इंसान के पास नहीं होती, वो अलग अलग लोगों के पास थोड़ी थोड़ी होती है। किसी को एक चीज का एक्सपीरियंस है, किसी को दूसरी चीज का, कोई प्रॉब्लम को दूर से देख रहा है, और कोई उस प्रॉब्लम के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। और जब सबकी इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचती है, तब एक बेहतर फैसला सामने आता है, बिल्कुल बीज की तरह। कितनी अजीब बात है, हम अक्सर कहते हैं कि एक आदमी सबसे इंटेलिजेंट है,
लेकिन बीज हमें सिखाती हैं कि कभी कभी इंटेलिजेंस किसी एक दिमाग में नहीं बल्कि पूरे कलेक्टिव ग्रुप के बीच होती है। और यही वजह है कि बी कॉलोनी को समझने वाले साइंटिस्ट्स के लिए यह दुनिया बहुत फैसिनेटिंग है। एक और चीज है जो बी से सीखने लायक है, हर काम इम्पोर्टेंट होता है। बी कॉलोनी में कोई एक बी पूरा काम नहीं करती, कोई फूड कलेक्ट करती है, कोई हाइव की सफाई करती है, कोई छोटी बीज का ध्यान रखती है, कोई कॉलोनी को डेंजर से बचाती है। हर बी का अपना रोल है और कॉलोनी तभी चलती है जब ये सब रूल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब इसको अपनी जिंदगी में देखिए, हम अक्सर सिर्फ उस इंसान को याद रखते हैं जो स्टेज पर खड़ा होता है, जिसे अवार्ड मिलता है, जिसका नाम न्यूज़पेपर्स में आता है, लेकिन उसके पीछे कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है ये अक्सर कोई देखता ही नहीं। एक टीचर जिसने कभी किसी बच्चे को एक बार कहा था, बेटा तुम कर सकते हो। एक माँ जिसने अपने बच्चे के सपने के लिए अपने सभी सपने छोड़ दिए। एक दोस्त जिसने मुश्किल वक्त में सिर्फ एक फोन कर दिया। एक एम्प्लॉई जो चुपचाप रात तक काम करता रहा। एक ड्राइवर जो सुबह सबसे पहले पहुंच गया। एक हेल्पर जिसका नाम किसी को याद नहीं। ये सब लोग शायद स्पॉटलाइट में नहीं होते, लेकिन किसी भी बड़ी सक्सेस के पीछे ऐसे ही हजारों कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस, बिल्कुल एक हनी बी की कॉलोनी की तरह। हर बी अपना छोटा सा हिस्सा देती है और मिलकर एक बहुत बड़ा घर बना देती है। और सोचिए, अगर एक बी कहे मैं अकेली क्या कर सकती हूँ, तो कॉलोनी का क्या होगा? लेकिन हर बी ये नहीं सोचती, वो बस अपना काम करती रहती है। एक छोटा सा काम, फिर दूसरी भी अपना काम करती है, फिर तीसरी, और धीरे धीरे एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। शायद जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं अकेला क्या बदल सकता हूँ भाई, एक आदमी के करने से क्या होगा, लेकिन हर बड़ा बदलाव कभी ना कभी एक छोटी सी शुरुआत से ही होता है। एक छोटा सा डिसीजन, एक छोटा सा एफर्ट, एक छोटा सा काइंडनेस का एक्ट, एक छोटी सी किसी की मदद, और फिर उसके बाद एक और और एक और धीरे धीरे कुछ बड़ा बनने लगता है। बीस की दुनिया हमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात सिखाती है, बदलते वक्त के साथ बदलना। फूल हमेशा एक जगह नहीं खिलते, मौसम बदलता है, खतरे बदलते हैं, खाने के सोर्सेस बदलते हैं, तो कॉलोनी को भी अपना तरीका बदलना पड़ता है। अगर बी सोचने लगे कि हमें तो हमेशा से यही करना था, तो शायद कॉलोनी देर तक सर्वाइव ही ना करे। लेकिन वो एनवायरमेंट को देखती हैं, इंफॉर्मेशन लेती हैं और जरूरत पड़ने पर अपना रास्ता बदल देती हैं। और यहाँ हम इंसान कभी कभी बी से बहुत पीछे रह जाते हैं। हम कहते हैं लेकिन हम तो हमेशा ऐसे ही करते आए हैं, पर दुनिया बदल गई है, सिचुएशंस बदल गई हैं, लोग बदल गए हैं, तो हम कभी कभी क्यों नहीं बदलते? बदलना हार नहीं होता, बदलना सीखना होता है। बी कॉलोनी का एक और सिंपल लेसन है, हर चीज को एक साथ समझना जरूरी नहीं, कभी कभी बस अगला सही स्टेप लेना ही जरूरी है। एक बी को ये नहीं पता होता कि पूरी कॉलोनी का फ्यूचर क्या है, उसे बस इतना पता है कि अभी मुझे क्या करना है, फूल ढूंढना है, रस लेना है, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है और फिर अगला काम। हम इंसान अक्सर पूरी जिंदगी का आंसर एक ही साथ चाहते हैं, करियर क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा, कहाँ जाना है, क्या मिलेगा, लेकिन शायद हमें कभी कभी बीस से सीखना चाहिए, हर चीज का पूरा जवाब अभी जरूरी नहीं, बस अगला सही कदम चाहिए।
फिर देखिए, फिर सीखिए, फिर जरूरत हो तो थोड़ा डायरेक्शन भी बदलिए। जिंदगी भी एक कॉलोनी की तरह है, छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ी कहानी बनाती हैं। एक फोन कॉल, एक मुलाकात, एक डिसीजन, एक गलती, एक माफी, एक छोटा सा मौका। कोई नहीं जानता कि इनमें से कौन सी छोटी चीज कल कितनी बड़ी बन जाएगी। और शायद इसीलिए बीज हमें सिर्फ टीम वर्क नहीं सिखाती, वो हमें ह्यूमिलिटी भी सिखाती है कि दुनिया सिर्फ हमारे अराउंड नहीं घूमती, कि हम सब किसी ना किसी बड़े सिस्टम का एक हिस्सा है, एक किस्सा है। तो अगली बार जब आप कोई हनी भी देखें तो उसे सिर्फ एक छोटी सी मक्खी समझकर भगा मत दीजिएगा। थोड़ा सा इज्जत दीजिएगा, थोड़ा रुक कर देखिएगा, शायद वो आपको कुछ सिखाने आई है। शायद वो कह रही हो कि हर चीज का बॉस होना जरूरी नहीं, हर बात का जवाब खुद के पास होना जरूरी नहीं, बस इन्फॉर्मेशन शेयर करो, अपना काम ईमानदारी से करो और दूसरों की काम की इज्जत करो। और जब वक्त बदले तो अपना रास्ता बदलने से मत डरो, क्योंकि एक छोटी सी हनी भी अपने छोटे से दिमाग के साथ हमें एक बहुत बड़ी सी बात समझा रही है। कभी कभी सबसे इंटेलिजेंट सिस्टम वो नहीं होता जहां एक इंसान सब कुछ कंट्रोल कर रहा हो, सबसे इंटेलिजेंट सिस्टम वो होता है जहां हर कोई ये देखता है, हर कोई सुनता है और हर कोई कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है पूरी ईमानदारी से। और दोस्तों यही है आज की बातें इधर की उधर की, जहां बात शुरू हुई एक छोटी सी हनीबी से और पहुंच जाती है हमारी जिंदगी तक। कभी कभी जवाब बहुत दूर नहीं होता, कभी कभी वो आपके आसपास ही उड़ रहा होता है, बस उसे देखने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक और अजीब, इंटरेस्टिंग और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, क्यूरियस रहिए, और हाँ, अगर कोई हनी भी आपके आसपास गुनगुना रही हो तो उसे थोड़ा स्पेस जरूर दीजिए। क्या पता वो अपनी कॉलोनी की कोई बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने जा रही हो, और सबसे अच्छी बात, उस मीटिंग में शायद कोई भी लेट नहीं होगा। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: दोस्तों कहते हैं ना कि हिचकी आए तो कोई याद कर रहा है। ए ऊपर वाले, अब हिचकियों में कुछ तो फर्क करो। अब कैसे पता करूं कौन सी वाली याद कर रही है।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और अजीब, इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा दिमाग को गुदगुदाने वाले एपिसोड में। बातें इधर की उधर की, और आज का टॉपिक थोड़ा अजीब है हमेशा की तरह। अगर आपको लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत लॉजिकल इंसान हैं, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए एक छोटा सा रियलिटी चेक जरूर हो सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके दिमाग की एक ऐसी आदत की जिसकी वजह से आपको कभी दीवार पर चेहरा दिखाई देता है, कभी बादलों में हाथी, कभी रोटी में गणेश जी, कभी कॉफी के फोम में कोई आंखों वाला आदमी, और कभी कभी तो बाथरूम की टाइल्स में भी ऐसा लगता है जैसे आपको कोई घूर रहा है। आपको भी ऐसा होता है ना? चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी इसी वक्त अपने आसपास देखिए, किसी वॉल को ध्यान से देखिए, किसी कर्टन को देखिए, किसी विंडो के बाहर देखिए, किसी चीज के पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, और अब सोचिए क्या आपको कहीं कोई फेस दिख रहा है? दो आंखें, नाक, शायद एक छोटा सा मुंह, और अगर हाँ तो मुबारक हो, आपका दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। आपको कोई भूत नहीं दिख रहा, आप पागल नहीं हो रहे, और ना ही दीवार के पीछे कोई सीक्रेट सोसाइटी आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं पैराडोलिया। नाम बड़ा साइंटिफिक है, लेकिन इसका काम बहुत सिंपल है। पैराडोलिया का मतलब है जब हमारा दिमाग रैंडम शेप्स, पैटर्न्स या ऑब्जेक्ट्स में कोई पहचानी हुई सी चीज देखने लगता है। सबसे कॉमन चेहरे। दिमाग को फेसेस बहुत पसंद है, बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इतने ज्यादा पसंद हैं, इतने ज्यादा आइडेंटिफाइबल हैं कि अगर कोई दो डॉट्स और एक कर्व भी दिख जाए कहीं, तो वो तुरंत अनाउंस कर देता है, अरे ये तो फेस है। एक कार का फ्रंट देखिए, दो हेडलाइट्स, बीच में ग्रिल, और सडनली कार आपको गुस्से में घूरती हुई लगने लगती है। कभी आपने सोचा है कि कुछ कार्स क्यूट क्यों लगती हैं, और कुछ कार्स ऐसी क्यों लगती हैं जैसे आपसे पैसे उधार मांगने के लिए आई हैं? क्योंकि हमारा दिमाग उनके फ्रंट में फेस देख लेता है। दो हेडलाइट्स आंखें बन जाती हैं, ग्रिल मुंह बन जाता है, और बम्पर बस एक्सप्रेशन कंप्लीट कर देता है। और फिर हम कहते हैं, यार ये कार तो बड़ी क्यूट है। कार बेचारी सोच रही होगी, मैडम मैं तो एक मशीन हूं, लेकिन हमारा दिमाग मानता ही नहीं। अब जरा बचपन याद कीजिए। क्या आपने कभी बादलों को देखा है और कहते ही कहा है कि अरे ये तो एलिफेंट जैसा लग रहा है, या ये तो बिल्कुल रैबिट है, या फिर ये वाला क्लाउड तो इंडिया के मैप जैसा लग रहा है, और फिर 5 मिनट बाद अरे रुको अब तो ये क्लाउड कुछ भी नहीं लग रहा। यही है पैराडोलिया। बादल वही था, लेकिन आपका दिमाग, आपका अमेजिंग दिमाग कहानियां बना रहा था। और यही तो हमारे दिमाग की सबसे इंटरेस्टिंग आदतों में से एक है। हमारा ब्रेन रैंडम चीजों में पैटर्न्स ढूंढता रहता है। क्यों? क्योंकि पैटर्न्स पहचानना सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी एक तरह से बेसिक नीड है। सोचिए हजारों साल पहले एक जंगल में कोई इंसान चल रहा है, उसे बुशेस में कुछ मूवमेंट सा दिखता है। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, अरे शायद हवा से पत्ते हिल रहे हैं। दूसरी, हो सकता है कि कोई डेंजरस सा जानवर हो। अब अगर आपने पहली पॉसिबिलिटी चूज की और सामने सच में शेर निकला, तो कहानी खत्म। लेकिन अगर आपने दूसरी पॉसिबिलिटी चूज की, तो आप भाग सकते हैं। इसीलिए हमारा दिमाग नेचुरली अलर्ट रहता है।
वो छोटी सी इंफॉर्मेशन से भी मीनिंग्स निकालने की कोशिश करता है, कभी कभी जरूरत से बहुत ज्यादा। मतलब दिमाग कहता है बेटर सेफ देन सॉरी, और फिर कर्टन हिलता है, देखो कोई है, कपड़े चेयर पर पड़े हैं, अरे कोई आदमी बैठा है। रात को किचन में बोतल गिरती है, बस आज तो सब कुछ पैरानॉर्मल है घर में। सुबह पता चलता है बिल्ली थी, और बिल्ली भी आपको ऐसे देख रही हो जैसे मैं तो रोज यहीं रहती हूँ, तुम्हें अब पता चला है। पैराडोलिया का एक और मजेदार एग्जाम्पल है दोस्तों, खाने में फेसेस देखना। टोस्ट पर भी किसी का फेस दिख गया, पैनकेक पर किसी की आंखें दिख गई, पिज्जा की टॉपिंग्स में, कॉफी के फोम में, और सबसे डेंजरस रोटी या पराठे पर। अगर रोटी पर हल्का सा शेप बन गया तो तुरंत फैमिली ग्रुप में फोटो, जय श्री गणेश, जय माता दी, भगवान का आशीर्वाद। और मम्मी किचन से चिल्लाती हैं, अरे वो आशीर्वाद नहीं है, जल गया है। लेकिन दिमाग को फर्क नहीं पड़ता, दिमाग को पैटर्न मिल गया, कहानियां शुरू। और यही पैराडोलिया का कमाल है, हम सिर्फ चेहरे नहीं देखते, हम मीनिंग्स क्रिएट करते हैं। एक रैंडम शेप, एक रैंडम आवाज, एक रैंडम इवेंट, और फिर हम उसमें कहानी ढूंढने लगते हैं। कभी कभी तो हम इतने क्रिएटिव हो जाते हैं कि नेटफ्लिक्स वाले भी हमसे स्क्रिप्ट राइटिंग सीख सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, क्या आपने कभी किसी भीड़ में दूर से खड़े हुए किसी अपने को देखा है? आपको लगा अरे ये तो मेरा दोस्त है, आप हाथ हिलाते हैं, बहुत जोर से हाथ हिलाते हैं, और हाथ हिलाते हुए पास पहुंच जाते हैं, और सामने से कोई बिल्कुल अनजान आदमी, आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, आपके दिमाग में बस अब इज्जत गई, और उसके दिमाग में ये कौन है भाई। आप तुरंत फोन निकाल लेते हैं, एक्चुअली मैं किसी और को वेव कर रहा था। नहीं भाई, आप किसी और को वेव नहीं कर रहे थे, आपका दिमाग एक सेकंड के लिए कंफ्यूज्ड हो गया था, उसने डिस्टेंस से एक फेमिलियर सा फेस पैटर्न पकड़ लिया, और बस आपने अपनी सोशल रेपुटेशन दांव पर लगा दी। लेकिन पैराडोलिया सिर्फ मजाक नहीं है, इसका एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन हमारे इमोशन से भी है। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारा दिमाग सामने की इमेज नहीं देखता, वो हमारे एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज और एक्सपेक्टेशंस को साथ लेकर चलता है। आप उदास हैं तो एक खाली सड़क भी ज्यादा उदास लग सकती है, आप रोमांटिक मूड में हैं तो सनसेट भी सडनली सिनेमैटिक हो जाता है, आप किसी को मिस कर रहे हैं तो भीड़ में हर दूसरा इंसान एक ही सेकंड के लिए बट उसी इंसान जैसा लगता है, और फिर दिल कहता है शायद वो था, दिमाग कहता है नहीं बेटा नहीं, दिल कहता है एक बार और देख लेते हैं, दिमाग कहता है चलो ठीक है। हम इंसान बहुत अजीब हैं, हम रियलिटी को सिर्फ देखते नहीं, हम उसका मतलब भी बनाते हैं, और कभी कभी हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। अब एक छोटा सा सवाल आपसे, आपको सबसे अजीब जगह कहाँ फेस दिखा है आज तक? दीवार पर, बादल में, कॉफी में, किसी बिल्डिंग के विंडो पैटर्न में, या फिर किसी आलू में? हाँ जी, आलू भी कभी कभी सेलिब्रिटी बन जाते हैं। किसी आलू का शेप थोड़ा अनयूजुअल क्या हुआ, गाइस लुक एट दिस, और उसकी फोटो पूरे इंटरनेट पर वायरल, लैक्स ऑफ लाइक्स, आलू फेमस, और आपका टैलेंट अभी भी पेंडिंग। हम सब अपनी लाइफ में पैटर्न्स ढूंढते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे साथ हमेशा बुरा होता है,
कुछ लोग कहते हैं, जब भी मैं ये नंबर देखता हूँ कुछ अच्छा होता है। कुछ लोग कहते हैं, जब भी मैं बहुत हंस लेता हूँ तो मुझे रोना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और कुछ लोग हर चीज में साइंस ढूंढने लगते हैं। कभी कभी वो पैटर्न सच होता है, नो डाउट। कभी कभी सिर्फ कोइंसिडेंस। और कभी हमारा दिमाग दो रैंडम डॉट्स को आंखें बना देता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी वॉल पर कोई फेस देखें तो थोड़ा सा मुस्कुराइए, क्योंकि शायद दुनिया आपको कोई सीक्रेट मैसेज नहीं दे रही। शायद आपका दिमाग बस ये कह रहा है कि रिलैक्स, मैं बोरिंग नहीं हूं, मैं हर जगह कुछ ना कुछ ढूंढ लूंगा। और ऑनेस्टली हमारे दिमाग की ये आदत बुरी भी नहीं है। इसी वजह से तो हम इमेजिनेशन करते हैं, इसी वजह से तो हम स्टोरीज बना लेते हैं, और इसी वजह से आर्टिस्ट्स को ब्लैंक कैनवस में भी पॉसिबिलिटीज दिखती हैं। इसी वजह से राइटर्स एक छोटी सी बात से पूरी कहानी बना देते हैं। एक फोटोग्राफर एक ऑर्डिनरी वॉल में ब्यूटी देख लेता है, एक बच्चा बादल में ड्रैगन देख लेता है, और एक कवि बारिश की एक बूंद में पूरा समुंदर ढूंढ लेता है। शायद पैराडोलिया हमें एक और चीज सिखाता है, दुनिया में सिर्फ वो नहीं है जो सामने है, दुनिया वो भी है जो हम उसमें देखते हैं या देखना चाहते हैं। लेकिन एक छोटा सा बैलेंस जरूरी है। हर रैंडम चीज को साइंस समझना बिल्कुल ठीक नहीं है, हर शैडो को भूत समझना भी बिल्कुल जरूरी नहीं है, हर कोइंसिडेंस को डेस्टिनी समझना भी जरूरी नहीं है, और हर आलू को गणेश जी समझना ये तो बिल्कुल आपकी श्रद्धा और इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है दोस्तों। अगली बार जब आपको बादल में कोई जानवर दिखे, या दीवार पर कोई चेहरा दिखे, या कॉफी के फोम में कोई आदमी दिख जाए, तो उसे तुरंत इग्नोर मत कीजिए। थोड़ा देखिए, थोड़ा मुस्कुराइए, और फिर अपने दिमाग को शुक्रिया कहिए, क्योंकि उसने एक रैंडम पैटर्न को एक छोटी सी कहानी बना दिया है। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, जहां एक छोटी सी बात कभी दीवार पर बना चेहरा बन जाती है, कभी बादल में हाथी, कभी कॉफी में अजनबी, और कभी एक सिंपल सी साइंटिफिक फिनोमिनन, जिंदगी को देखने का एक नया तरीका। तो अब जाइए जल्दी और अपने आसपास थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या पता आपको कोई फेस दिख जाए। और हाँ, अगर वो फेस आपको आंख मारता हुआ भी लगे तो प्लीज मुझे ब्लेम मत करना, वो आपका दिमाग है, मैं नहीं। मिलते हैं फिर एक और अजीब अनोखी और इंटरेस्टिंग सी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, देखते रहिए, सोचते रहिए, और सबसे जरूरी, अपने दिमाग को थोड़ा सरप्राइज करते रहिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: लड़की बोली, मैं शादी के बाद तुम्हारे सारे दुख दर्द बांट लूंगी। लड़का बोला, पर मैं दुखी कहां हूं? लड़की बोली, मैं शादी के बाद की बात कर रही हूं।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे दोस्त आरजे तनुषा आपके साथ आज की सुकून भरी मॉर्निंग में। आज की बात फिर से थोड़ी सी अजीब लगेगी, थोड़ी सी फनी लगेगी, और अगर आपने इसे सीरियसली ले लिया तो शायद आज के बाद अब अपना मुंह खोलने से पहले दो बार तो जरूर सोचेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आज हम बात करेंगे मक्खियों की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज का हमारा ज्ञान किसी बड़े फिलोसोफर से नहीं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर से नहीं, बल्कि मक्खियों से आ रहा है। और एक मेक्सिकन कहावत कहती है, फ्लाइज डू नॉट एंटर अ क्लोज्ड माउथ, मतलब बंद मुंह में मक्खी नहीं जाती। अब आप सोच रहे होंगे, आरजे तनुषा को सुबह सुबह हो क्या गया है? इतने सारे टॉपिक्स हैं दुनिया में, प्यार है, पैसा है, पॉलिटिक्स है, चाय है, समोसे हैं, और मैडम पहुंच गई मक्खियों पर। लेकिन दोस्तों, इस छोटी सी कहावत के अंदर जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन छुपा हुआ है। जी हाँ, और वो लेसन है कि हर बात बोलना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें बोलने से पहले सोचनी चाहिए और कुछ बातें बोलनी ही नहीं चाहिए। जी हाँ, कुछ बातें सिर्फ इसीलिए नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि हमारे पास बोलने के लिए मुंह है। आजकल तो सिचुएशन और भी इंटरेस्टिंग हो गई है। पहले जमाने में आदमी गुस्से में कुछ भी बोल देता था तो बात मैक्सिमम घर के ड्राइंग रूम तक पहुंचती थी, और आज एक बार व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया, स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पर कमेंट कर दिया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग फेसबुक पर कुछ लिख दिया, आर्काइव, और अगर किसी ने पुरानी कोई बात ट्वीट हुई भी ढूंढ ली तो बस आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की एक थ्रेड बन जाती है। बंद मुंह में मक्खी नहीं जाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी जिंदगी चुप ही बैठे रहें। नहीं, क्योंकि अगर हम सब चुप हो गए तो फिर रेडियो का क्या होगा और मेरी नौकरी का क्या होगा? मैं तो आपसे कहूंगी कि बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, बस इतनी सी इल्तिजा है कि थोड़ा सा सोच कर। क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो बोलने से पहले सोचते हैं और दूसरे वो जो बोलने के बाद सोचते हैं, अरे मैंने ये क्यों बोल दिया। और फिर तीसरी कैटेगरी के वो होते हैं जो बोलने के बाद भी कहते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। आपको पता है, मैं तो मजाक कर रहा था इंसानियत का सबसे पुराना इमरजेंसी एग्जिट है। आप कुछ भी बोल दो, किसी का दिल दुखा दो, किसी की बेइज्जती कर दो, किसी का राज बता दो, और सामने वाला गुस्से में आ जाए तो तुरंत, अरे बाबा मजाक था। नहीं भाई, मजाक वो होता है जिसमें दोनों लोग हंसें। सिर्फ आप हंस रहे हो और सामने वाला घर जाकर रो रहा है तो वो मजाक नहीं है, वो आपकी सोशल स्किल्स का पोस्टमार्टम है। दोस्तों, हम अक्सर ये सोचते हैं कि इंटेलिजेंट इंसान वो होता है जो हर सवाल का जवाब दे सकता है, लेकिन असली समझदारी शायद ये है कि आपको इतना तो पता हो कि किस सवाल का क्या जवाब देना है। हर आर्गुमेंट जीतना जरूरी नहीं है, हर कमेंट का जवाब देना भी जरूरी नहीं है, हर ओपिनियन को डिफेंड करना भी जरूरी नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट, हर बात पे अपना ओपिनियन देना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आजकल सोशल मीडिया ने हम सबको एक अजीब सी आदत लगा दी है, किसी सेलिब्रिटी ने शादी की, हमारा ओपिनियन सामने, किसी ने डिवोर्स लिया, ले झट एक और ओपिनियन, किसी ने बेबी पैदा किया, बॉय गर्ल के ओपिनियंस, किसी ने बेबी का नाम क्या रखा, बिग फैट ओपिनियन, किसी ने क्या खाया, ओपिनियन, किसी ने क्या नहीं खाया उस पर भी ओपिनियन, किसी ने ब्रेकअप किया ओपिनियन ओपिनियन ओपिनियन ओपिनियन, और अगर दो लोग चुपचाप खुश हैं तो हमारा ओपिनियन समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग। भाई हर जगह घुसना जरूरी नहीं है, कभी कभी दूसरों को जिंदगी जीने दो, दूसरों को जिंदगी उनकी तरह जीने दो, दूसरों की जिंदगी को दूसरों की ही जिंदगी रहने देना भी एक कला है। और इसीलिए साइलेंस यानी खामोशी बहुत पावरफुल चीज है। खामोशी का मतलब हमेशा वीकनेस नहीं होता, कभी कभी खामोशी का मतलब होता है मैं समझ गया हूं लेकिन मैं इस डिस्कशन को अपनी मेंटल पीस के लायक नहीं समझता। वाह क्या बात है, आपको कोई प्रोवोक करे और आप चुप रहें तो सामने वाले को एक अजीब सी प्रॉब्लम होती है। उसने डायलॉग मारा लेकिन आपने रिएक्शन नहीं दिया, उसने दूसरा डायलॉग मारा और आप फिर भी चुप रहे, तीसरा डायलॉग और आप चाय पी रहे हो मजे से, चौथा डायलॉग आप बिस्किट खा रहे हो, 5 मिनट बाद सामने वाला खुद ही सोचेगा मैं अकेला ही पागल हूं क्या, और आप कहेंगे जी बस आर्गुमेंट खत्म, बात खत्म। तो दोस्तों कभी कभी साइलेंस इज द मोस्ट एलिगेंट रिप्लाई। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, आपने नोटिस किया है कि हम दूसरों की बात सुनने के लिए कितने इंपेशेंट हो जाते हैं। कोई कुछ कह रहा होता है और हमारे दिमाग में ऑलरेडी जवाब तैयार होते हैं, एक नहीं 3-4। वो कह रहा है मेरी प्रॉब्लम ये है और हम सोच रहे हैं अच्छा अब मैं बताऊंगा मेरी प्रॉब्लम क्या है। वो अपना दुख बांट रहा है और हम अपनी कहानी लेकर बैठ गए, वो अपनी सक्सेस बता रहा है और हम अपनी ही सक्सेस का ट्रेलर चला रहे हैं। वो कह रहा है मैं कल जयपुर गया था और हम तुरंत अरे जयपुर मैं तो एक बार उदयपुर गया था, और फिर कॉन्वर्जेशन जयपुर से उदयपुर, उदयपुर से मुंबई, मुंबई से लंदन, लंदन से आपके कजिन के फ्रेंड के ब्रदर तक पहुंच ही जाती है। कॉन्वर्जेशन नहीं, इंडियन रेलवे नेटवर्क है ये। इसलिए कभी कभी बस सुन लीजिए, जी हाँ किसी को एडवाइस नहीं चाहिए होती, कभी कभी किसी को सॉल्यूशंस भी नहीं चाहिए होते, किसी को बस ये चाहिए होता है कि आप कोई उसकी बात बिना बीच में काटे और बिना अपनी कहानी लाए थोड़ी देर के लिए सुन लें, बस थोड़ी देर। और शायद इसीलिए बंद मुंह में मक्खी नहीं जाती का एक मतलब ये भी है, जब जरूरत हो तो अपनी बात रोक कर दूसरे की बात सुनिए। लेकिन अब एक और सवाल है आपसे, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा गलती हम कब करते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं या जब हम बहुत खुश होते हैं? मेरा मानना है जब हम इमोशनल होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो मुंह से ऐसे वर्ड्स निकलते हैं जो बाद में वापस नहीं आते, और खुशी में कभी कभी ऐसे सीक्रेट्स बता जाते हैं जो हमें नहीं बताने चाहिए थे। अरे किसी को बताना मत, और फिर वो बात 2 घंटे में पूरे मोहल्ले की प्रॉपर्टी बन जाती है। आपने भी सुना होगा मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता रहा हूं। दोस्तों अगर कोई आपसे ये सेंटेंस बोले तो समझ जाइए कि आपको एक सीक्रेट नहीं एक जिम्मेदारी दी जा रही है, और अगर वो सीक्रेट आपके आगे किसी को भी आप बता रहे हैं तो आप भी कह सकते हैं कि मैं बस एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहा था। जी नहीं, हर इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करने के लिए नहीं होती, कुछ बातें सच में प्राइवेट होती हैं, सीक्रेट होती हैं, पर्सनल होती हैं, और कुछ बातें सिर्फ इसीलिए नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि आपको पता है नॉलेज और परमिशन दोनों बहुत अलग चीजें हैं। आपको किसी के बारे में कुछ पता है इसका मतलब ये नहीं कि आपको दुनिया को बता देना है। यहीं पर आज की हमारी कहावत फिर से काम आती है, बंद मुंह में मक्खी नहीं जाती, और आज के डिजिटल जमाने में शायद इसका एक मॉडर्न वर्जन होना चाहिए, थिंक बिफोर यू स्पीक, और डबल थिंक बिफोर यू पोस्ट, क्योंकि मुंह से निकली हुई बात शायद इंसान सुनता है, लेकिन इंटरनेट पे लिखी हुई बात इंटरनेट कभी नहीं भूलता ना भूलने देता है। इसलिए अगली बार जब आप गुस्से में किसी को एक लंबा सा मैसेज भेजने का मन बना रहे हैं, रुकिए, लिखिए, पढ़िए और फिर से पढ़िए, फिर फोन साइड में रखिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, थोड़ा सा वॉक पे जाइए, और अगर फिर भी आपका भेजने का मन हो तो पहले किसी ट्रस्टेड दोस्त को भेजिए, और अगर वो भी कहे कि भाई मत भेज, तो समझ जाइए यूनिवर्स आपको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आज की बात का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम चुप रहकर सब कुछ सह लें, बिल्कुल नहीं। जहां इनजस्टिस हो वहां बोलना जरूरी है, जहां किसी के साथ गलत हो रहा हो वहां आवाज उठाना भी जरूरी है, जहां किसी को आपकी जरूरत हो वहां खामोशी नहीं साथ देना जरूरी है, लेकिन जहां सिर्फ ईगो की लड़ाई है ना, सिर्फ ईगो सेटिस्फेक्शन की बात है, वहां साइलेंस। जहां गॉसिप हो वहां साइलेंस, जहां सामने वाला सिर्फ रिएक्शन चाहता हो वहां साइलेंस, और जहां आपको पता हो कि आपके वर्ड्स किसी का दिल तोड़ देंगे लेकिन आप सिर्फ गुस्से में बोल रहे हैं, वहां प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि वर्ड्स की एक अजीब सी आदत होती है, हम उन्हें बोल देते हैं और फिर चाहे हम कितनी बार भी सॉरी कहें, वर्ड्स अपना निशान छोड़ जाते हैं। इसलिए शायद जिंदगी में एक छोटा सा रूल होना चाहिए, स्पीक लेस, लिसन मोर, थिंक फर्स्ट, एंड व्हेन यू स्पीक मेक योर वर्ड्स वर्थ हियरिंग। तो दोस्तों, अगली बार जब आपका मन करे किसी आर्गुमेंट में अपना लास्ट वर्ड देने का, तो याद रखिए आपको हर बार लास्ट वर्ड की जरूरत नहीं है, कभी कभी लास्ट वर्ड साइलेंस का भी होता है। और हाँ, आज से अगर कोई आपसे कहे फ्लाइज डू नॉट एंटर अ क्लोज्ड माउथ, तो आप भी उनसे कहना बिल्कुल, लेकिन भाई व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेज मैंने भेज दिया उसमें मक्खी नहीं, मैंने खुद को ही फंसा लिया। तो दोस्तों, आज की बातें इधर की उधर की में बस इतना ही। अपना मुंह बंद रखना हर वक्त जरूरी नहीं, लेकिन अपनी

दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है स्टेज और थिएटर की दुनिया का एक बहुरंगी रंग। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस सफर की जहां लॉजिक से क्रिएटिविटी मिलती है, जहां स्टेज की लाइट से इनर हीलिंग की शांति जुड़ती है। हमारी आज की गेस्ट है एक स्टेज आर्टिस्ट, एक थिएटर टीचर, एक एंकर और एक होलिस्टिक हीलर। इन्होंने थिएटर में विजय तेंदुलकर, मंटो, डेरियो फो और ईव एंसलर जैसे राइटर्स के प्ले किए हैं। नुक्कड़ नाटक से लेकर एक्सपेरिमेंटल थिएटर तक का सफर तय किया है, और साथ ही ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन के जरिए हीलिंग की दुनिया से भी जुड़ी हुई है। आज हम उनसे जानेंगे कैसे इंजीनियरिंग से थिएटर तक का सफर शुरू हुआ, स्टेज पे खड़े होकर क्या महसूस होता है, और थिएटर व मेडिटेशन से कैसे लाइफ को बैलेंस देना सिखाते हैं। तो चलिए बिना देर किए वेलकम करते हैं तरुषा सक्सेना को। वेलकम टू द शो तरुषा जी।
2: थैंक यू सो मच, और आपको और आपके सारे लिसनर्स को मेरा बहुत ही प्यार भरा नमस्ते।
1: तो चलिए शुरुआत से ही करते हैं तरुषा जी। अब ये बताइए कि आपका सफर इंजीनियरिंग से शुरू हुआ और थिएटर और हीलिंग तक पहुंचा, ये सारा जर्नी जो है बहुत ही इंस्पायरिंग लग रही है। तो बताइए शुरुआत में आपका बचपन कैसे रहा, फॉर्मेटिव ईयर्स कैसे रहे, कैसे आप इंजीनियर से थिएटर तक आ गई, कुछ इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें।
2: तो मुझे आपकी लाइन बहुत अच्छी लगी जो आपने कहा शुरू से शुरू करते हैं। ये अक्सर मैं यूज करती हूँ। तो हाँ, तो बेसिकली बचपन मेरा आई वुड से कि बचपन जैसा था, क्योंकि काफी लोग होते जिनका बचपन बचपन जैसा नहीं रहता। तो मैं लकी थी, मेरा बचपन बचपन के जैसा था, मुझे एक बच्चे की तरह रहने को मिला था, और मेरा जो फैमिली एनवायरनमेंट था, मैं मेरे नानी नाना मम्मी और सबके साथ में रही हूँ, और मेरा जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे वो मेरी लाइफ में बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं आज तक भी। मेरे फैमिली में, हालांकि मैं काफी बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे और प्रोफेशनल फैमिली से आती हूँ, मेरे यहाँ पे प्रोफेसर्स रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, तो मैं उस फैमिली से आती हूँ। हालांकि मैं तो उनमें से कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक इंजीनियर और एमबीए हूँ, और मैं अपना

0: अपनी खुद की कंपनी चलाती हूँ, पर इन सब के साथ में मेरे फैमिली में क्रिएटिव इंटरेस्ट हमेशा से हर किसी को रहा है. मेरे नाना जी बहुत अच्छे पेंटर थे, मेरे जो मौसा जी हैं ही इज अ डॉक्टर और वो बहुत अच्छे पेंटर हैं, मेरे फादर बहुत अच्छा स्केच करते हैं, मेरे फादर और उनकी सिस्टर्स गाने में काफी माहिर हैं, मेरी मम्मी बहुत अच्छी स्टोरीज लिखती हैं, शी इज ऑल्सो एन ऑथर एंड अ राइटर. तो एक कला की तरफ रुझान मेरी फैमिली में मैंने हमेशा से देखा है. और एक चीज ये है कि मेरी जो नानी थी उनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी जिंदगी पर. वो एक होममेकर थी, पर उन्होंने बहुत बहुत लोगों की, पर आई थिंक उन्होंने होममेकर से ज्यादा फिलेंथ्रोफी वर्क ज्यादा करा है. एंड जब वो इस दुनिया से गई तो वो 96 की थी, लेकिन आई थिंक कि मैंने अपनी जिंदगी में इस उनसे ज्यादा ओपन माइंडेड इंसान, उनसे ज्यादा एक्सप्लोरेटरी नेचर रखने वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा. और मैंने अपनी जिंदगी में जो सीखा है वो सबसे ज्यादा उनसे सीखा है, और मेरे नाना जी से सीखा है, और मेरी माँ से सीखा है, जिन्होंने मुझे हमेशा सिखाया है कि बॉक्स के बाहर और बाउंड्रीज के बियॉन्ड एक्सप्लोर करना चाहिए. तो उन्होंने हमेशा से ही मेरी परवरिश ऐसे हुई है कि कोई भी चीज तुम्हें बताई जा रही है तो पूछो क्यों, क्या, कैसे. तो वो जो एक क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेटरी एनवायरनमेंट में जो मैं मेरा बचपन गुजरा, तो उन चीजों का इम्पैक्ट मेरी लाइफ में आज तक रहा है. एंड आई थिंक दैट हैज प्लेड अ वेरी क्रूशल पार्ट इन द वे आई थिंक, द चॉइसेस दैट आई हैव मेड. और हाँ, तो आई वुड जस्ट से कि एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे इस तरीके का बचपन मिला. तो
1: वंडरफुल, आपकी नानी जी के बारे में जान के तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब 96 की उम्र उन्होंने पाई और उनकी जो आउटलुक थी वो हमेशा से एक फॉरवर्ड लुकिंग थी, ये मैं कहना चाहूंगा कि वाह, बहुत मजा आ गया सारी बात सुन के। और ये भी आपने बताया कि कल्चरल सा बैकग्राउंड था आपके सारे घर का, सब लोग किसी न किसी फील्ड में बहुत ही अच्छे माहिर थे और बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग लोग थे। चलिए, तो फिर आप ये बताइए कि आपने बीटेक किया, फिर एमबीए किया, फिर ये थिएटर में आप कैसे आ गई, यहाँ क्या, कैसे कैसे कैसे जुड़ा हो गया?
0: जब मैं तो बीटेक और एमबीए में था, तो होता यह है कि मेरे बहुत बचपन से ही मैंने एक परफॉर्मेंस दिया था जब मैं काफी छोटी थी. तो तभी जो मुझे फील हुआ था स्टेज पे वो मुझे आज भी याद है. और समहाउ फिर ये हुआ कि जब मैं आई थिंक मैं शायद टीनेज में थी, तब पता नहीं क्यों बट मुझे कुछ चीजें मेरी लाइफ के बारे में पता थी कि मैं फॉर एग्जाम्पल 10-15 साल किसी कंपनी में काम करूंगी और फिर उसके बाद मैं एक हाई रैंक पे जाके आई विल लीव दैट करियर. उसके बाद मुझे पता था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ साल बिजनेस करूंगी, क्या करूंगी नहीं पता था पर बिजनेस करूंगी, ये मुझे बहुत क्लियर, मुझे पता था कि मैं करूंगी. ऐसे ही मुझे ये भी पता था फॉर सम रीजन कि मैं अपनी जिंदगी में थिएटर भी करूंगी और अराउंड 40-45 की एज पे करूंगी थिएटर. तो ये मेरे को बहुत क्लियर पता था उस टाइम, क्यों, क्या, कैसे, उसका आप मुझसे कारण पूछेंगे तो मुझे नहीं पता, पर वो मेरा, मैं ये भी नहीं कह सकती वो मेरा विजन था, वो मुझे पता था. पर ये होता है ना कि ये तो मुझे पता था लेकिन जिंदगी अपने फ्लो से ही करती है, चलती है. तो सब मेरी लाइफ में थोड़ा अपने टाइम से पहले आ गया, जो मैंने सोचा था उससे काफी पहले. तो मैंने सोचा था 40-45 पे करूंगी, बट थिएटर एंटर्ड माई लाइफ व्हेन आई वाज 31-32 इयर्स. तो ये था.
1: नहीं, थिएटर आ गया और आपको पता था, ये कोई टैरो या होलिस्टिक इससे तो कुछ नहीं पता था, या वैसे ही पता था,
0: नहीं
1: अंदर
0: नहीं
1: से इंट्यूशन थी?
0: इंट्यूशन, पता नहीं, एक होता है इंट्यूशन, एक होती है नोइंग. तो मुझे वो नोइंग थी हमेशा से कि ये तो है, ये है, तो वो नोइंग थी मुझे हमेशा से. और टैरो तो मेरी जिंदगी में अगेन व्हेन आई वाज इन माय 30s तब आया था. तो या
1: या कोई ऐसा ट्रिगर जिसने आपको थिएटर की तरफ ले आया, आपको कभी ऐसा कोई व्यक्ति मिला या कोई ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से थिएटर आ गया लाइफ में?
0: हाँ, जब मैं, जैसे मैंने पहले बताया, तो मैं उस वक्त आई थिंक 4 या 5 साल की थी और जयपुर में एक ऑडिटोरियम है रविंद्र भारती, रविंद्र मंच. तो रविंद्र मंच पे मुझे अब याद नहीं है क्या इवेंट था, क्यों था, किस वजह से था, बट उसमें मैंने इंदिरा गांधी का रोल प्ले प्ले किया था, मैं 4 या 5 साल की थी और साड़ी वाड़ी पहन के गई थी और मुझे बस इतना ही याद है, और मैंने क्या बोला मुझे वो भी याद नहीं, बस स्टेज पे पूरा बड़ा स्टेज, 4 साल की बच्ची स्टेज पे अकेले इतने बड़े स्टेज पे, कुछ मुझे मुझे स्पीच देनी थी जो मैंने दी। अब देने की मुझे आज भी याद है, बाकी कुछ याद नहीं है, मुझे सिर्फ वो मोमेंट याद है। मैं आज भी अपनी आंखों में, मतलब अपने दिमाग में वो मैं वो देख सकती हूँ कि मैं स्टेज पे 4 साल की बच्ची खड़ी हूँ और मुझे वो जो महसूस हुआ था उस वक्त वहां बोलते हुए, मैं बोल कुछ रही थी लेकिन मुझे अंदर महसूस कुछ और हो रहा था, और वो जो मुझे महसूस हो रहा था वो ये हो रहा था कि दिस इज होम। तो उस वक्त तो मैं बहुत छोटी थी टू कॉम्प्रिहेंड कि मैं क्या फील कर रही हूँ, बट मुझे ये पता था कि मैं जो फील कर रही थी वो बहुत अच्छा था, वो मैजिकल था, और मुझे ये पता था कि बस यही है जो है। तो वो चीज मुझे आज भी, मैं वो चीज महसूस कर सकती हूँ, और अब जब बड़े हो गए हैं तब आई कैन पुट इट इन वर्ड्स कि इट फेल्ट लाइक होम फॉर मी, बट वो फीलिंग मुझे आज भी याद है। और फिर उसके बाद मैंने जैसे बताया कि जब मैं टीनेज में आई तो मुझे पता था थिएटर मैं कभी करूंगी, और फिर जब व्हेन आई वाज अराउंड 31 जब मेरा बेटा 6 महीने का था, तो उसके बाद मुझे बस अंदर से एक ट्रिगर आया कि मुझे मैं उस वक्त एक्चुअली आफ्टर चाइल्ड बर्थ काफी वेमेन गो थ्रू आइडेंटिटी क्राइसिस, तो वो मेरे साथ आई थिंक आई वॉज गोइंग थ्रू दैट, और तब मुझे लगा कि मैंने देखा कहीं पर थिएटर वर्कशॉप हो रहा है और मुझे लगा कि मे बी दिस विल हेल्प मी कनेक्ट विद माई सेल्फ अगेन, तो मुझे लगा कि ये करके देखते हैं। तो तब मैंने ऐसे ही कर लिया था, उतना नहीं सोचा था कि मैं इसको लेके मैं कहां क्या क्या करूंगी, बट हाँ बस उस ट्रिगर ने मुझे ज्वाइन कराया और फिर वहां से फिर, पर हाँ स्टेज पे मैं बचपन से ही कनेक्टेड रही क्योंकि स्कूल में हम लोग डांस करते थे काफी, और थिएटर करते थे स्कूल में भी, और इंजीनियरिंग में हमने मुशायरे फ्रॉम द स्क्रैच हमने मुशायरा किया, एंड आई थिंक दैट हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मेंस सो फार। वो जो हमने बनाया था वो एक बहुत ही कमाल की चीज बनाई थी, उसके बाद हमने कितने प्ले करे, बट हाँ दैट वॉज समथिंग। तो छोटे बड़े पैमाने पे कनेक्टेड तो मैं रही हूँ, बट प्रॉपर थिएटर मैंने फिर 31 की एज में ज्वाइन किया।
1: चलो तो इसी आपके थिएटर से जो आपका लगाव हुआ और बचपन में जुड़ाव हुआ और इंदिरा गांधी का जो रोल किया, इसके नाम पे रुक के एक एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं और फिर हम बातचीत को जारी रखेंगे।
0: बिल्कुल।

0: ओके, वेलकम बैक। अब आपने ये तो बता दिया कि थिएटर से आपका पहला इंट्रोडक्शन कैसे हुआ था। अब ये बताइए कि आपने जो अपना पहला थिएटर वर्कशॉप था उसी मेंटोर के साथ किया था जिन्होंने विजय
1: देवर
0: देवरकोंडा और
1: कोंडा
0: विजय वर्मा को ट्रेन किया था, तो उस ट्रेनिंग में या उस मेंटोरशिप में ऐसी क्या खास बात थी कि वो किस तरह से मेंटोर करते हैं, किस तरह से ट्रेन करते हैं, कोई ऐसी विशेष बात है जो इतने बड़े बड़े नाम जिन्होंने ट्रेन किए हैं?
1: हैदराबाद में तो उनका नाम है विनय वर्मा एंड ही इज अ वेरी सीनियर एंड अ वेरी सीजन्ड थिएटर एक्टर एंड अ कास्टिंग डायरेक्टर इन हैदराबाद. और उन्होंने खुद ने भी अभी काफी पिक्चरें करी हैं, तेलुगु भी और हिंदी भी. तो पर विनय का एक ये है कि वो काफी स्ट्रिक्ट मेंटर माने जाते हैं. तो जैसे थिएटर का कन्वेंशनली एक आइडिया है, आप कहीं भी सीखेंगे कि ये बहुत ही डिसिप्लिन फील्ड है. आपको बहुत डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, आपको टाइम के बिल्कुल पाबंद होने पड़ता है. लाइक अगर आप 30 सेकेंड्स भी टाइम से लेट हैं तो आप बाहर हैं क्लास के, आप अंदर नहीं आ सकते. फॉर किसी भी रीजन अगर आप लेट हैं आप अंदर नहीं आ सकते. तो विनय तो बहुत, उनके जो वर्कशॉप्स होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस, बहुत स्ट्रिक्ट आपको, मतलब वो पूरा ये उनका वर्कशॉप का ये होता है कि आप उनके वर्कशॉप्स में, अब हम एक एज एन एडल्ट ही आते हैं तो हमारी एडल्ट लाइफ 25 या 30 ईयर्स जी के हम आते हैं वहां पे. तो 25-30 ईयर्स हमारी जिंदगी का लगभग एक तिहाई हिस्सा होता है. तो हमने काफी एक्सपीरियंसेस गेन करे होते हैं और वहां पे ये होता है कि जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं, एज में आगे चलते जाते हैं, एज अ ह्यूमन बींग हम क्लोज होते जाते हैं. आप एक छोटे बच्चे को देखिए, वो बहुत खुला, उसका बॉडी लैंग्वेज खुला होता है, वो खुले मन का, खुले दिल का होता है. वो ये नहीं सोचता कि मैं क्या बोल रहा हूँ. लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारी बॉडी बहुत कन्फाइन होती चली जाती है, हम बहुत कॉन्शियस होते चले जाते हैं इमोशनली, मेंटली और फिजिकली. तो जब हम उतने बंद होके जब हम विनय वर्मा जैसे वर्कशॉप पे जाते हैं तो उनका सबसे पहला काम होता है आपको तोड़ना. आपने जितने बैरियर्स बनाए हैं अपने इर्द गिर्द, जो चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, आपको वो पूरा तोड़ देंगे. और वो तभी टूट सकता है जब आप उतने स्ट्रिक्ट उसके अंदर आप जो है आपकी ग्रिलिंग होती है एज एन एक्टर. तो बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते हैं, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, जो आपको, जिनसे आपको गुजरना पड़ता है. और फिर जो टूटने के बाद जो फिर एक जो चीज अंदर बचती है वो आप होते हैं.
0: क्या बात है, मजा आ गया सुन के। तो ये जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, देवरकोंडा, विजय वर्मा, ये सब भी उसी प्रोसेस के थ्रू निकले हुए हैं।
1: अब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने क्या करा है, लेकिन हाँ ये उनका फॉर्मेट है लॉन्ग टर्म वर्कशॉप का. तो आई एम श्योर कि विजय और दोनों विजय ने उनसे वही वर्कशॉप्स करे हैं. बिकॉज अभी जब विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी भी हुई थी, तब भी विनय सर जो है, विनय वर्मा सर, वो उनकी शादी में उनको ब्लेस करने के लिए गए थे एंड ऑल. तो आई एम श्योर उनका काफी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है. तो और खाली वो ही नहीं, हैदराबाद के भी तेलुगु इंडस्ट्री के बहुत सारे नोन एक्टर्स हैं जो बॉलीवुड में नोन नहीं है पर हैं. तो उनको भी, वो भी विनय वर्मा से सीख के गए हैं. तो ही इज अ गुड
0: बड़ा
1: मेंटर.
0: नाम है उनका। और विजय वर्मा भी तो मुझे याद है, इनकी तो अभी एक कोई बहुत अच्छी फिल्म आई है, बहुत बढ़िया एक्टर है, बहुत अच्छे
1: हाँ
0: एक्टर है विजय वर्मा, बड़े बड़े वर्सेटाइल एक्टर है,
1: बिल्कुल.
0: बहुत अच्छी एक्टिंग की है ना। अभी हिंदी में कोई पिक्चर आई थी इनकी। जो तलिए तो क्या थिएटर से प्यार धीरे धीरे बढ़ा या पहली बार में ही करेक्ट हो गया था कि धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ा?
1: आई थिंक थिएटर एक वो प्यार नहीं होता जो बचपन में होता है पहली बार और फिर वो हमेशा के लिए वो पहला प्यार वही रहता है. और एज के साथ वो फिर वो वाइन की तरह मैच्योर होता जाता है. तो आई थिंक थिएटर वो एक वाइन है जिसको आप एक बार चख लेंगे, आपके जुबान पे चढ़ गया, और फिर वो जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं वाइन की तरह वो भी मैच्योर होके बहुत वो उस प्यार का स्वाद और निखरता जाता है. तो ये वो चीज है.
0: मतलब सुरूर धीरे धीरे चढ़ता है, लेकिन फिर एक बार चढ़ जाता है तो उतरता नहीं है,
1: उतरता नहीं है.
0: उतरता नहीं। चलिए इसी पहले प्यार और इसी सुरूर पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही कोई अच्छा सा गाना सुनते हैं यहाँ,
1: जरूर.
0: और फिर आगे चलते हैं।

0: अब थोड़े आपके स्टेज जर्नी और अभिनय के अनुभव तक हम आते हैं। आपने बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं, विजय विजय तेंदुलकर है, डेरियो फो है, सादत हसन मंटो है, ई वेंसलर है, ऐसे राइटर्स के प्ले में काम किया है। तो इनमें से कौन से प्ले राइट का प्ले करना सबसे ज्यादा आपको चैलेंजिंग लगता है, या आपको लगता है कि इसमें आप बिल्कुल खुल के अपनी तरफ से आ सकी हैं, तो ये बताइए मुझे।
1: चैलेंजिंग तो मुझे लगता है कि हर कैरेक्टर होता है।
0: ओके
1: चैलेंज तो अगर आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे अच्छे एक्टर भी शायद मैं तो उतना कोई बहुत मैंने नहीं उतना सीजन्ड एक्टर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो आप बड़े एक्टर्स का भी सुनेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि हर किरदार अपने में अलग और यूनिक होता है और उस किरदार तक पहुंचने की जर्नी यूनिक और डिफिकल्ट होती ही है। लेकिन इन प्ले राइट्स में से मुझे जो मुझे सबसे अच्छी किसी की अगर राइटिंग लगती है तो विजय तेंदुलकर साहब की लगती है, क्योंकि उनके मैंने प्लेज में काम करा भी है कुछ प्लेज में और बहुत सारे उनके नाटक मैंने देखे भी हैं जो दूसरों ने करे हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने कब कब लिखे थे ये, कम से कम कितना पहले ये प्लेज लिखे हुए थे, और आज के जमाने में भी उनके राइटिंग्स रेलेवेंट हैं। देखा जाए तो सादत हसन मंटो की भी राइटिंग्स मुझे बहुत पसंद है और उन्होंने तो कभी लिखा था और भी बहुत 70 साल पहले 75 साल पहले, और वो भी आज के
0: पार्टीशन
1: जमाने में, हाँ पार्टीशन के टाइम, और वो आज भी इतना रेलेवेंट है। पर मुझे ऐसा लगता है कि विजय तेंदुलकर साहब की राइटिंग बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि उनके प्लेज के जो एंडिंग्स होते हैं, काफी सारे उनके प्ले हैं जिनके एंडिंग्स ऐसे होते हैं कि वो आपको स्पून फीड नहीं करते कहानी, वो अंत में आप ओपन एंडेड होते हैं और आप ऑडियंस अपने हिसाब से उसका एंडिंग इंटरप्रेट करके जाते हैं। तो वो मुझे बहुत एक खूबसूरत, उनका राइटिंग बहुत इंटेलिजेंट है।
0: विजय तेंदुलकर वही है जो जिनका शांतता कोर्ट चालू है
1: हाँ
0: इन्हीं का
1: हाँ
0: है
1: हाँ हाँ हाँ हाँ राइट
0: ना। और मंटो के तो खैर बहुत सारी स्टोरीज हमने पढ़ी है, मैंने भी किसी जमाने में कुछ ऑडियो स्टोरी इनकी की थी, जैसे
1: हाँ
0: खोल दो एक इनकी किताब है, और
1: हाँ
0: भी बहुत है बहुत है। तो
1: हाँ
0: इनका तो खैर एक अलग ही तेवर है, एक अलग ही तरह की है, बिल्कुल बेबाकी से सारी बातें कहते
1: बहुत
0: हैं,
1: रिबेल थे, बिल्कुल हाँ बिल्कुल,
0: बिल्कुल
1: वो
0: रिबेल
1: भी और
0: थे।
1: अमृता प्रीतम भी
0: अमिता
1: तो।
0: प्रीतम भी बिल्कुल सही बात है,
1: हाँ
0: बिल्कुल सही बात है, इनके प्ले करना बहुत वो है। चलिए बहुत अच्छा। आप ये बताइए कि आपने ऐसे चैलेंजिंग रोल किए हैं इन सभी बड़े प्लेराइट्स के, तो कोई ऐसा रोल या करेक्टर आपको याद है जो आप जिसने आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया, जो आज भी आपके साथ साथ चलता रहता है, आपको महसूस होता है कि उस रोल से आप इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कि हमेशा आपके साथ वो रोल रहता है, ऐसा कोई है?
1: हाँ तो आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं बस ये बोलूंगी कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि जितने भी किरदार होते हैं कहीं ना, हर प्ले का कहानी का, वो हम सबके अंदर सारे किरदार होते हैं, बस बात इतनी होती है कि हम हमने अभी तक उसको एक्सप्लोर किया है कि नहीं। वो हम सबके अंदर होते हैं सारे किरदार, डेविल भी हमारे अंदर है और भगवान भी हमारे अंदर है। तो रही बात की मेरा फेवरेट कैरेक्टर, तो मुझे विजय तेंदुलकर साहब का एक प्ले है सखाराम बाइंडर,
0: हाँ सगरम बाइंडर।
1: और अपने टाइम का ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी प्ले है और आज भी ये प्ले बहुत रेलेवेंट है, एंड इट इज अ वेरी इंटेलिजेंटली रिटन प्ले। उसका एक कैरेक्टर है चंपा, तो मैंने चंपा का किरदार की प्रिपरेशन करी थी, और चंपा एक ऐसा कैरेक्टर है जो अगेन वेरी रेलेवेंट टू टुडेज टाइम। अनफॉर्चुनेटली ये कैरेक्टर की जो जर्नी है, इनफैक्ट उसमें जो दोनों फीमेल एक्टर्स हैं, वो फीमेल की वो जो जर्नी है वो हजारों सालों से वही रही है, आज 21वीं सदी में भी वो जर्नी उतनी ही रेलेवेंट है। और तो एक वो चीज़ है, और चंपा का जो कैरेक्टर है मेरे ख्याल से जिस वक्त मुझे वो कैरेक्टर मिला था और उस वक्त अपनी निजी जिंदगी में मैं जिस दौर से गुजर रही थी, तो उस कैरेक्टर ने मुझे मैंने अपने आप को जिन दरवाजों के अंदर बंद करा हुआ था इमोशनली मेंटली, उस कैरेक्टर ने मुझे उनको तोड़ के बाहर आने की हिम्मत दी थी।
0: ओके ओके
1: और पर हाँ ये होता है कि फिर आप कि तोड़ के कितना वाइल्डली बाहर आते हो। फिर वो तो उस वक्त तो मैं बहुत फिर भी काफी नई थी थिएटर में, तो मैं उस कैरेक्टर को काफी सुपरफिशियली ही अप्रोच कर पाई थी, बट जैसे जैसे साल आगे जाते गए तब मुझे समझ में आया कि उस कैरेक्टर में बहुत लेयर्स थी और बहुत इंटेलिजेंटली रिटन कैरेक्टर था वो। तो वो होता है कि और हर हर औरत में एक चंपा होती है। अब वो आपके ऊपर है कि आप अपनी चंपा को दबा के रखते हैं, अपने अंदर की चंपा को, या आप उसको कितना बाहर लाते हैं और कितना कंट्रोल में रखते हैं। तो वो एक है, तो पर वो एक मेरा बहुत फेवरेट कैरेक्टर था।
0: नहीं, सकारा माइंडर तो बहुत फेमस प्ले है और हमेशा कई कई ग्रुप्स ने इसको स्टेज किया है। अच्छा चलिए, मैं एक ऑफ द कफ सवाल पूछता हूँ, इफ यू आर कंफर्टेबल, कि आपने इतने रोल किए होंगे, डायलॉग्स भी आपने खूब बोले होंगे, क्या आप कोई डायलॉग या कोई ऐसा करेक्टर का कोई कोई प्ले कुछ कुछ हमें हिस्सा सुना सकती हैं, अगर आपको याद हो और आप सुनाना चाहें, कंफर्टेबल हो तो सुनाइए कोई हमें, रुक जाते हैं।
1: अभी तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आना। एक्चुअली मेरा एक जो क्योंकि चंपा मैंने बहुत अभी कुछ 10 साल हो गए होंगे करके, तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरा एक मैंने एक वेब सीरीज करी थी पर वो तेलुगु में थी।
0: okay.
1: और उसका एक मैंने बहुत लंबा मोनोलॉग बोला था, बट अगेन अभी अगर आप मुझे कुछ वक्त देंगे तो शायद मैं याद कर पाऊंगी, मे बी बाय द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू, बट अभी तुरंत एकदम से मेरे दिमाग में नहीं आ रहा क्योंकि ऑल्सो दैट इज माई सेकेंड लैंग्वेज।
0: ठीक है, भले तेलुगु में सुना दीजिए, कोई बात नहीं है, हमारे तो इस रेडियो की रीच इतनी है कि सब तरफ सुनने वाले हैं, ग्लोबल रीच है, तो हमारे साथ साउथ इंडिया से भी बहुत लोग जुड़े रहते हैं, तेलुगु तेलुगु वाले भी हैं, कन्नड़ वाले भी हैं, तमिल वाले भी हैं हमारे साथ,
1: बिल्कुल
0: वो सुनते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो आप ये बताइए जैसे एक्सपेरिमेंटल थिएटर है, थोड़ा सा ये मुझे फर्क बताइए लेमैन के हिसाब से, कि एक्सपेरिमेंटल थिएटर और ये डिवाइस प्ले जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल थिएटर होता है, इसमें क्या बेसिक फर्क है?
1: देखिए जो ट्रेडिशनल थिएटर होता है वो तो ये होता है कि एक स्टेज है जिसके तीन तरफ दीवार है, सामने ऑडियंस बैठती है, और मतलब यू नो इट्स अ कलेक्शन ऑफ, या तो आप सिंगल आर्टिस्ट मोनोलॉग परफॉर्मेंस होती है, या फिर मल्टीकास्ट प्ले होता है, म्यूजिक का सपोर्ट होता है, साउंड होता है, लाइट होता है, एक कहानी होती है, एक स्क्रिप्ट होती है जिसको मतलब एक किसी की लिखी लिखाई, जैसे विजय तेंदुलकर साहब या मंटो या किसी का भी आपने प्ले लिखा हुआ उठा लिया और फिर आपने उस पर अपना डायरेक्शन डाल के, और फिर या फिर उन्होंने ही अगर स्क्रीन प्ले लिखा है तो उसी स्क्रीन प्ले के मुताबिक एज इट इज आपने उसको स्टेज कर दिया, कि एज इट इज आपने उसका मंचन किया, पूरा सेट भी वही और निर्देशन भी जो किताब में कहानी में लिखा है एज इट इज आपने फॉलो कर दिया। तो और या फिर ये होता है कि कई लोग उसको थोड़ा अपने हिसाब से अडेप्ट भी कर लेते हैं, तो वो एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्मेट है।
0: ठीक है, ठीक है।
1: डिवाइज्ड प्ले ये होता है जिसमें आप सब कुछ फ्रॉम द स्क्रैच करते हैं, मतलब पूरी टीम बैठती है और जो है आप लोग पहले खुद ही अपनी कहानी, एक कहानी बनाते हैं, फिर खुद ही कहानी पूरी डेवलप करते हैं, और फिर उस डेवलपमेंट के बाद सब लोग साथ में बैठ के डायलॉग्स, सीन्स, सब कुछ साथ में लिखते हैं, और फिर उसके बाद उसको डिवाइस किया जाता है। अब डिवाइस में आप एक नॉर्मल प्ले की तरह भी आप उसको एनेक्ट कर सकते हैं, या उसमें बीच में कुछ आप सजेस्टिव डिवाइसेस डाल सकते हैं कनेक्शन के लिए, कुछ प्रस्पेक्टिव डालने के लिए। इसमें डिवाइस्ड प्ले में वो थोड़ा सा डिवाइस प्ले को आप ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्मेट में भी अडेप्ट कर सकते हैं, या उसको आप एक थिएटर सेटअप से बाहर निकाल के अलग तरीके से एक अलग तरीके के वेन्यू में जाके ऑडियंस के बीच में खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो वो हो गया डिवाइस्ड प्ले। एक्सपेरिमेंटल, तो डिवाइस प्ले थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटल थिएटर के अंदर ही आता है। एक्सपेरिमेंटल थिएटर क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल थिएटर जो है इट कट्स ऑफ ऑल द बाउंड्रीज ऑफ द थिएटर, फोर्थ वॉल उसमें नहीं होती, मतलब उसमें, और उसमें जो मेजर इंटरेक्शन होता है इट इज एन इंटरेक्शन, इट इज एज मच अ पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑडियंस एज मच एज द परफॉर्मर्स। और एक्सपेरिमेंटल थिएटर में काफी एक्सपेरिमेंटल थिएटर्स जो है वो सिंगल आर्टिस्ट परफॉर्मेंसेस भी होते हैं, और उसमें ऑडियंस का पार्टिसिपेशन बहुत मेजर रहता है एक्सपेरिमेंटल थिएटर। एंड अक्सर एक्सपेरिमेंटल थिएटर्स जो हैं वो सोशली रेलेवेंट, सोशियो इकोनॉमिक, ज्योग्राफिक, पॉलिटिकल थीम्स पे होते हैं जो अवेयरनेस के लिए यूज करे जाते हैं या किसी किसी टॉपिक को सेंसिटाइज करने के लिए यूज करा जाता है एक्सपेरिमेंटल थिएटर।
0: तो नुक्कड़ नाटक भी इसी में आते हैं एक्सपेरिमेंटल थिएटर में,
1: आप कह सकते हैं कि ऑन अ ब्रॉडर परस्पेक्टिव कि वो एक्सपेरिमेंटल थिएटर के अंदर आ सकता है, उसकी अम्ब्रेला के अंदर में आ सकता है।
0: अच्छा चलिए मैं एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछता हूँ कि जब एक थिएटर आर्टिस्ट होता है तो उसके अंदर से ऐसा क्या ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब वो इंसान के तौर पर कैसे बदल जाता है, क्या उसके कुछ थिंकिंग में या उसके बिहेवियर में या उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में कोई बदलाव आ जाता है, एक जो नॉन थिएटर वाला पर्सन है उससे कुछ कुछ आप डू यू फील कि ऐसा कुछ होता है?
1: बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले एक बहुत ही एक बहुत ही सुपरफिशियल लेवल का एक्सप्लेनेशन दूंगी, एग्जाम्पल दूंगी और उसके बाद में थोड़ा डीप में जाऊंगी। तो जब मैंने फॉर एग्जाम्पल जब मैंने विनय वर्मा के यहाँ पे पहला वर्कशॉप किया था तो वो एक एक्सरसाइज कराते थे मिरर के अंदर देख के। तो उस एक्सरसाइज में जब उन्होंने बोला कि अब अपने अपनी शक्ल इस मिरर में देख के जो है फलाना एक्सप्रेशन दो, मैं नहीं दे पाई। और वो बहुत बेसिक कोई कॉमन ऐसे बहुत बेसिक जेनरिक एक्सप्रेशन है जो हर कोई दे सकता है, पर वो मैं नहीं दे पाई। और खाली वो मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम था। और फिर मैंने जब तो मैंने कई वर्कशॉप जब उस दौरान करे थे तब मुझे ये लगा कि हाँ मतलब मेरे फेस का ये हिस्सा तो चलता ही नहीं है और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं, ये हम सबकी होती है। क्योंकि हमारे फेस पे बहुत सारी ऐसी, अब हमारा जो फोरहेड है हम अक्सर आप देखेंगे अब उसका क्या काम है, पर एक्चुअली उसके भी मसल्स आपको एक्सप्रेशन देने में काम आते हैं। हमारे बहुत सारे फेस पे ऐसे मसल्स हैं जिनका हम यूज ही नहीं करते। तो जो थिएटर एक्टर्स हो तो थिएटर में आपको एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं जिससे आप उन मसल्स को यूज कर सकते हैं। तो अब ये एक नॉर्मल इंसान हमको नहीं पता है, तो हमारे तो वो मसल्स डेड हो जाते हैं। तो जब आप पहली बार उनकी एक्सरसाइजेस करते हो तो आपको बहुत दर्द होता है वहां पे, तो पता लगता है कि अच्छा यहाँ पर भी एक्चुअली कुछ है। तो ये तो बहुत सुपरफिशियल लेवल का मैंने एक एग्जांपल दिया है, लेकिन डीपर लेवल पे अगर बात करें तो जैसे मैंने आपके पहले आपको पहले बोला कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम अपने आपको बाउंड्रीज में बंद कर लेते हैं, मेंटल बाउंड्रीज बना लेते हैं। तो थिएटर आप देखेंगे तो कोई भी एक थिएटर का आपका थिएटर पर्सनैलिटी बैठा होगा और एक कोई नॉर्मल कॉमन मैन बैठा होगा, तो आप देख सकते हैं कि थिएटर आपकी बॉडी लैंग्वेज खोल देता है, आपकी जो झिझक होती है ना, चाहे वो फिजिकल झिझक हो, वो मेंटल झिझक हो, इमोशनल हो, आपकी वो जो बेड़ियां है वो तोड़ देता है। तो इट इज मच मोर इजी फॉर यू टू एक्सप्रेस एंड बी कॉन्फिडेंट, इट मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन। हमको थिएटर में सिखाया जाता है कि आपकी जो बॉडी है वो एक इंस्ट्रूमेंट है।

0: जिसका आप इस्तेमाल करते हो अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बॉडी मोटी है, पतली है, काली है, गोरी है, क्या है। तो अब जैसे ना विनय वर्मा जी हमसे एक एक्सरसाइज कराते थे, जो नील कमल की प्लास्टिक चेयर देखी है आपने, डिफिकल्ट, तो जिसमें जिसके नीचे चार पाए होते हैं और पाओ चारों पायों में कोई बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है,
1: ठीक है,
0: है ना। तो उन्होंने क्या करते हैं, वो आपको बोलेंगे कि आप इस चेयर के नीचे से निकलिए, आप ना अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना पैरों का कर सकते हैं, और आपका जो आप जब इसके नीचे से पार होंगे तो आपकी बॉडी कहीं टच नहीं होनी चाहिए चेयर पे।
1: अरे बाप रे, अच्छा।
0: अगर टच हो गई तो आपको दोबारा करना पड़ेगा, और आपको इस तरीके से रेंग के जाना है, और आपको कुर्सी के अंदर जाके बाहर निकल के और फिर दोबारा अंदर जाके बाहर निकल के पूरा एट बनाना है कुर्सी के इर्द गिर्द। आप कितना भी आपका साइज हो, कुछ भी हो, आपको करना है, और टच नहीं होनी चाहिए बॉडी। तो उन्होंने ये चीज सिखाया जो मैं अपने लाइफ में हर चीज में इम्प्लाई करती हूँ, कि हम अपनी जिंदगी को अपने दिमाग से जीते हैं, अपने फाइट अपने दिमाग से लड़ते हैं, आपकी बॉडी नहीं लड़ती है। आपने कई मूवीज में भी देखा होगा कि जो सोल्जर होता है ना, वो फाइट अपने बॉडी से नहीं करता है, वो अपने दिमाग से फाइट करता है, और यही जो चीज है वो हमने सीखी। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं थिएटर में, आप थिएटर टीचेस यू अ वे ऑफ लाइफ, थिएटर टीचेस यू द वे यू लुक एट लाइफ, थिएटर आल्सो टीचेस यू द वे यू परसीव लाइफ। पर ये आपके ऊपर है कि इन सब चीजों को सीख के आपको उनको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है कि नहीं, वो आपके ऊपर है।
1: ब्यूटीफुली, बहुत बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, मजा आ गया। लेकिन आपने बहुत सारी गहरी बातें भी कह दी हैं कि एक एक आम इंसान में, आम क्या मतलब, एक नॉर्मल इंसान में और एक थिएटर आर्टिस्ट में किस तरह का फर्क आता है, क्योंकि वो मेंटली भी उसका लेवल डिफरेंट हो जाता है, फिजिकली भी डिफरेंट हो जाता है, फेशियल एक्सप्रेशन अपने अंदर की बातें बाहर भी अपने एक्सप्रेशन के थ्रू वो ले आता है। मजा आ गया सारी बातें सुन के। तो चलिए हम यहाँ रुक के एक गाना सुन लेते हैं इस खूबसूरत बातचीत के साथ ही, और फिर आगे बातचीत करते हैं।

0: हाँ, वेलकम बैक तरुषा जी। अब आपने सीनियर थिएटर स्टारवर्ड्स के साथ काम किया है। पीयूष मिश्रा एक बहुत बड़ा नाम है, उनका गगन दमामा बाजो, ये मेरे ख्याल में एक सिख वो है,
1: भगत सिंह के ऊपर है।
0: भगत सिंह के ऊपर है। तो इसको स्टेज करना कैसा अनुभव रहा, वो भी उनके सामने, पीयूष मिश्रा जी के सामने, इसके बारे में क्या कहेंगी आप?
1: हाँ, ये जरूरत हमसे हो गई है कि कुछ बहुत ऐसे महारथी एक्टर्स के प्लेज हमने उन्हीं के सामने करने की जरूरत करी। पता नहीं किस जोश में थे कि हमने कर दिया, पर खैर, पर मजा आया था। तो गगन दमामा बाजो आई थिंक हमारा सेकंड बड़ा प्रोडक्शन था, उससे पहले
0: अच्छा।
1: हमने चाणक्य किया था। तो एक्सपीरियंस तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था। हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस था हमारे प्रोडक्शन पे, थोड़ा बड़े लेवल का प्रोडक्शन था। हमें नहीं पता था कि पीयूष जी आ पाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, पर हमने ऐसे हवा में अंधा तीर मारा था और वो लग गया। और पीयूष जी फ्री थे उस टाइम पे और उन्होंने कहा, हाँ मुझे बहुत खुशी होगी, मैं आऊंगा। और फिर वो आए तो वो उस प्ले में मैंने नाटक, मतलब मैंने पार्ट नहीं लिया था, वो मैंने प्रोड्यूस किया था, हमने प्रोडक्शन करी थी।
0: अच्छा।
1: और पीयूष जी को भी काफी पसंद आया था वो प्ले। और जो सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगता है कि जब हम जिनके या तो राइटर्स, जिन ऑथर्स के नाटक हम करते हैं या जिन एक्टर्स के नाटक हमने कर रहे हैं, और जब वो खुद वहां मौजूद होते हैं ऑडियंस में और जब वो प्ले देखते हैं, तो उसके हर प्ले के बाद में हमारी पूरी टीम बैठती है उनके साथ जिनका
0: अच्छा
1: वो नाटक होता है,
0: अच्छा फिर
1: उनसे
0: बातचीत
1: फीडबैक के
0: करते
1: लिए,
0: हो।
1: फीडबैक के लिए कि उनको
0: ओके
1: क्या कमियां लगी, हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो वो क्या होता है ना, वो जो होता है ना, वो होता है कि भगवान आपको खुद स्वयं अपने हाथ से प्रसाद दे रहे होते हैं। तो वो तो
0: बिल्कुल
1: जितना बटोर सकते हो आप बटोर लो, वो एक अपने अंदर एक 2 घंटे की मास्टर क्लास हो जाती है। तो और पीयूष जी तो ऐसे हैं कि मतलब ना, वो तो इतना अच्छा बोलते हैं, इतने अच्छे, यू नो, उनका इतने अच्छे स्पोक्स पर्सन है कि उनका तो लगता है कि वो बैठ के, अगर चाय पे भी बैठ के बातें कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो कोई कविता कह रहे हैं।
0: सही बात।
1: तो
0: ऐसे ही आपने चाणक्य भी किया, मनीष वधवा के सामने, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के सामने मंटो किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और नंदिता दास का तो वो मंटो तो इनकी फिल्म है, बहुत ही शानदार है, मैंने भी देखी है वो पिक्चर, तो
1: हाँ जी,
0: जो
1: तो
0: मंटो पे बनाई है, ऑटोबायोग्राफी टाइप है। बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, तो हमने एक्चुअली मंटो नाटक जो है वो, तो मेरी जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है मेरी, आर्ट लाइफ इवेंट्स, तो उसके तहत हमने मूवी प्रमोशन किया था मंटो का, जिसमें नवाजुद्दीन
0: ओके
1: सिद्दीकी और नंदिता आए
0: अच्छा
1: थे।
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: एज पार्ट ऑफ दैट इवेंट हमने मंटो के दो हमने मंटो का नाटक स्टेज किया था उनके सामने, एज पार्ट ऑफ
0: अच्छा
1: द प्ले, एज एन ओड टू मंटो हिमसेल्फ।
0: अच्छा
1: तो हाँ, और वो हमारा गुड लक, और वो इतना बेहतरीन प्रोडक्शन था, मतलब आई एम वेरी प्राउड ऑफ पुटिंग अप दैट एक्ट टुगेदर। एंड नवाजुद्दीन, मुझे अभी भी याद है कि मैं स्टेज के साइड में खड़ी थी और नवाज बैठे हुए थे सामने, और मैं सिर्फ उनको देख रही थी, उनकी आंखों में जो चमक थी। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप इस प्ले की वीडियो और पिक्चर्स मुझे भेज पाएंगी, ये मेरा ईमेल आईडी है। मैंने कहा श्योर सर, और फिर हमने उनको मतलब भेजा, और उन्होंने फिर काफी टीम के साथ आई थिंक आधा घंटा बिताया इवेंट के बाद में, और उनको बहुत बहुत पसंद आया हमारा। काफी ऑब्वियसली हमने आर्टिस्टिक लिबर्टी ली थी थोड़ी, हमने अपने ही नजरिए से उसको प्रेजेंट किया था, जो विजुअली उनको, जो उनको बहुत पसंद आया। तो उनसे ये सुनना, तो फिर मतलब वो एक बहुत, एक अपने अंदर, अपने आप में बहुत अच्छी वो थी।
0: नहीं, ये पिक्चर तो मंटो मैंने भी देखी है, नवाजुद्दीन और नंदिता दास की, बहुत ही पावरफुल पिक्चर थी, बहुत बहुत अच्छी मूवी थी,
1: जी
0: मजा आ
1: हाँ,
0: गया था। वाह, और मंटो का तो करेक्टर वैसे भी अपने आप में इतना डाइवर्स है, कलरफुल है और
1: बिल्कुल
0: कंट्रोवर्शियल है, सभी कुछ है।
1: बिल्कुल
0: तो चलिए चलिए, तो अब ऐसा करते हैं कि यहाँ रुक के हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं, और कोई मंटो की फिल्म का ही कोई गाना सुनेंगे और फिर आगे चलते हैं,
1: बिल्कुल
0: ठीक है ना? है ना?

0: हम थोड़ा सा आपकी NIFT निफ्ट की लाइफ पे आते हैं। निफ्ट हैदराबाद में आप थिएटर सिखा रही हैं, टीचिंग और परफॉर्मिंग में इनमें क्या फर्क है? आप खुद परफॉर्म भी कर रही हैं और वहां टीच भी कर रही है, तो दोनों में कैसा फर्क आता है आपको?
1: फर्क तो बहुत है। अब जैसे खुद पढ़ के एग्जाम देना हुआ और फिर एक बार क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाना, तो फर्क तो दोनों में होता है। पढ़ाई दोनों में ही करनी पड़ती है, लेकिन एक में पास होने का जो पूरा ओनस है वो हमारे खुद के ऊपर होता है, और एक में होता है कि सामने वाला बच्चा कितना पढ़ के कितना निकाल लेगा। तो एक बेसिक फर्क तो वो होता है, लेकिन हाँ, मतलब जब थिएटर में आप जब परफॉर्म कर रहे होते हो तो अपने किरदार तक पहुंचने की जर्नी हमारी खुद की होती है। अपनी खुद की तैयारी जो है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, उस किरदार की, वो खुद की होती है। इट इज अ पर्सनल जर्नी दैट यू हैव टू ट्रेवल विद टू रीच योर कैरेक्टर एंड देन टू डू जस्टिस एंड डिलीवर योर कैरेक्टर ऑन द स्टेज एज पार्ट ऑफ द एंटायर प्ले। जबकि और एक ये भी होता है कि जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो तो वो एक एक मैजिकल मोमेंट होता है जिसमें आप खुद प्रेजेंट होते हो। वो आपका मोमेंट होता है जो आपसे कोई नहीं ले सकता, वो आपका होता है। लेकिन जब आप टीच कर रहे होते हैं थिएटर, तो फिर ये है कि मैं आई एम अ फैसिलिटेटर टू द स्टूडेंट्स, और मैं उनको सिर्फ टेक्निक सिखा सकती हूँ, पर उस टेक्निक को यूज कैसे वो बच्चे कर पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, कहाँ कहाँ कर पा रहे हैं, वो उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, कितना सक्सेसफुली या अनसक्सेसफुली वो कर पा रहे हैं, वो उनका जर्नी है। वो डिफरेंस एक है।
0: अच्छा, चलिए मैं थोड़ा सा एक बहुत ही एक ऑफ द कफ सवाल पूछ रहा हूं, और हमारी ऑडियंस होती है तरह तरह की, और अगर कोई ऑडियंस में ये जानना चाहे कि वो थिएटर से जुड़ना चाहता है और थिएटर मतलब उसका मन तो है थिएटर से जुड़ने का, तो उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, किस तरह से? आप चूंकि एक थिएटर पढ़ाती भी हैं, सिखाती भी हैं, तो उसके दिमाग में किस तरह से उसको अप्रोच करना चाहिए अगर वो थिएटर लाइन में आना चाहे तो?
1: देखिए, सबसे पहले
0: हाँ
1: तो उसको ये क्लियर होना चाहिए कि उसको किस तरीके का थिएटर करना है।
0: ओके
1: सबसे पहले तो लैंग्वेज आपकी क्या है, तो क्योंकि
0: ओके
1: हर शहर में कुछ थिएटर ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंग्लिश थिएटर करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो
0: ओके
1: हिंदी के करते हैं खाली, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों के करते हैं और पर वो बहुत कम होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रीजनल लैंग्वेजेस के करते हैं। तो आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है, और उसके अंदर फिर जब आप अपना लैंग्वेज आपका एस्टेब्लिश हो जाए कि ठीक है इस लैंग्वेज में मुझे करना है, फिर आप जाकर रिसर्च करना चाहिए कि कितने कौन उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए कितने ग्रुप्स हैं। फिर ग्रुप्स का थोड़ा स्टडी करना चाहिए, या उसमें जो कोई अगर वर्कशॉप कर रहा है तो उनका थोड़ा फीडबैक, क्योंकि टीम डायनामिक्स से भी बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर कहीं पे आपको दिख रहा है कि कोई वर्कशॉप हो रही है और वर्कशॉप एक प्रोडक्शन में एंड हो रही है, तो देन उसमें क्या होता है कि आपको ये सीखने का भी मौका मिलता है, और सीख के फिर उसको उसका जो है आपको मंच पे जाने का भी मौका मिलता है उस पे व्हेन इट एंड्स। तो काफी प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप्स होती हैं, तो अगर आपको बहुत जल्दी है मंच पे जाने की तो आप ऐसे वर्कशॉप्स भी कर सकते हैं। पर
0: नहीं, ये अच्छा तरीका बताया आपने, क्योंकि यहाँ भी जयपुर में भी आजकल जवाहर कला केंद्र है, रायसन इंटरनेशनल सेंटर, इनमें वर्कशॉप्स होती रहती हैं, और NST वाले भी आके यहाँ वर्कशॉप्स करते हैं कई बार,
1: हाँ,
0: मैंने
1: तो वो तो
0: देखा
1: बहुत अच्छा है। हैदराबाद में
0: है।
1: तो बहुत कम ऐसा मौका होता है जब NSD वाले आते हैं, लेकिन हाँ, आप तो बहुत

0: आई थिंक हर थिएटर एक्टर को मेरे हिसाब से बैक स्टेज में काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खाली स्टेज पे जाके एक्टिंग करना ही थिएटर नहीं होता है। थिएटर के बहुत एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर आप थिएटर में काम कर रहे हैं तो, और अगर प्रोडक्शन का कोई नहीं आया है तो आप मट्टी वाले स्टेज पे तो नहीं जाएंगे, तो झाड़ू भी खुद ही मारनी पड़ती है, फिर खाना चाय पानी भी खुद ही अरेंज करना पड़ता है, कॉस्ट्यूम भी खुद ही करनी पड़ती है, मेकअप भी खुद ही करना पड़ता है। अनलेस फिर आप वो बहुत बड़े लेवल के आप प्लेस कर रहे हैं तो एक अलग बात होती है, बट यू शुड बी रेडी एंड ओपन टू गेट डाउन एंड डू द डर्टी वर्क ऑल्सो। तो वो आपको करना पड़ता है, पर यह है कि तो जब आप वहां से शुरू करते हैं तो फिर आपको पूरी जर्नी पता होती है कि ये भी चैलेंजेस होंगे, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और फिर एक ये चीज है कि मेरी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, तो उस वजह से मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस बैकएंड का इसलिए भी है कि ठीक है, मतलब लाइटिंग का ये, साउंड का ये, और प्रोडक्शन का ये। तो हाँ, चैलेंजेस तो बहुत होते हैं प्रोडक्शन खड़ा करने के लिए, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, सबके टाइमिंग्स अलग हैं, सबका स्केड्यूल अलग रहता है। तो हर किसी को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, साउंड वालों को लेके आना, लाउड लाइट वालों को, और टू मेकिंग श्योर कि सब रेडी सेम टाइम पे रिहर्सल के लिए आ रहे हैं और सब सिंक में चल रहा है और सब ने अपना काम टाइमली करा है। तो वो एक बहुत बड़े ग्रुप को एक साथ लेके आना और सीमलेसली उसको काम कराना, वो तभी होता है जब वो सिर्फ थिएटर में उतना सीमलेसली हो सकता है, क्योंकि थिएटर बहुत डिसिप्लिन्ड फील्ड है। तो वो चीज है, बट हाँ, वो मुश्किल तो बहुत होता है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट सबको कोऑर्डिनेट करके सीमलेस चलना होता है, तो डिफिकल्ट तो वो काफी है।
1: डिफिकल्ट। तो चलिए अब थोड़ी सी हम बात आपकी हीलिंग की करना चाहेंगे। अब थोड़ा सा रुख बदलते हैं और स्टेज हमने काफी डिस्कस कर लिया। अब ये बताइए कि आप ट्विन हार्ट मेडिटेशन आपके जीवन में कैसे आया, और थोड़ा मुझे हमें समझाइए कि ट्विन हार्ट मेडिटेशन होता क्या है, इसमें क्या करते हो आप, क्या क्या है इसके पीछे सारी कहानी।
0: बिल्कुल। सो ट्विन हार्ट मेडिटेशन जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड को मास्टर चुआ कोक सुई ने दिया है। ये मॉडर्न वर्ल्ड के वो एक हीलर थे फिलीपींस से, हु इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न प्राणिक हीलिंग टू द मॉडर्न वर्ल्ड। मैं ये कहूंगी, मेरा मानना यह है कि प्राणिक हीलिंग बहुत पुराने एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, बीच में कहीं शायद लुप्त हो गया था, एंड देन ही इज द वन हु ब्रॉट इट टू द मॉडर्न वर्ल्ड, प्राणिक हीलिंग। तो प्राणिक हीलिंग इज एन एनर्जी बेस्ड हीलिंग लाइक रेकी, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। तो रही बात प्राणिक हीलिंग की, तो ट्विन हार्ट मेडिटेशन प्राणिक हीलिंग का पार्ट है और सेम कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। ट्विन हार्ट्स का मतलब होता है कि हमारे अंदर दो हार्ट होते हैं। एक हार्ट तो हमारा जो हमारी फिजिकल बॉडी में जो हार्ट है, हार्ट चक्रा, सेंटर ऑफ आर चेस्ट, दैट इज वन, दैट इज आर हार्ट। सेकेंड हार्ट इज हमारा जो क्राउन चक्रा होता है सर में ऊपर। तो क्राउन चक्रा इज द सेकेंड हार्ट, विच इज द हार्ट ऑफ गॉड। तो ट्विन हार्ट मेडिटेशन में हम हमारा हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा पे फोकस करते हैं, विच ओपन्स अ ह्यूमन बीइंग टू द डिवाइन कॉन्शियसनेस या यूनिवर्सल एनर्जी। तो हम जब उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर जो मेडिटेशन है वो एक बहुत ही, ट्विन हार्ट मेडिटेशन जो है उसके बहुत बेनिफिट्स हैं, क्योंकि जब आप इन अपने अपने हार्ट और गॉड के हार्ट से आप कनेक्ट करते हो, तो इट्स अ वेरी डायरेक्टेड एंड अ वेरी फोकस्ड मेडिटेशन, जिसमें आप एम्पैथी, कंपैशन, लव, आप इन तरह की पॉजिटिव चीजों पे आप फोकस करते हैं।
1: चलिए, तो बहुत आपने अच्छी तरह से बता दिया कि यही मैं सोच रहा था ट्विन हार्ट होता क्या है। तो एक तो फिजिकल हार्ट हो गया और एक आपका जो ब्रेन के पीछे हार्ट है उसके चक्रा है,
0: क्राउन चक्रा, क्राउन चक्रा।
1: क्राउन चक्र को। चलिए तो यहाँ रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर थोड़ा सा आपको अभी है ऑलमोस्ट बकौल अमीन से, यानी हम आखिरी पायदान पर आ गए हैं, और गाना सुनने के बाद आपसे एक सवाल और पूछूंगा बस
0: बिल्कुल
1: आपसे।

0: हाँ तो तर्षा जी, आपने वेब सीरीज में काम किया, थोड़ा सा उस एक्सपीरियंस के बारे में बता दीजिए हमें कि कैसा रहा, स्टेज और कैमरा एक्टिंग में क्या डिफरेंस है, कुछ ब्रीफ में बताइए हमें कैसा लगा आपको वेब सीरीज का एक्सपीरियंस कैसा रहा।
1: बिल्कुल. तो मेरा पहला जो वेब सीरीज था वो अगर आपको एक्टर साउथ इंडियन एक्टर नागार्जुना मालूम होगा, जिन्होंने काफी हिंदी मूवीज में भी काम किया है, तो उनका प्रोडक्शन हाउस है अन्नपूर्णा स्टूडियो. तो उनके प्रोडक्शन का था वो, और उसमें मेरा एक कुछ 10 एपिसोड का वेब सीरीज था, जिसमें मेरा अराउंड 8 एपिसोड्स में मेरा काफी अच्छा रोल था, काफी लेंदी रोल था. एंड इट वॉज अ कॉमेडी रोल दैट आई गॉट टू प्ले. कैमरा एक्टिंग करना कभी भी मेरा फोकस नहीं था, क्योंकि स्टेज वॉज ऑलवेज माई होम, बट ये एक अपॉर्चुनिटी जबरदस्ती मेरी झोली में आके पड़ गई थी. तो फिर मैंने लिया और मैंने एक्सपीरियंस किया. एंड आई थिंक जब मैं वहां गई, तो मुझे कैमरा एक्टिंग का कोई आइडिया नहीं था. कैमरा एक्टिंग की अलग ही वोकैबुलरी होती है, थिएटर की वोकैबुलरी अलग होती है, कैमरा एक्टिंग की वोकैबुलरी अलग होती है. मुझे फील्ड नहीं पता था क्या होता है, पायलट नहीं पता था मुझे क्या होता है, और बहुत सारी चीजें थी जो नहीं पता थी, जो वहां जाके मैंने सीखी. बट मेरा वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं काफी एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ काम कर रही थी. दे आर सीजनड एक्टर्स जो तेलुगु मूवीज में बहुत काम कर चुके हैं, और मेरा पहला कैमरा एक्सपीरियंस वो लोग तेलुगु ओरिजिन के, मैं हिंदी ओरिजिन की. तो मेरे लिए ये भी प्रेशर था कि मेरी तेलुगु की गलती की वजह से उनको रीशूट ना करना पड़े. तो हमारे बार बार पता लगा, बार बार टेक्स हो रहे हैं. तो मैंने जो है, मतलब तो ये हुआ था कि मतलब मैंने इतनी इतना 3 महीना तेलुगु के डायलॉग्स इतना मांझ लिए थे कि थैंक गॉड कि मेरी वजह से किसी को रीटेक नहीं लेना पड़ा था. पर
0: तो
1: वो मेरा
0: आप
1: एक्सपीरियंस,
0: तेलुगु तेलुगु तेलुगु बोल लेते हो?
1: हाँ मैं तेलुगु बोल लेती हूँ, आई एम मैरिड टू अ
0: वाह
1: तेलुगु फैमिली.
0: वाह,
1: तो हाँ, तो इसलिए उस वजह से भी मेरे थोड़ा सा इजी रहा था तेलुगु. तो बट इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, और मेरी जो टीम थी दैट वाज वेरी सपोर्टिव एंड वेरी एनकरेजिंग. तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं नई हूँ. एंड आई थिंक मेरा थिएटर की जो तैयारी थी ना, थिएटर बैकग्राउंड रियली हेल्प मी इन डिलीवरिंग द वर्क दैट आई वॉज सपोज टू डिलीवर इन द वेब सीरीज. तो आई थिंक वो थिएटर की तैयारी बहुत काम आती है. बाकी फर्क ये होता है थिएटर और कैमरा का, कि थिएटर में आपको थोड़ा लाउड रहना पड़ता है फिजिकली और वोकली, कैमरा में आपकी वो हल्की सी फूंक भी पकड़ लेता है.
0: सही बात।
1: और थिएटर में ये है कि ऑडियंस आपके साथ ही रहती है, मतलब आपको ऑडियंस को, सॉरी, कैमरा में ऑडियंस आपके साथ रहती है, क्योंकि कैमरा आपको फॉलो करता है. लेकिन आप स्टेज पे जब होते हो तो आपको ऑडियंस को अपने साथ लेकर चलना पड़ता है,
0: लेकर चल रहे,
1: तो
0: बहुत
1: वो एक
0: प्यारी
1: फर्क
0: बात
1: होता है.
0: है। अच्छा, चलते चलते अगर वो तेलुगु डायलॉग याद आ गया हो तो बता दीजिए।
1: हाँ ओके, मेरे को सिर्फ 2 लाइनें याद आई हैं अभी, तो मैं वही सुनाती हूँ.
0: ओके ठीक है।
1: तो कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि मैं ऊपर नेबर आंटी हूँ, और मेरे नीचे एक फैमिली रहती है, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली है, और उनका जो बड़ा बेटा है ही इज डेटिंग अ तेलुगु फिल्म एक्ट्रेस जिसका नाम है आयरा. और क्योंकि मैं बहुत बीबीसी ब्रॉडकास्ट जैसा गॉसिप मॉन्गर हूँ, तो मुझसे छुपा के रखा है, मेरा नाम है सुशी आंटी उस मूवी, एक्चुअली उस वेब सीरीज में, तो मुझसे छुपा के रखा है कि सुशी आंटी को मत बताना, वो पूरी कॉलोनी में चिपका देगी. सो आयरा उनके घर पे फैमिली का कोई ऐसा ट्रेडिशन फेस्टिवल होता है, तो आयरा उनके घर पे आके लंच करने आई होती है. तो मुझे पता लग जाता है, और मैं उनके घर में बेल बजा के घुसने की कोशिश कर रही होती हूँ, जब उस बेटी लड़के की जो मम्मी है वो मुझे कह रही होती है कि अभी नहीं, बाद में आना. तो मेरा डायलॉग है कि अच्छा, मतलब आयरा आई है, मैंने देखा कितनी गोरी है ना, एकदम चमकती है, तो ऐसा डायलॉग है. तो मैं उससे बोलती हूँ कि आयरा आयरा वो चुंदी चूसना एंत मरुस्तुंदे. तो मतलब कि आयरा आई है, मैंने देखा कितनी चमकती है ना उसकी स्किन,
0: हाँ
1: दैट
0: समझिए
1: इज अ डायलॉग.
0: समझिए, ओके वेरी गुड, चलो मजा आ गया, वंडरफुल। तो तरुषा जी, आज की बातचीत सच में बहुत दिल से जुड़ी रही। आपकी कहानी ये बताती है कि लाइफ पे एक ही रास्ता नहीं होता, पैशन बदल सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है, लेकिन अगर इंटेंट क्लियर हो तो जर्नी हमेशा मीनिंगफुल रहती है। थिएटर हो या हीलिंग, स्टेज हो या स्ट्रीट, आपका काम ये याद दिलाता है कि एक्सप्रेशन भी थेरेपी हो सकता है। तो तर्षा जी, आपका आज हमारे से जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और शुक्रिया। हम दुआ करते हैं कि आप इसी तरह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती रहे और नए नए रास्ते तलाशती रहे और उन पे फतेह हासिल करती रहे। थैंक यू वेरी मच।
1: थैंक यू सो मच. थैंक यू टू यू एंड योर स्टेशन, एंड ऑल द बेस्ट टू योर लिसनर्स.
0: तो दोस्तों मैं आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी और एक नए सफर के साथ। तब तक टेक केयर, स्टे माइंडफुल एंड कीप लिसनिंग जिंदगी के रंग गीतों के संग। थैंक यू।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ जिंदगी के रंग गीतों के संग इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, आरजे रंजिला के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अकबर और बीरबल की कहानी। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।

0: हमारे ख्याल से आलू सबसे उम्दा सब्जी है।
1: आप सही फरमा रहे हैं जापना, आलू ही सबसे बेहतरीन है।
2: जी हाँ, आलू के कई तरह के लजीज पकवान बनाए जा सकते हैं और इन्हें दोपहर या रात के खाने में भी खा सकते हैं। ये बेशक एक बेहतरीन सब्जी है।
0: इस जहां में ऐसा कोई नहीं जिसे आलू पसंद ना हो। ये हर किसी की पसंदीदा सब्जी है, इसे खाकर कोई नहीं उबता। बीरबल, हमेशा की तरह आप फिर चुप हैं। क्या आप हमसे सहमत नहीं हैं?
3: माफी चाहता हूं जहांपना, मुझे भी यही लगता है कि आलू काफी स्वादिष्ट होते हैं।
0: ओह, तो आपको ये लगता है कि आलू काफी स्वादिष्ट होते हैं, मगर ये नहीं लगता कि आलू सभी सब्जियों में बेहतरीन है। क्यों
3: जहांपना? आलू बेशक स्वादिष्ट होते हैं, पर अगर कोई लगातार आलू खाए तो उब जाएगा।
0: आप एक बार फिर हमारे खिलाफ जा रहे हैं। आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? यहाँ सब हमसे सहमत हैं, सिर्फ आपको छोड़कर।
2: जहाँपना, हम सबकी यही राय है कि जो कुछ आपने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई भी आलू खा के उब नहीं सकता। बीरबल हमेशा की तरह खुद को अलग साबित करना चाहते हैं।
0: हाँ, बीरबल, कभी कभी हमें ताज्जुब होता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं।
3: जहांपना, आपकी बात काटने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि भगवान की बनाई सभी चीजों में बेशक आलू भी एक नायाब तोहफा है, पर वो सबसे बेहतर नहीं है। दुनिया में और भी कई शानदार और लाजवाब चीजें हैं जो भगवान ने हमारे लिए बनाई हैं।
0: भगवान ने बनाई हैं? आपका मतलब है कि भगवान ने खुद जमीन पर आकर इन सब चीजों को बनाया है? हो सकता है, पर यदि ऐसा है तो आप ये क्यों नहीं बताते कि आपके किस भगवान ने क्या नायाब चीज बनाई है? अव्वल तो हमें यही समझ नहीं आता कि आपके इतने सारे भगवान कैसे हैं।
3: मेरे लिए ये कहना मुश्किल है कि हमारे किस भगवान ने आलू बनाया, पर आपके दूसरे सवाल का जवाब ये है कि हमारे हिंदू धर्म में सभी कुदरती तत्वों को भगवान के समान माना जाता है, इसलिए भगवान भी अनेक हैं।
0: ये हमारे सवाल का पूरा जवाब नहीं है, लेकिन कुछ और भी है जो हमें आपकी धार्मिक कथाओं में बड़ा बेवकूफाना लगता है। क्यों भगवान खुद ही जन्नत से नीचे आते हैं अपनी बनाई हुई चीजों को बचाने? वो किसी और को क्यों नहीं भेजते? आखिरकार वो भगवान हैं।
3: जहांपना, अभी मेरे पास आपके सवाल का कोई जवाब नहीं है, पर आप मुझे एक दो दिन की मोहलत दीजिए, मैं जरूर आपका जवाब दूंगा।
0: बीरबल, हमें नहीं लगता कि आप इस सवाल का कोई माकूल जवाब दे पाएंगे, जिस तरह आप हमें ये नहीं समझा पाए कि आलू सब्जियों का राजा क्यों नहीं है। पर आप कोशिश कर सकते हैं, हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा।

0: आपको खाना पसंद आ रहा है?
1: जी हाँ जहांपनाह, खाना बड़ा ही स्वादिष्ट है।
0: सिपाही, खानसामा को अभी यहाँ पेश करो।
1: क्या बात है जहांपनाह?
0: कुछ नहीं। तुमने खाने में क्या बनाया है?
1: क्या इन पकवानों में कहीं कोई गड़बड़ है जहांपनाह?
0: तुम हमें बताओ क्या गड़बड़ है? तुम हमें बताते क्यों नहीं कि तुमने कौन कौन से पकवान बनाए हैं?
1: जहांपनाह, शुरुआत के लिए मैंने मसाला आलू बनाया है। यह पकवान दम आलू है। यह है मसले हुए आलू रसेदार लाल तरी के साथ, साथ में तली हुई आलू की टिक्कियां। इसके साथ है आलू का सलाद और फिर है मीठी आलू खाने के बाद के लिए। और जहांपनाह, मैंने खुद सभी पकवानों को चखा है, किसी में कोई कमी नहीं है।
0: हाँ, किसी में कोई कमी नहीं है, पर ये सब पकवान आलू के ही क्यों हैं? यहाँ कहीं मुर्ग मुसल्लम या गोश्त क्यों नहीं है खाने में? क्या हम सिर्फ आलू ही खाएंगे?
1: जहांपनाह, मुझे कहा गया था कि आपको आलू अच्छा लगता है और आप उसे किसी भी तरह से खाने में पसंद करते हैं, इसलिए मैंने तमाम आलू के ही पकवान बनाए हैं।
0: हाँ, हमें आलू पसंद है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सिर्फ आलू ही खाएं। हमें इन सभी आलू के पकवानों को देखकर बड़ा अजीब लग रहा है। किसने कहा तुमसे सिर्फ आलू बनाने के लिए?
1: मैंने कहा जहांपनाह।
0: बीरबल, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? आपने ऐसा क्यों किया?
1: माफी चाहता हूँ जहांपनाह, पर कल तो आप आलू के फायदों पर बात कर रहे थे और आपने कहा था कि आप आलू कभी भी और किसी भी रूप में हमेशा खाना पसंद करते हैं।
0: ठीक है बीरबल, हम समझ गए। कोई भी शख्स सिर्फ आलू ही खाकर जी नहीं सकता। ठीक है, हमें बीरबल से बहस करने की काफी सजा मिल गई। अब हमें खाने में आलू के अलावा कुछ और दिया जाए।
1: जरूर जहांपनाह, अभी लाए।
0: बीरबल, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी तक आपने अपने भगवान के बारे में हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया है।
1: जहांपनाह, मुझे आपका सवाल याद है, आपको एक दो दिनों में जवाब मिल जाएगा।
0: ओह, आपको इतना भरोसा है खुद पर? पर हमें नहीं लगता कि आप कोई माकूल जवाब देकर हमें यकीन दिला पाएंगे।

0: यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, बल्कि महारानी और शहजादे भी यहाँ आकर कितने खुश हैं।
1: हाँ जहाँ आप सही फरमा रहे हैं,
2: शाम के वक्त यहाँ काफी ठंड हो जाती है और पानी तो दिन में भी जैसे जम जाता है। मुझे लगता है इस साल सर्दियाँ जल्द आएंगी।
0: बीरबल, वो दासी क्या कर रही है? वो पानी के इतने नजदीक क्यों टहल रही है?
3: बचाओ, बचाओ, शहजादा, शहजादा।
4: बेवकूफ औरत, मेरा बच्चा, अरे बचाओ, मैं,
1: अरे शहजादा,
3: ओ, मेरा बच्चा, कोई बचाओ उसे, कोई तो बचाओ।

0: मुझे दीजिए मेरा बेटा, मेरा लाल। ओह क्या हो गया, कुछ हुआ तो नहीं? ओह मेरा बेटा,
1: ये क्या हुआ?
2: क्या मतलब है इसका?
3: जहाँ पना मुझे समझाने दीजिए।
2: तुम थे इस घिनौने मजाक के पीछे?
3: उस्ताकी माफ हो हुजूर, पर शहजादा बिल्कुल ठीक है।
2: बीरबल, अगर तुमने ऐसा घिनौना मजाक करने की सही वजह नहीं बताई तो हम तुम्हें अपने राज्य से निकाल बाहर करेंगे।
3: जहाँ पना, मेरा मकसद मजाक करना नहीं था, पर आपको और रानी साहिबा को इससे जो दुख पहुँचा उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ।
2: ठीक है, अगर ये कोई मजाक नहीं था तब इसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद था?
3: जहाँ पना, आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे तब मैं आपको सब समझा दूंगा।
2: तुम हमसे सवाल करोगे? ठीक है, पर ये हमारे सब्र का इम्तिहान है, पूछो।
3: जहाँ पना, जब आपने शहजादे को पानी में गिरते हुए देखा तब आपने सिपाहियों, दासियों या हम में से किसी का पानी में कूदकर शहजादे को बचाने का इंतजार क्यों नहीं किया? आप एक शहंशाह होते हुए भी खुद क्यों उसे बचाने गए?
2: क्या फिजूल का सवाल है ये? किसी के बच्चे की जान खतरे में हो तो क्या उसके माँ बाप चुप बैठकर तमाशा देखेंगे या किसी गैर को आकर उसे बचाने का इंतजार करेंगे?
3: बिल्कुल जहाँपना, आपने बिल्कुल सही कहा। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे की जान खतरे में देखकर चुपचाप नहीं बैठेंगे। हम सभी भगवान की संतान हैं। जब भी हम में से कोई किसी मुसीबत में होता है और भगवान को पुकारता है तो वे अपने किसी सेवक को भेजने या इंतजार करने की बजाय खुद स्वर्ग से आकर हमें बचाते हैं।
2: बीरबल, आपने हमारे सवाल का बिल्कुल सही और माकूल जवाब दिया है, और आपने हमें ही अपने सवाल के जवाब देने का जरिया बनाया, शाबाश। पर आपको हमें और महारानी को परेशान करने की सजा जरूर मिलेगी। आपको शहजादे की पूरे दिन देखभाल करनी होगी इस मजाक के एवज में।
3: ये सजा नहीं है जहाँपना, ये मेरी खुशकिस्मती है, इसके लिए आपका शुक्रिया।
4: दोस्तों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, आरजे रंजीला के साथ।

0: Chắc báo gì?
1: जी जहाँ पर ना
0: हमारा फूलदान कहाँ गया? कहीं वो फिर से तो नहीं खो गया?
1: जब मैंने नौकर को सफाई करने के लिए अंदर आने दिया तब तो यही था। मैं अभी उससे पूछता हूँ।
0: हाँ, उसे फौरन यहाँ बुलाओ। हमारा फूलदान कहाँ गया? आखिर में तो तुम ही यहाँ थे, बताओ कहाँ है वो?
2: सर, मैं उसे साफ करने ले गया था।
0: सफाई? उसके लिए उसे यहाँ से ले जाने की क्या जरूरत थी? जाओ, उसे फौरन वापस लाओ।
2: हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, पर दरअसल सफाई करते वक्त गलती से गिरकर टूट गया वो।
0: टूट गया? मगर अभी तो तुमने कहा कि तुम उसे साफ करने ले गए हो। गलती से गिराने के लिए हम तुम्हें माफ कर देते हैं, मगर हम तुम्हें झूठ बोलने की सजा देंगे। हमें झूठ से सख्त नफरत है। दफा हो जाओ हमारी सल्तनत से। सिपाहियों, ले जाओ इसे यहाँ से।
2: हुजूर, हुजूर माफ कर दीजिए हुजूर, हुजूर मुझसे गलती हो गई हुजूर, मैं डर गया था हुजूर, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, हुजूर माफ कर दीजिए हुजूर।
0: इस तरह हमने उसे देश निकाला की सजा दी। किसी भी झूठे को कतई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमेशा सच बोलना चाहिए।
3: आपने बहुत अच्छा किया हुजूर, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच्चाई सबसे बेहतर है।
0: हाँ, यकीनन। क्या आप में से कभी किसी ने झूठ बोला है?
4: नहीं जापना, झूठ कभी नहीं, हो ही नहीं सकता जापना,
3: कभी नहीं,
4: कभी नहीं, मुझे तो झूठ बोलना आता ही नहीं है,
3: मुझे तो झूठ बोलना भी नहीं आता हुजूर।
0: बीरबल, तुम क्या कहते हो, तुमने कभी झूठ बोला है?
5: मैंने कभी ना कभी तो झूठ बोला है जहांपना।
0: तुम्हारा मतलब है कि हमारे दरबार के 9 रत्नों में से 1 रत्न झूठा है?
5: लेकिन हुजूर, हमें कभी ना कभी तो झूठ बोलना ही पड़ता है ना। मुझे ये यकीन है हर कोई झूठ बोलता है, किसी को नुकसान या ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, पर किसी को ठेस ना पहुंचे इसलिए।
0: नहीं, हमें नहीं लगता कि किसी को भी किसी भी हालत में झूठ बोलने की जरूरत है, और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे दरबार का खास मंत्री एक झूठा शख्स हो।
5: लेकिन हुजूर,
0: नहीं नहीं नहीं, अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हमारे उसूल सबके लिए बराबर हैं, इसलिए अब तुम हमारे दरबार में मंत्री नहीं रह सकते। बीरबल, हमें झूठ और झूठों से सख्त नफरत है, हम अपने दरबार से तुम्हें निकालते हैं। चले जाओ यहाँ से और अपनी सूरत कभी मत दिखाना।
5: मैं जैसी आपकी मर्जी हुजूर।

0: सेवक राम
1: जी। हुजूर, कहिए मैं क्या कर सकता हूँ?
0: बाजार जाकर मेरे लिए शहर का सबसे अच्छा सुनार ढूंढो। उसे कहना कि ऐसी ही एक डाली सोने की बनाए, पूरी डाल से लेकर गेहूं के दानों तक एक डाल जैसी होनी चाहिए सेवक राम। तो जाकर एक बढ़िया सुनार ढूंढ कर उससे ये काम करवाओ।

0: हमने तुम्हें अपने दरबार से निकाल कर कहा था कि कभी अपनी सूरत मत दिखाना, तुमने हमारे हुक्म की तामील क्यों नहीं की?
1: हुजूर, मुझे माफ करे, मैं आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं करना चाहता था।
0: तो यहाँ क्यों आए हो?
1: हुजूर, आपने मुझे दरबार में आने से मना किया हो, फिर भी मैं इस राज्य का वफादार नागरिक हूँ। मुझे एक ऐसी चीज मिली है जो इस सल्तनत को दुनिया में सबसे अमीर बना देगी, इसलिए सोचा आपको आकर दिखा दूं।
0: सचमुच? ऐसी क्या चीज है जो हमारी सल्तनत को दुनिया में सबसे अमीर बना देगी? दिखाओ हमें। ये तो असली सोना है।
1: जी हुजूर, ये बिल्कुल असली सोना है।
0: मगर इसका क्या मतलब है और इसका करना क्या चाहिए?
1: हुजूर, ये सोने की डाली मुझे एक ज्योतिषी ने दी थी जो बरसों की तपस्या के बाद हिमालय पर्वत से लौटे थे। ये उन्हें भगवान से वरदान में मिला था। उन्होंने कहा कि अगर हम इसे सबसे उपजाऊ जमीन पर बोएंगे तो सोने की खेती कर सकते हैं।
0: बीरबल, क्या तुम्हें यकीन है?
1: हुजूर, वे ज्योतिषी कोई आम आदमी नहीं थे। मुझे तालाब के पास ये डाली देकर वो तालाब के उस पार पानी पर चलकर पार कर गए।
0: पानी पर चलकर गए?
1: जी हुजूर, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे हम जमीन पर चलते हैं, वैसे वे पानी पर चलकर तालाब पार कर गए हुजूर।
0: खैर बीरबल, अब वक्त जाया मत करो और जल्दी से सबसे उपजाऊ जमीन ढूंढ कर इस बाली को वहाँ बो दो।
1: हुजूर, मैंने पहले ही ये काम कर दिया है और ऐसी एक जमीन भी ढूंढ ली है, मैं आपको अभी वहाँ ले जा सकता हूँ।
0: ठीक है, तो फिर हम कल ही इस बाली को बोएंगे। कल सवेरे यहाँ आना और हम साथ चलेंगे। दूसरों को भी तुम बता देना कि वो जमीन कहाँ है, ताकि वो भी वहाँ आकर सोने की इस बाली की बुआई को देख सकें।

0: हुजूर, यही वो जगह है।
1: ओ, तो फिर देर किस बात की है? जाओ बीरबल और बाली को बो।
0: नहीं हुजूर, मैं ये डाली नहीं बो सकता।
1: नहीं बो सकते? क्या मतलब तुम नहीं बो सकते?
0: हुजूर, सिर्फ वही इसकी बुआई कर सकता है जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो। अगर कोई झूठा इसे बोएगा तो ये सोने की डाली नहीं उगेगी। और जैसे मैंने आपसे कहा है, मैंने जीवन में कई बार झूठ बोला है।
1: ठीक है, तो फिर आप में से कोई आगे आकर इस बाली को बोइए। हमें यकीन नहीं होता, हमारे पास एक भी ऐसा आदमी नहीं जिसने कभी झूठ ना बोला हो।
0: हुजूर, मुझे लगता है कि सिर्फ आप ही इसकी बुआई कर सकते हैं, सिर्फ आप। हुजूर, अब सिर्फ आप ही हैं जिसने कभी झूठ नहीं बोला है, तो क्यों ना आप ही इस डाली को बो दें?
1: हमने भी बचपन में कभी कुछ झूठ बोले होंगे, इसलिए हमें नहीं लगता कि हम।
0: हुजूर, मैं झूठ बोल रहा था। ये सोने की डाली जादुई नहीं है, ना ही ये मुझे किसी ज्योतिषी ने दी थी। इसे मैंने शहर के एक जौहरी से बनवाई थी। जी हुजूर, आप समझ गए होंगे कि हर किसी को कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, सच्चाई छुपाने या धोखा देने को नहीं, बल्कि इसलिए कि किसी का दिल ना दुखे या शर्मिंदा ना होना पड़े, या किसी और अच्छे कारण के लिए।
1: हम समझ गए बीरबल, और सच बोलने पर तुम्हें सजा देने के लिए माफी चाहते हैं, और बिना डरे हमें अपनी गलती का एहसास करवाने के लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तुम हमारे एक सच्चे दोस्त हो बीरबल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया हुजूर, इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया। शुक्रिया
2: दोस्तों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, आरजे रंजिला के साथ।

0: अल्लाह का रहम है जो हमें दुनिया का सबसे खूबसूरत बेटा नसीब हुआ।
1: शहंशाह अकबर अक्सर अपनी रियासत के हालात जानने और लोगों की परेशानियों को समझने के लिए भेष बदल कर घूमा करते थे और अक्सर बीरबल भी उनके साथ जाया करते थे। एक दिन,
2: आपका स्वागत है, तशरीफ रखिए। आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप यहाँ के निवासी तो नहीं दिखाई देते।
3: तुमने सच कहा, हम यहाँ बहुत दूर से यह शहर देखने आए हैं। हमने तुम्हारे शहंशाह की भी काफी तारीफें सुनी हैं। क्या वो अच्छे बादशाह हैं? तुम उनके राज्य में खुश हो?
2: ओ, शहंशाह सचमुच महान है। वो सभी का पूरा ख्याल रखते हैं। उनकी नीतियाँ आवाम की भलाई के लिए हैं और हम उनके राज्य में पूरी तरह महफूज हैं।
3: मगर हमने तो कुछ और ही सुना है कि वो आवाम से बहुत ज्यादा लगान वसूल करते हैं और इसीलिए उनके राज्य में सब कुछ बड़ा महंगा है और गरीब बड़ा दुखी है।
2: मैं नहीं जानता आपने कहां से ये बकवास सुनी है। हम सभी शहंशाह अकबर के राज्य में बहुत खुश हैं। वो ज्यादा लगान बिल्कुल नहीं लेते, बल्कि गरीब से गरीब आदमी भी यहाँ भूखे पेट नहीं सोता।
4: मैं अपने मित्र की तरफ से माफी चाहता हूँ। उनका मतलब आपके शहंशाह का अपमान करना नहीं था।
3: हाँ, मुझे माफ करें और बताएं कि खाने में क्या है। हमें जोरों की भूख लगी है।
2: आप जो भी खाना चाहें वो सब आपको मिलेगा। ये दावत हमारी तरफ से है, बस हमारे शहंशाह के बारे में झूठी अफवाहें ना फैलाएं।
3: ओह शुक्रिया, हमें माफ करें और बेफिक्र रहें, हम कोई झूठी अफवाह नहीं फैलाएंगे। आपका फिर से शुक्रिया।
5: अरे वाह, क्या खूबसूरत शहजादा है।
6: अरे वाह, कितना खूबसूरत है।
1: जहाँ पना, शहजादे बेहद खूबसूरत हैं।
7: जी हाँ जहाँ पना, सचमुच हमारा शहजादा इस दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है।
3: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सही कह रहे हैं, हमने भी इससे ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा।
1: बेशक जहाँ पना, मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। मुझे यकीन है जब शहजादे जवान होंगे तो लाखों दिलों पर राज करेंगे।
3: हमें भी यही यकीन है। अल्लाह का रहम है जो हमें दुनिया का सबसे खूबसूरत बेटा नसीब हुआ। बीरबल, क्या बात है, तुमने कुछ नहीं कहा?
4: कुछ नहीं जापना, गुस्ताखी माफ हो, पर मैं कुछ और ही सोच रहा था।
3: कुछ और? क्या तुम हमारे शहजादे की खूबसूरती के कायल नहीं हो, या तुम्हें लगता है कि वो खूबसूरत नहीं?
4: मैं फिर माफी चाहता हूं जापना, शहजादे बेशक खूबसूरत हैं।
1: मतलब बीरबल को ऐसा नहीं लगता ये दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है?
3: हाँ बीरबल, हमें बताइए कि आप हमारे बेटे की खूबसूरती के बारे में क्या सोचते हैं।
4: जापना,
3: कहो बीरबल, तुम्हारे दिल में क्या है?
4: जापना, हमारे शहजादे बेशक खूबसूरत हैं,
3: पर क्या, आगे कहो।
4: जापना, मैं नहीं समझता कि शहजादे दुनिया के सबसे खूबसूरत बच्चे हैं।
7: ये तो हद हो गई।
1: जापना, मुझे लगता है बीरबल अपने आप को सबसे अलग साबित करना चाहते हैं।
3: बीरबल, तुम्हें इसकी वजह बतानी होगी कि तुम क्यों सोचते हो कि हमारे शहजादे खूबसूरत नहीं हैं, जबकि सभी उनकी खूबसूरती के कायल हैं।
4: जापना, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि शहजादे खूबसूरत नहीं है। वो बेशक हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो दुनिया में सबसे खूबसूरत है।
1: ये ऐसा कैसे कह सकते हैं जापना, हम सभी ने बीरबल से कहीं ज्यादा बच्चे देखे हैं।
3: हाँ बीरबल, तुम ये कैसे कह सकते हो कि शहजादे सबसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है? क्या तुम ये साबित कर सकते हो?
4: यदि आप कहें जापना, तो मैं इसे जरूर साबित कर सकता हूँ।
3: तुम्हारा मतलब है कि तुम हमारे शहजादे से ज्यादा खूबसूरत बच्चा ढूंढ सकते हो?
4: जी हाँ जापना, जरूर।
3: अच्छी तरह सोच लो बीरबल, अगर तुम साबित नहीं कर पाए तो हम अपने शहजादे की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हें शहजादे से ज्यादा खूबसूरत बच्चा ढूंढकर हमारे सामने पेश करना होगा और तब तक हमें अपनी सूरत मत दिखाना। आज तुमने हमें बहुत नाखुश किया है।
4: मैं आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ जापना, पर आपने मुझसे मेरी राय जाननी चाहिए, वो मैंने बताई। मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा और मैं तभी वापस आऊंगा जब मैं शहजादे से ज्यादा खूबसूरत बच्चा ढूंढ लूंगा।
7: ये तो आपकी और शहजादे की बेइज्जती है। आपने अच्छा किया कि उन्हें कहा, जब तक वो अपनी बात साबित न कर दिखाएं आपके सामने ना आए।
3: हम हमेशा सोचते थे कि बीरबल एक समझदार इंसान है, पर इस बार उन्होंने हमें बहुत निराश किया है।

0: बीरबल, क्या कहते हो? क्या तुम ये मानने को तैयार हो कि शहजादे ही दुनिया के सबसे खूबसूरत बच्चे हैं?
1: जहां पना, मेरे वापस आने की वजह ये है कि मैंने शहजादे से ज्यादा खूबसूरत बच्चा ढूंढ लिया है।
2: बीरबल, आप ये कैसे कह सकते हैं? हमारा बेटा ही दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। हम ये मानने से इनकार करते हैं कि कोई और हमारे बेटे से खूबसूरत होगा।
0: आप क्या कहते हो बीरबल? कोई भी तुम्हारी बात मानने को राजी नहीं।
1: माफ करे जहांपनाह, पर मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने सबसे खूबसूरत बच्चा ढूंढ लिया है।
0: अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो इसे साबित करो। हमें वो बच्चा दिखाओ। कहाँ है वो? तुम उसे अपने साथ यहाँ क्यों नहीं लाए?
1: मैं उसे अपने साथ यहाँ नहीं लाया जहांपनाह, पर मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ।
0: ये तो हद हो गई। बच्चे को यहाँ क्यों नहीं ला सकते? हम क्यों जाएं तुम्हारे साथ उसे देखने?
1: गुस्ताखी माफ जहांपनाह, लेकिन बच्चे की असली खूबसूरती को देखने के लिए आपको उसे उसके कुदरती माहौल में देखना होगा।
0: हमें समझ में नहीं आ रहा है, मगर हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। बल्कि हम सभी साथ चलेंगे। बताओ हमें कब चलना है?
1: जहांपनाह, हम सभी का साथ जाना मुमकिन नहीं होगा, पर आप और कोई एक मेरे साथ चल सकता है और हमें वहां भेस बदल कर जाना होगा, तभी हम उस बच्चे को उसके कुदरती माहौल में देख पाएंगे।
0: बीरबल, ये हमारे सब्र का इम्तिहान है, लेकिन तुम्हें इतना भरोसा है तो मैं और सुखदेव सिंह दोनों भेस बदल कर तुम्हारे साथ चलेंगे। हमें कब चलना होगा?
1: शुक्रिया जहांपनाह, हमें कल सुबह ही निकलना होगा।
3: बीरबल, इस बार तुम बहुत मुश्किल में पड़ गए हो। शहंशाह तुम्हें अब की बार माफ नहीं करेंगे।
1: सुखदेव सिंह जी, ये तो कल सुबह ही पता चलेगा।

0: जहापना, यहाँ से हमें पैदल ही जाना होगा।
1: ठीक है, चलो चलते हैं। हम उस बच्चे को देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते।
0: जहापना, वो रहा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा
1: बीरबल। क्या तुम पागल हो गए हो या तुम अंधे हो? तुम्हें इस बदसूरत बच्चे में कहां सुंदरता दिख रही है?
2: तुमने मेरे प्यारे बेटे को डराया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे बदसूरत कहने की? ये दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। अगर तुमने आगे कुछ कहा तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। जा यहाँ से, खबरदार जो मेरे लाल के नजदीक आए तो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या अंधे हो गए हो जो मेरे प्यारे लाल को बदसूरत कह रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। अरे मेरा लाल, मेरा प्यारा बेटा, मेरा बच्चा। अरे मेरा बेटा, प्यारा सा बच्चा, सबसे खूबसूरत।
0: जहाँपना, मुझे यकीन है अब आप समझ गए होंगे कि हर माँ बाप के लिए उनका बच्चा दुनिया में सबसे प्यारा और सबसे खूबसूरत होता है।
1: हम समझ गए बीरबल, हम समझ गए।
0: मेरा मकसद आपको मायूस करना नहीं था जहाँपना, पर मैं बिना वजह आपकी या शहजादे की झूठी तारीफ नहीं करना चाहता था, बल्कि आप भी शहजादे को चापलूसों और चापलूसी से बचना सिखाएं, यही मैं चाहता था।
1: बीरबल, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। एक बार फिर तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई, हमारे सामने बेखौफ होकर सच्चाई बयान की और हमें बहकावों से बचाया। तुम एक सच्चे और वफादार दोस्त हो। शुक्रिया बीरबल, शुक्रिया।
3: दोस्तों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, आरजे रंजीला के साथ।

0: आगरा शहर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम लाला करोड़ीमल था। वो एक लालची और बेहद कंजूस आदमी था। लाला करोड़ीमल बीरबल का पड़ोसी भी था।
1: लाला जी, घर के लिए कुछ सामान खरीदना है, मुझे कुछ रकम दे दीजिए।
2: तुम्हें क्या खरीदना है?
1: अच्छा, मुझे 4 सेर चावल, 4 सेर दाल, थोड़ी सब्जियाँ और 3 सेर आटा खरीदना है, तो एक सोने की अशर्फी काफी होनी चाहिए।
2: एक सोने की मोहर? क्या पागल हो गई हो तुम? खाने पर इतना खर्च करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इन सब का आधा खरीदो।
1: आधा? लेकिन ये तो सब जरूरी है, क्या आप भूखे रहना चाहते हैं?
2: कोई भी भूखा नहीं रहेगा, बल्कि इतना ज्यादा खरीदोगी तो ज्यादा खाएंगे, और ज्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्या अब ये क्या किया शैतान के बच्चों?
3: मैं तो सिर्फ खेल रहा था, मेरी गलती नहीं है।
2: खेल रहा था रसोई में? मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा अगर यहाँ खेला तो। अब इससे पहले कि मेरा और नुकसान हो, यहाँ से बाहर निकल जा।
1: अब मुझे 1 सेट घी भी खरीदना पड़ेगा।
2: देखो, तुम्हारा ये सपूत मेरी बर्बादी का कारण बनेगा। तुम बस देखती रहना। उस रोज उसने बाहर का दीवार

0: हुजूर, लाला करोड़ी मिल आपसे मिलने आए हैं।
1: ठीक है, मैं अभी बाहर आता हूँ, तब तक उन्हें जलपान कराओ।
0: लाला जी, राजा बीरबल थोड़ी ही देर में आपसे मिलेंगे, तब तक मैं आपके लिए क्या लाऊं जनाब, कुछ खान पान?
2: नहीं, ठीक है, वैसे क्या है खाने में?
1: लाला जी, बड़ा अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर।
2: नमस्कार राजा बीरबल।
1: कहिए लाला जी, सब ठीक ठाक तो है? आप परेशान दिख रहे हो, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ?
2: श्रीमान जी, दरअसल मेरा इकलौता बेटा बहुत बिगड़ गया है, बहुत शरारती हो गया है, घर में तोड़फोड़ मचा दी है, मेरा बहुत नुकसान कर रहा है। हमने सोचा शायद आप किसी गुरुजी को जानते होंगे जो न सिर्फ उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे बल्कि उसकी आदतें सुधारकर उसे समझदार इंसान बनने में मदद करेंगे।
1: मैं ऐसे एक गुरुजी को जानता हूँ जो आपकी मदद कर सकता है। उनका नाम विनायक है, वो एक बड़े विद्वान है और बहुत अच्छे गुरु भी। वो आपकी मदद जरूर करेंगे। सेवक राम, मेरा ये संदेश जाकर विनायक जी को पहुंचा देना।
0: जैसे आपकी मर्जी हुजूर।
3: क्या किया तुमने? अब तो हद ही पार कर दी। अब मुझसे ये और बर्दाश्त नहीं होता, मैं तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगी।
2: अब क्या किया इसने?
3: इसने मेरी माँ का दिया हुआ मेरा प्रिय गमला तोड़ दिया।
0: धीरज रखिए, मैं वादा करता हूँ कि कुछ ही महीनों में आपका बेटा एक बहुत सुधरा हुआ और समझदार बच्चा बन जाएगा।
2: ध्यान से सुनो, ये विनायक जी है आज से तुम्हारे गुरु जी। तुम वही करोगे जो ये तुम्हें कहेंगे। गुरुजी, मैं आपको दक्षिणा में हर महीने 5 सोने की मोहरे दूंगा, और क्योंकि आप अपना सारा दिन यहीं बिताएंगे इसलिए आप खाना भी यहीं खाएंगे। उम्मीद है आपको ये मंजूर होगा।
0: मुझे मंजूर है, शुक्रिया। मैं कल से ही शुरू कर दूंगा, और आप घबराइए मत, गुड्डू आज से मेरी जिम्मेदारी है।

0: कितना सुधर गया है, कितना आज्ञाकारी और समझदार हो गया है, गुड्डू कितना बदल गया है, सब गुरुजी की कृपा है।
1: सो तो है, अब थोड़ा चैन मिला। मैं तो इसे किसी को गोद देने की सोच रहा था।
0: फिर आपने गुरुजी को दक्षिणा क्यों नहीं दी 3 महीनों से? उन्होंने इतना कुछ किया है हमारे लिए।
1: दक्षिणा कैसी? मैं उन्हें खाना देता हूँ और वो इतना खाते हैं कि उन्हें उल्टा मुझे पैसे देने चाहिए। देखती नहीं खाने पर कितना खर्च हो रहा है? मैं उन्हें उनके काम से कहीं ज्यादा दक्षिणा दे रहा हूँ।
2: क्या राजा बीरबल घर पर हैं?
3: जी हुजूर, आप अंदर आइए।
4: विनायक, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। बताओ कैसे हो दोस्त?
3: मैं बिल्कुल ठीक हूँ हुजूर।
4: बताओ मुझे, सब ठीक तो है? उम्मीद है कि लाला जी का बेटा आपको परेशान तो नहीं कर रहा है?
3: नहीं हुजूर, दरअसल लाला जी खुद ही मेरी परेशानी का कारण है।
4: मुझे बताओ समस्या क्या है विनायक?
3: मैं पिछले 3 महीनों से उनके बेटे को शिक्षा दे रहा हूँ और उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया है।
4: पैसे नहीं दिए उन्होंने? पर क्यों? क्या तुमने मांगे नहीं उनसे?
3: मैंने कई बार मांगा है हुजूर, पर वो कहते हैं कि मेरा खाना मेरी दक्षिणा से भी ज्यादा है और मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो मुझसे पैसे नहीं मांग रहे हैं।
4: उनका बेटा कैसा है?
3: वो तो बिल्कुल ही सुधर गया है और लाला जी भी मेरे काम से काफी खुश है। वो अभी काफी समझदार और आज्ञाकारी है।
4: घबराओ मत विनायक, मैं ये मामला

चाहिए, कैसे इसको करना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। साथ साथ में मधुमक्खी पालन एक अच्छा व्यवसाय है, तो हमारे किसान साथी इसको भी, मधुमक्खी पालन भी हमारे किसान साथी कर सकते हैं। साथ साथ में सफल किसान की कहानी पर भी हम एक नज़र डालेंगे। लेकिन इन बातों से पहले हम साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि भारत का मौसम विभाग इस बार का क्या कहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जिसकी उत्तरी सीमा पोरबंदर, बड़ौदा, शिवपुरी, रीवा, चक्र से होकर गरज रही है और प्रदेश के चंबल संभाग के जिले तथा ग्वालियर, दतिया, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, उज्जैन, आगरा जिलों को छोड़कर प्रदेश के शेष जिलों में आ चुका है मानसून। आज अगर बात करें कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम और भोपाल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर शहडोल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर एवं उज्जैन संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर रीवा, इंदौर एवं चंबल संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। वर्षा के प्रमुख आंकड़े अगर देखा जाए तो छपारा, गोहरगंज, नागदा, पचौर और परसवाड़ा, अनूपपुर, बहोरीबंद, देवेंद्र नगर, गुलाबगंज, रायसेन, खाच रोड और नर्मदापुरम में 5 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान ग्वालियर संभाग के जिलों में काफ़ी गिरे और शेष संभागों में जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। ग्वालियर संभागों के जिलों के सामान से विशेष रूप से कम है और सागर संभागों के जिलों में सामान्यता काफ़ी कम, इंदौर और उज्जैन संभागों में सामान्य, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभागों के जिलों में सामान्य से कम और शेष संभागों में जिलों में सामान्य वर्षा हो रही है। आपको बता देना चाहते हैं कहां पर किस तरीके की वर्षा होने की संभावना बताई जा रही है, मौसम विभाग क्या कहता है। वर्षा या गरज चमक के साथ बौछार किन किन स्थानों पर होनी है। रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, इंदौर एवं उज्जैन संभागों के जिलों में संभावित है। आगामी 24 घंटों में भारी और मध्यम वर्षा कहां कहां होने वाली है। कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना बताई जा रही है, जहां पर डिंडोरी आएगा, बैतूल, बालाघाट, राजगढ़, रायसेन, धार, उज्जैन, अनूपपुर, मंडला एवं सिवनी जिलों में, और कहीं कहीं गरज के साथ बिजली चमकने और गिरने के अल्पकालीन तेज हवा की संभावना, उसमें रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर।

0: का छिड़काव भी किया जा सकता है। फसल में सिंचाई की बात करें तो शाखाएं निकलने की अवस्था व 45 से 50 दिन पर, फूल व फल बनने के दौरान 75 से 85 दिन पर, इसके बाद 95 से 105 दिन की फसल होने पर और 115 से 125 दिन की फसल होने पर सिंचाई करनी चाहिए। यदि किसान टपक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो करीब 70% पानी की बचत की जा सकती है, साथ ही खरपतवारों और कीटों पर नियंत्रण भी आसान हो जाता है। कपास की फसल में चुनाई का काम बहुत विशेष होता है। देसी व उन्नत जातियों की चुनाई खासकर नवंबर से जनवरी फरवरी तक, संकर जातियों की अक्टूबर नवंबर से दिसंबर जनवरी तक, बीटी किस्मों की चुनाई अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है। कपास की चुनाई करते समय किसान इस बात का ध्यान रखें कि चुनाई ओस सूखने के बाद ही करें, गीले घेटों की चुनाई ना करें। चुनाई करते समय कपास के साथ सूखी पत्तियां, डंठल ना आए। चुनाई के बाद कपास को धूप में सुखा लेना चाहिए। कपास को सुखाकर ही भंडारित करें, क्योंकि नमी होने पर कपास पीला पड़ जाएगा व फफूंद भी लग सकती है। लेकिन कुछ जरूरी सावधानियां अपनाकर कपास का बेहतर उत्पादन कर मुनाफा कमाया जा सकता है।
1: ये हमारा पशुधन पर, हमारा पशुधन में आज हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। जी हाँ, सरकार भी मधुमक्खी पालन को काफी प्रोत्साहित कर रही है और आज के समय में युवाओं के बीच में भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। खास बात यह है कि मधुमक्खी पालन से न सिर्फ किसानों की आय में वृद्धि होती है बल्कि साथ ही साथ उनकी फसलों में भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो कैसे करें मधुमक्खी पालन और कौन कौन सी विशेष बातें जिसका ध्यान रखना जरूरी है, आइए डालते हैं नजर।
0: हमारे देश में मधुमक्खी पालन के कई फायदे हैं। इससे जहां परागण में सहायता मिलती है वहीं अतिरिक्त आय भी होती है। हाल के कुछ वर्षों में मधुमक्खी पालन में खासी दिलचस्पी बढ़ी है, जिससे भूमिहीन किसानों के सामने रोजगार के कई अवसर पैदा हुए हैं। मुनाफे की ओर ले जाने वाले इस व्यवसाय में मधुमक्खी पालकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो लाभ के साथ साथ मधुमक्खी का भी ख्याल रखें, जिससे उनकी घटती संख्या में कमी लाई जा सके। मौजूदा समय में तापमान में हो रही बढ़ोतरी के साथ कुछ खास प्रबंधन करने होते हैं, जिससे मधुमक्खियों को अनुकूल वातावरण मिल सके। तो इस समय कौन से हैं वो खास बिंदु, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की राय।
2: गर्मियों का मौसम है, मधुमक्खी पालक के लिए जरूरी है कि कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखे ताकि मधुमक्खी पालक अच्छे से मधुमक्खियों का देखभाल कर सके तो अच्छे से उनको लाभ मिल सके। सबसे जरूरी है क्योंकि गर्मी का समय है, इस समय जो तापमान है वो 40 के ऊपर है, तो इसलिए जरूरी है कि मधुमक्खी पालक जो मधुमक्खियां हैं उनको ऐसे स्थान पर रखें जहां फूल यानी के फ्लोरा हो। इसके लिए इस समय जो है सीसम, जहां सीसम हो, नीम हो, जामुन हो, यूकेलिप्टिस हो या इसके अलावा मल्टी फ्लोरा हो, तो वहां मधुमक्खी को अपने उस स्थान पर रखना चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि गर्मी का समय है तो पीने के पानी, स्वच्छ पीने का पानी मधुमक्खी के लिए जरूर होना चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि ऐसे स्थान पर मधुमक्खी को रखें जहां छाया हो, क्योंकि इस समय लू और गर्मी ज्यादा है तो उससे बचाव के लिए जरूरी है कि उनको ऐसे स्थान पर रखें जहां ऊपर पेड़ पौधे उसके आसपास हो। और इसके लिए जरूरी है कि कहीं कहीं अब इस समय फ्लोरा की कमी है तो उनको भोजन के रूप में आर्टिफिशियल भोजन दें। इसके लिए एक भाग पानी और एक भाग चीनी दोनों का घोल बनाकर एक चाशनी तैयार कर लें। उस चाशनी को ठंडा होने के उपरांत फीडर की सहायता से किसान भाई यानी कि मधुमक्खी पालक आदि मधुमक्खियों में इस भोजन को दें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि गर्मी का मौसम थोड़ा और भी बढ़ सकता है, टेम्परेचर और भी बढ़ सकता है, तो जो टाट के बोरे होते हैं उन टाट के बोरे को जो बॉक्स है मधुमक्खी के उसके ऊपर डाल देना चाहिए। साथ ही साथ दो या तीन बार उनको गीला करना चाहिए दिन में, ताकि जो बॉक्स का तापमान है वो सामान्य बढ़े रहे और मधुमक्खी को ज्यादा दिक्कत ना हो। साथ ही साथ ये भी जरूरी है, ये भी ध्यान रखें कि इस समय मधुमक्खी पालक को मधुमक्खी का विभाजन नहीं करना चाहिए। अगर कमजोर मधुमक्खी है, बॉक्स कमजोर है, परिवार बॉक्स कम है, तो ऐसे समय पर उनको विभाजन नहीं करना चाहिए।
0: गर्मी के मौसम में पर्याप्त फूल नहीं होते, जिससे मधुमक्खियों को भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में मधुमक्खी पालकों को चाहिए कि उनके कृत्रिम भोजन की व्यवस्था करें। इसके लिए क्या करें, जानते हैं विशेषज्ञ से।
2: तो स्थान का चुनाव करते समय इन बात

0: का जरूर ध्यान रखना है मधुमक्खी पालक को।
1: ये तो बात हो गई मधुमक्खियों के भोजन की, अब बात कर लेते हैं उनकी सुरक्षा की। इस समय अन्य कीटों से उन्हें कैसे सुरक्षा दी जाए, आइए जानते हैं।
0: मधुमक्खी पालक ये देख ले कि ऐसे स्थान का चुनाव इस समय करे कि जहां फूल यानी कि फ्लोरा हो, वैसे स्थान पर मधुमक्खियों का स्थानांतरण कर दे। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि पहले से वहां स्थान आपका होना चाहिए कि पानी वहां है, अच्छा पीने के लिए स्वच्छ पानी है, आसपास जो है कोई हाईवे रूट तो नहीं है, साथ ही साथ कोई किसी तरह की पेस्टिसाइड, क्योंकि आजकल जो फसलें हैं अधिकतर किसान भाई पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, तो ये भी देख लें कि अधिकतर वहाँ ज्यादातर किसान कीटनाशियों का अधिक प्रयोग ना करते हो, और करते भी हो तो ये भी शोर कर ले कि किस कीटनाशी या फंजीसाइड का किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब मक्खी होती है तो वो फूल के पास जाएगी, उससे फूल से रस चूसेगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो केमिकल होता है उसका इफेक्ट मधुमक्खी के में आएगा, वो धीरे धीरे उससे उसकी जो है मोर्टिलिटी होने की भी संभावना बनी रहती है।
1: इस तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर किसान और मधुमक्खी पालक उनकी सुरक्षा भी कर सकते हैं और उनकी संख्या में इजाफा भी। HS और BQ टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डीवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। ऐसा करने से टीकाकरण प्रभावी हो जाता है। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में लगाई गई ज्वार फसल पशुओं को ना दें, इस समय ये हानिकारक हो सकता है। बरसात के मौसम में हरे चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार व मक्का की बुआई करें। हरे चारे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करें। जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसीलिए पशु के लिए अलग से शेड बनाएं। इस समय पशु को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। यदि पिछले माह भेड़ के ऊन कतरने का कार्य ना किया हो तो इस माह कर लें।

0: किसानों को पशुओं की खरीद और बिक्री में मदद मिले और किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हो, इसके लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना लागू किया, जिसके तहत गाय और भैंस की महत्वपूर्ण नस्लों के दुग्ध उत्पादन का रिकॉर्ड करके पशु पंजिका में लिखा जाता है। इस कार्यक्रम में उन्नत नस्ल के पशुओं के प्रमाणीकरण और पशुओं के उत्पादन का लेखा जोखा लिखा जाता है। पशु पंजीकरण योजना के उद्देश्य इस प्रकार है। पंजीकरण के माध्यम से बेहतर जर्म प्लाज्म यानी उच्च कोटि की आनुवांशिकी का पता लगाना, प्रजनन क्षेत्र में पशुओं का व्यवस्थित दुग्ध अभिलेखन शुरू करना, पशु चुनाव के लिए दुग्ध अभिलेखन कार्य को बढ़ावा देना, सभी पंजीकृत किए हुए पशुओं के इकट्ठे किए हुए आंकड़ों को प्रकाशित करना ताकि पशु पालकों का मार्गदर्शन हो और पशुओं को खरीदने व बेचने में इसका योगदान मिले, पशुओं की खरीद बिक्री और आयात निर्यात को नियंत्रित करना ताकि उनकी गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सके तथा आयात व निर्यात के लिए स्तर निर्धारित किया जा सके, पशु पालकों को योजना के बारे में जागृत करना और जानकारी देना ताकि पशुओं के सुधार में उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना में पशु पंजीकरण पुस्तक होती है, इसमें उन पशुओं की सूची रखी जाती है जो कि पशु पंजीकरण पुस्तक के नियम व नियमावली पर खरे उतरते हैं। इस पंजीकरण के तहत पंजीकृत पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं जो पशुपालकों को पशु खरीदने तथा बेचने में मदद करते हैं। अब सवाल ये है कि इस योजना के तहत सुविधा का लाभ कैसे उठाया जाए। ये सुविधा देसी गाय व भैंसों के लिए है। इस सुविधा का लाभ गौशाला और अभिलेखन केंद्र के आसपास के पशु झुंड उठा सकते हैं। पंजीकृत पशुओं का ब्यौरा कंप्यूटरीकृत होता है। पशु पालकों तक योजना को आसानी से पहुंचाने के लिए दुग्ध अभिलेखन केंद्र पशु चिकित्सालय पर रखा जाता है। खास बात ये है कि पशु पंजीकरण इकाइयां दुग्ध अभिलेखन योजना को समयबद्ध विस्तार के लिए प्रशिक्षण भी देती है। गौरतलब है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरियाणा में गाय और मुर्रा भैंस के लिए संयुक्त रूप से एक यूनिट 1962 में रोहतक में स्थापित की गई। ये इकाई हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों में संचालित है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गिर व कांकरेज गाय और सूरती भैंस के लिए एक इकाई अहमदाबाद में स्थापित की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत में दो और इकाइयां एक आंध्र प्रदेश में और एक राजस्थान में स्थापित की गई। इस प्रकार चार इकाइयां रोहतक हरियाणा, अहमदाबाद गुजरात, ओंगल आंध्र प्रदेश और अजमेर राजस्थान में चल रही है। पशुपालक स्थानीय केवीके या कृषि विभाग से संपर्क कर केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम।
2: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
3: अब नई चीज हम जान लेते हैं क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों को हम वही चीजें बताते रहते हैं, वही बातें सुनाते रहते हैं। आज कुछ नया करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अब कि सीप की खेती, जो मोतियों की खेती रहती है, वो किस तरीके से होती है। ये भी एक व्यवसाय है हमारे किसान साथियों की, नई चीज है। आइए जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मोतियों का खेती कर सकते हैं। लेकिन साथियों, इनसे बातचीत करने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं प्यारे से गीत को।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मोतियों की खेती कर सकते हैं, कैसे इसका प्रशिक्षण, कहाँ प्रशिक्षण मिलेगा, इसकी सारी जानकारी इस सेगमेंट में सुनते हैं।
1: भारत में मोतियों का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे हम सरल भाषा में सीप पालन या मोती की खेती कहते हैं। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप में बनता है। जब सीप में कोई बाहरी पार्टिकल जैसे मिट्टी के कण या कोई सूक्ष्म जीव चला जाता है, तो वो उसे बाहर निकालने के लिए एक तरल छोड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे उस कण पर सीप परत दर परत एक चमकदार कोटिंग बना देती है और फिर एक निश्चित समय बाद यही मोती बन जाता है। सीप पालन को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करना होता है जहां सीप को आसानी से पाला जा सके। सीप को छोटे स्तर से घर में पाला जा सकता है, जबकि बड़े स्तर पर पालने के लिए तालाब की जरूरत होती है। इसके बाद किसान को सीप खरीद कर सीपों को खुले पानी में दो दिन के लिए रखते हैं, जिससे धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दें। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है जो मोती में बदल जाता है। सीपियों के प्रकार लेमिनेनिस मार्जिलेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10x10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर यानी 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ बीट के चारों ओर जमने लगता है जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 माह बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी ली जा सकती है।
0: अभी आपने हमारे किसान साथियों ने सुना कि किस तरीके से मोतियों का हम खेती कर सकते हैं, यानी हम मोतियों का जो खेती रहती है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे प्रशिक्षण लिया जाता है, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से जानी है। और भी बातें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम, यानी लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बनी रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें।

0: किसान की मेहनत सार्थक होती है तो खेतों में खुशी की तरंगे बिखरने लगती है और बंजर जमीन भी हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। वैसे तो राजस्थान की धरती को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के किसान प्रकृति का सीधा सामना करते हुए सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने कृषि का शायद ही कोई क्षेत्र छोड़ा हो जिसमें कामयाबी ना पाई हो। जयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां से करीब एक घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालख गांव, जो पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से, जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं। उनके यहाँ जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम कृषि के साथ साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पॉली हाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना और सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर खेती के हर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज वो जिस मकाम पर है उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही है जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल है। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती है जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है।
1: राजस्थान में पानी की काफी कमी है, रेगिस्तान है और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस है, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे फार्म पॉन्ड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉन्ड में जो साइज है मेरी 50x50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉन्ड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉन्ड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉन्ड से जो पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें भी मैंने कनेक्शन ले रखा है और जिसमें 67,000 रुपए मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपए मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियां डाल रखी, जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियां हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियां हैं जो अलग अलग लेयर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है, वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगोकर देते हैं। और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करता है और साथ ही हमारा जो पानी का EC और PH है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियां नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है, इस वजह से इसको मछलियां डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी, तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से सलाह देना चाहता हूं कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पॉन्ड बनाएं, मछली पालन कर सकते हैं, साथ में खेती कर सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, जैसे पॉली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है, इन सबका उपयोग करके अपने अच्छे से आप नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, अभी आपने इन सफल किसानों की कहानी को सुना और जाना कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है, यानी खेती के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने योजनाओं का लाभ लिया है, उन्होंने आधुनिक पद्धति से खेती की है, उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट पर जोर दिया है। तो तमाम प्रकार की उन्होंने योजनाओं का लाभ लेते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि सफल किसान के नाम से उनको जाना जाता है राजस्थान में। तो साथियों, हमें आशा है कि ऐसे ही हमारे किसान साथी अब

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, जहां हम आपको मिलवाते हैं उन व्यक्तित्वों से जिन्होंने अपने हुनर, मेहनत और संवेदनशील सोच के साथ समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी युवा और बहुआयामी मीडिया प्रोफेशनल जिन्होंने रेडियो जॉकी, वीडियो एंकर, कंटेंट राइटर और कॉपी राइटर के रूप में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। अपनी आवाज, शब्दों और रचनात्मकता के माध्यम से इन्होंने न सिर्फ लोगों तक जानकारी पहुंचाई बल्कि भावनाओं को भी खूबसूरती से अभिव्यक्त किया है। मीडिया, डिजिटल कंटेंट, रेडियो और सामाजिक मुद्दों पर इनकी समझ बेहद गहरी और प्रभावशाली है। तो आइए स्वागत करते हैं संध्या यदुवंशी का। संध्या जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। इट्स अ ऑनर फॉर मी कि मैं यहाँ आई हूँ और मैं अपनी कुछ बातें शेयर कर पाऊंगी आपके साथ में।
1: तो चलिए संध्या जी, ऐसा करते हैं, शुरुआत से शुरुआत कर लेते हैं। कुछ मैं सोचता हूँ कुछ छोटी सी संध्या से मिलाइए हमें, जो थोड़ी नटखट थी, चंचल थी या शैतान थी बचपन में, कुछ अपने बचपन के जीवन के बारे में बताइए।
2: सर, बचपन से ही मेरा जो है स्वभाव बहुत ज्यादा मतलब चंचल नहीं था, मैं थोड़ी सी शांत और उस तरह की ज्यादा थी। और अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो शुरुआत से ही मेरा रेडियो और फिल्म्स में, इन चीजों में मेरा ज्यादा मन लगता था। मेरे मम्मी पापा भी कहते थे कि अरे दिन भर टीवी ही देखती रहती है, और तो हाँ बचपन से ही कह सकती हूँ कि इस चीज में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था।
1: अच्छा, तो मतलब बचपन में बोलना, लिखना, रेडियो सुनना, टीवी देखना या कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह में भी आपको इंटरेस्ट था? स्कूल या कॉलेज में कभी कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है?
2: हाँ हाँ, मतलब मैं किया करती थी, जैसे कि नाटक जो हमारे स्कूल में पहले हुआ करते थे, हम 26 जनवरी 15 अगस्त ऐसे टाइम पे जब नाटक किया करते थे, उन चीजों में। उसके बाद में कॉलेज में आने के बाद तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया था, जयपुर में थिएटर मंच है, रंगमंच अच्छा, है अच्छा, तो मैं वहां पे भी मैंने काम किया है कुछ टाइम तक।
1: अच्छा अच्छा,
2: तो हाँ इन चीजों में मेरा शुरुआत से काफी ज्यादा इंटरेस्ट था।
1: अच्छा अच्छा, तो जयपुर में कोई खास ऐसी याद आपको अपने थिएटर के दिनों की, कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा साथ है, कोई ऐसा साथी जिसके साथ आपने थिएटर किया हो, कोई ऐसी घटना याद है तो बताइए।
2: सर, जयपुर में जब मैं थिएटर में थी तब तब शुरुआत ही थी, मैं कॉलेज में थी और ऐसे रहता है कि हाँ भाई कुछ नई चीजें सीखनी है, कुछ नई चीजें करनी है। तो जयपुर का जो वहाँ का जवाहर कला केंद्र है, हम वहाँ के कुछ मैं ग्रुप से जुड़ी, राजीव आचार्य सर हैं जो वहाँ पे एक ग्रुप चलाया करते थे, थिएटर ग्रुप, तो उनके साथ मैंने काम किया, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और बहुत सारे लोग और भी मिले, एक नई इंडस्ट्री वहाँ पे मुझे जानने को मिली, तो हाँ वो एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था मैं कह सकती हूँ।
1: नहीं, जवाहर कला केंद्र हमेशा से ही थिएटर का और कल्चरल एक्टिविटीज का एक सेंटर रहा है जयपुर में,
2: क्योंकि रविंद्र मंच पे भी बहुत नाटक होते हैं, तो वहाँ पे भी मैंने कई सारे नाटक उन्हीं के ग्रुप के साथ में परफॉर्म किए हैं।
1: अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब थोड़ा चलते हैं अपनी रेडियो की दुनिया की तरफ। तो मीडिया या रेडियो की दुनिया में आने की इंस्पिरेशन आपको कैसे मिली? कोई ऐसा घटना थी या कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट था जिससे आपको लगा कि मैं रेडियो से जुड़ जाऊं या मीडिया की दुनिया से जुड़ जाऊं?
2: सर, बचपन से ही मेरे मम्मी पापा भी कहते हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी तब से ही मुझे टीवी देखना बहुत पसंद था। मतलब मैं दिन भर टीवी देखा करती थी बैठ के। फिर मैं जैसे जैसे बड़ी हुई तो टीवी के साथ साथ फिर घर में रेडियो था, तो फिर मैं रेडियो भी सुनने लगी। तो वो एक मतलब वो एक ऐसा इंटरेस्ट था जो मुझे पता नहीं था कि ये आपके जॉब में भी बदल सकता है शुरुआती दिनों में, क्योंकि मैं बरेली के एक छोटे से गांव से हूँ, तो वहां पे एजुकेशन के जो नई चीजें हैं वो इतना नहीं पहुंची थी उस टाइम पे। अब तो फिर भी काफी इम्प्रूवमेंट है। तो मुझे ये नहीं पता था कि इस शौक को, इसको आप अपना एक काम भी बना सकते हैं। तो वो बस इंटरेस्ट था। और इसके पीछे एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है कि मैं इस लाइन में आई कैसे। मैं स्कूल में थी, 12th क्लास में थी, तो किसी नए कॉलेज का ऐसे होता है अक्सर कि लोग प्रमोशन करने स्कूल्स में जाते हैं, क्योंकि जो 12th के बच्चे होते हैं उन्हें आगे ग्रेजुएशन करना होता है।
1: सही बात।
2: तो उन्होंने वहां पे वो रैंडम बता रहे थे कि हमारे यहाँ ये कॉलेजेस हैं, आप आगे ये करियर ऑप्शंस ले सकते हैं। तो वहां उन्होंने मुझे बताया कि मास कम्युनिकेशन जैसा कुछ होता है।
1: अच्छा।
2: और आप इसमें मीडिया की चीजें सीखते हैं, न्यूज चैनल सीखते हैं, फिल्मों के बारे में आप सीखते हैं, रेडियो होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे ये मेरे लिए ही बना है, कि मतलब मुझे ये सारी चीजें बहुत पहले से ही पसंद थी और मुझे बस पता नहीं था कि इसको आप एज करियर ऑप्शन भी ले सकते हो। तो वहां से ये चीज मुझे पता चली। और फिर उसके बाद मैंने फिर पापा को बोला कि मुझे ये करना है, तो फिर पापा ने मुझे उस चीज के लिए मास कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे जयपुर भेजा। तो ऐसे करके मेरे इस जर्नी की शुरुआत हुई। तो ये एक कोइंसिडेंस ही है, आप जो भी आप कह सकते हैं। तो हाँ,
1: तो चलिए आप, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आप बरेली की रहने वाली हैं। बरेली का तो हर तरह से नाम भी है, तो ऐसा करते हैं बरेली के नाम पे एक गाना सुन लेते हैं हम, और आपकी मीडिया की शुरुआत भी हो गई और आपके पापा ने आपको जयपुर भी भेज दिया। तो पहले बरेली के नाम पे गाना सुनते हैं और फिर आगे बातचीत को जारी रखते हैं।

0: वेलकम बैक संध्या जी। अब जैसे आपने बताया कि आपकी मीडिया यात्रा शुरू हो गई, मास कम्युनिकेशन के लिए आप जयपुर आ गई, तो फिर ये रेडियो की तरफ कैसे खिंचाव हुआ, कैसे जुड़ाव हुआ रेडियो से आपका, रेडियो कैसे आपकी जिंदगी में आया?
1: सर, रेडियो मेरी जिंदगी में पहले ही था। जब मैं अपने घर पे थी तो आप ऐसे कह सकते हो कि जब जितनी देर मुझे सोना रहता था या जितनी देर मैं स्कूल में हूँ, उतनी ही देर मैं रेडियो से दूर थी। घर आने के बाद सोने से पहले तक मैं सारे शोज उस टाइम पे सुना करती थी। अन्नू कपूर जी का शो आया करता था और भी बहुत सारे शोज थे उस टाइम पे आते थे, तो मुझे बहुत पसंद थे सब सुनना। तो लेकिन जब मैं कॉलेज में आई और मैं वहां पे जब ये सारा एजुकेशन मेरा चल रहा था, तो वहां पे मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेडियो की तरफ ही था। और वहीं पे मैंने पहली बार रेडियो को एक होता है ना टेक्निकल वे में समझना शुरू किया, तो ऐसे करके मेरा रेडियो से कनेक्शन शुरू हुआ था।
0: तो चलो, अच्छा, आप हमें क्या अपनी उस अनुभव को बता सकती हैं, या जब आपने पहली बार माइक के सामने बैठी होंगी, आपने कुछ बोला होगा माइक में, वो रिकॉर्ड हुआ होगा या ब्रॉडकास्ट हुआ होगा, तो कोई वो अनुभव है आपका ऐसा, माइक के सामने बैठने का पहला अनुभव कैसा था?
1: सर, पहला अनुभव बहुत ही नर्वसनेस वाला था।
0: अच्छा, अच्छा।
1: और मैं कह सकती हूँ फेल्ड भी था, क्योंकि आप किसी चीज को सुनते हो, पसंद करते हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वो चीज कर भी सकते हो। तो ऑब्वियसली पहला अटेम्प्ट काफी नर्वसनेस, और वो तब मेरे टीचर्स ने मुझे गाइड किया, समझाया, वॉइस से रिलेटेड चीजें बताई, कॉन्फिडेंस दिया, तो उसके बाद में ये चीज शुरू हुई। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है तो कॉलेज रेडियो का ही था, जहाँ पे हम सब अपना एक प्रैक्टिस किया करते थे और अपना एक कॉलेज वाला रेडियो स्टेशन चलाया करते थे।
0: अच्छा अच्छा, कॉलेज में रेडियो स्टेशन था। ओके
1: जी।
0: तो वैसे अब थोड़ा बताओ, रेडियो जॉकी के लिए क्या क्या क्या खास चीजें हैं जो आपको बताई, आपने अनुभव से सीखी है? आवाज अच्छी होनी चाहिए,

0: फीलिंग्स होनी चाहिए या जो भाषा बोलते हैं वो, इनमें क्या किस तरह का सामंजस्य होना चाहिए, कुछ इसके बारे में बताइए।
1: सर, ये जो भी आपने बताया, ये इन सारी चीजों का एक मिक्स एंड मैच ही होता है। अगर आप रेडियो जॉकिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले आप एक जो बेसिक स्किल है वो ये होना चाहिए कि आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो भी आप कह रहे हैं वो आपके शब्द हैं वो क्लियर हो, आपकी भाषा हिंदी है या अंग्रेजी है। वैसे रेडियो में जो है एकदम क्लियर भाषा नहीं चलती, हमारी बोलचाल की भाषा में ही हम बात करते हैं, पर आपके शब्द क्लियर होने चाहिए। और दूसरा ये कि समझ आज के टाइम पे क्या चल रहा है। अब तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, लोग हर छोटी बड़ी चीज पे अपना ओपिनियन रखते हैं, तो अगर आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं तो आपका ओपिनियन उनसे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा बिगर पर्सपेक्टिव आपका होना चाहिए। तो और भावनाएं तो सच में जरूरी है, क्योंकि जब आप कोई बात कहें तो वो दूसरे के दिल तक पहुंचे, तो आपकी जानकारी और आपकी भाषा के साथ आपकी भावना भी बहुत जरूरी है, ताकि वो जो भी आप कह रहे हैं वो लोगों के दिल तक पहुंच सके, लोग उसको माने कि हाँ, जो आप कह रहे हो वो उन्हें मानना चाहिए या जो आप कह रहे हो वो सही है।
0: बहुत बढ़िया बात कह दिए श्रोताओं, कितना खास अच्छी तरह से इन्होंने समझाया हमें कि रेडियो जॉकी की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर विशेषताएं होनी चाहिए। तो भावनाएं जिस फील के साथ वो कह रहा है वो संप्रेषित होनी चाहिए श्रोताओं के लिए, ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बताई है। और अच्छा, चलिए आप थोड़ा सा हम शिफ्ट करते हैं, आपने वीडियो एंकरिंग भी की है, तो इन दोनों में
1: जी
0: क्या
1: जी
0: फर्क है, रेडियो और वीडियो एंकरिंग में आपको क्या सबसे ज्यादा फर्क नजर आता है?
1: रेडियो इट्स ऑल अबाउट योर वॉइस, मतलब यहाँ सब कुछ आपकी आवाज के बारे में है। आप अपनी आवाज से ही लोगों को एक इमेजिनेशन देते हैं, जो भी आप कह रहे हैं लोग उसे इमेजिन करते हैं। लेकिन जब आप स्क्रीन के सामने होते हैं तब आप खुद एक विजुअल होते हैं उनके लिए, तो उस वक्त आपको अपनी आवाज के साथ साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी दूसरी चीजों पे भी ध्यान देना होता है, ताकि लोग आपसे बेटर तरीके से कनेक्ट कर पाए। और मेन तो यही है कि आपको अपनी पर्सनालिटी और इन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जब आप वीडियो के थ्रू लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। और आवाज के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं तो फिर वहां पे सिर्फ आपको आपकी आवाज से लोगों को इमेजिन कराना है जो भी आप कह रहे हैं।
0: बिल्कुल सही बात। तो आपको तो जब वीडियो एंकरिंग करती होगी तो आपको अपने ड्रेस का, अपने हाव भाव का, अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस का, इन सब का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा ना।
1: जी जी बिल्कुल, इसमें आपका ग्रूमिंग जो भी आपकी है वो बहुत जरूरी है। मेरे को लगता है कि अगर आप वीडियो के लिए काम कर रहे हैं तो आपकी ग्रूमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके अलावा आपको कैमरा एंगल्स का भी पता होना चाहिए कि जब आप एक कैमरा पे बात कर रहे हो तब आप कहाँ देख रहे हो, क्योंकि उस वक्त आप यहाँ वहां नहीं देख सकते, जहां कैमरा है आपको वहीं देखना है, ताकि ऑडियंस को लगे कि आप उनसे ही बात कर रहे हैं। तो कैमरा आपके लिए एक तरीके से उस वक्त ऑडियंस हो जाता है जिससे आपको कनेक्ट करना होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो वीडियो एंकरिंग में ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती हैं।
0: नहीं सही बात है। देखिए हम सब लोग अमीन सयानी साहब के फैन रहे हैं, मैं वैसे ही ऑफ द कफ बात कर रहा हूँ, तो अमीन सयानी साहब की जो आवाज थी वो रेडियो के लिए थी और रेडियो से ही वो पॉपुलर हुए थे। बाद में टीवी आया उनके जमाने में, लेकिन टीवी पे वो दो चार बार आए लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए। वो रेडियो ब्रॉडकास्टर ही उनकी पहचान बना, रेडियो की आवाज ही उनकी पहचान बनी, टीवी पे वो उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। हालांकि स्टेज शो वगैरह करते थे लेकिन टीवी पे उनको वो पॉपुलरिटी नहीं मिली, जबकि रेडियो के तो एक तरह से वो भीष्म पितामह माने जाते हैं, तो फर्क तो है वास्तव में। तो चलिए इसी वीडियो एंकरिंग की बात पे और इसी बात पे हम लोग रुक के एक गाना सुनते हैं और फिर इस बातचीत को आगे जारी रखते हैं।

0: हाँ, वेलकम बैक संध्या जी। अब हमने बात कर ली एंकरिंग की। अब थोड़ा सा आपका जो एक अलग सा फील्ड है, रेडियो से कंटेंट राइटिंग की तरह आपका सफर कैसे आगे बढ़ा, इसमें आपको इंटरेस्ट कैसे जागा, किसी ने कोई खास आपको एडवाइस दी, या किस तरह से आप कंटेंट राइटिंग की तरफ आए?
1: सर, आप तो इस चीज से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे ही कि अगर आप रेडियो में हैं तो आप अपने आप में एक राइटर भी होते हैं। आप अपनी स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, सामने वाले लोगों से बात करते हैं, तो एक राइटिंग स्किल बहुत जरूरी है रेडियो के लिए। तो वो पहले से ही था जब मैं रेडियो में काम किया करती थी, बट जब कोविड का टाइम था तब उसके बाद में मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी जयपुर से।
0: अच्छा।
1: और यहाँ आके कोविड के बाद बहुत सारी चीजें हमारी जो है वो ऊपर नीचे हो गई थी बहुत सारे लोगों की। तो
0: सही बात।
1: मेरी फैमिली ने भी कहा कि तुम मतलब बहुत जयपुर, उन्होंने लगता था कि दूर है बरेली से, तो बोले कि नहीं तुम दिल्ली ही शिफ्ट हो जाओ। और उस तरीके का कुछ सिचुएशन था, तब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई। और यहाँ पे क्योंकि राइटिंग मुझे पसंद थी तो फिर मैंने राइटिंग शुरू की। और मैंने फिर कई अलग अलग तरीके की राइटिंग की। सबसे पहले एक हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी थी, तो वहां पे उन लोगों को राइटर्स चाहिए होते हैं फॉर उनके पॉलिटिकल कैंपेन्स, तो फिर मैंने वहां पे काम किया।
0: अच्छा।
1: और फिर अलग अलग तरीके के लाइक टेक इंडस्ट्री में भी कुछ टाइम काम किया उनके लिए। और फिर मैं आ गई ये जो हमारी आजकल की मॉडर्न जो राइटिंग चल रही है फॉर यूट्यूब और सोशल मीडिया, तो फिर इस चीज में मैं आजकल काम करती हूँ। और मुझे लगता है कि ये एक अलग तरीके की राइटिंग है जो अब एक डेवलप हो गई है, जो हम पहले किया करते थे उससे काफी अलग है अभी ये। तो इस तरीके से मेरा राइटिंग के फील्ड में आना हुआ और ये मुझे अच्छा लगता है। मतलब मुझे लगता है कि जितना पसंद मुझे रेडियो था उतनी ही पसंद मुझे राइटिंग भी है।
0: तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये YouTube राइटिंग। और ये आप क्या करती है, कुछ थोड़ा सा हमें बता सकती है इसके बारे में, कुछ एग्जाम्पल देके किस तरह की चीजें लिखते हो आप, हमें भी बताइए।
1: सर, YouTube और सोशल मीडिया राइटिंग की जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे जरूरी चीज है, वो ये है कि उसमें आपको वीडियो की आप शुरुआत कैसे कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। आज के टाइम पे हम कोई भी वीडियो स्क्रिप्ट हो या कोई भी सोशल मीडिया स्क्रिप्ट हो, उसके शुरुआत में हम कभी भी इंट्रोडक्शन या इस तरीके की चीजें इन्वॉल्व नहीं करते। हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि कोई एक हुक लाइन उठाएं, कोई बर्निंग लाइन उठा लें और उस पर हम शुरुआत करें और फिर हम अपना एक रेगुलर स्क्रिप्ट पे जाएं। तो ये बहुत ही चेंजेस हैं, वो ट्रेडिशनल राइटिंग अब यहाँ नहीं है, पर ये एक अलग तरह की राइटिंग है जो अब जाके डेवलप हो गई है।
0: अब इसी से रिलेटेड एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है, कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग, ये दो शब्द बहुत ज्यादा सुनने में आते हैं, तो कुछ बता सकती हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है एंड क्या सिमिलरिटी है दोनों के अंदर?
1: कंटेंट राइटिंग है कि हमने किसी भी चीज के बारे में एक अच्छे से रिसर्च किया और उसकी हमने एक स्क्रिप्ट बना दी या फिर कोई आर्टिकल लिख दिया।
0: अच्छा
1: बेसिकली इट्स अ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट किसी भी चीज का। पर
0: अच्छा
1: कॉपी राइटिंग हमारी होती है एक तरीके की एड या फिर सीटीए जैसी चीजें, कि हमने कोई एड बनाया तो वो कॉपी राइटिंग में आता है बेसिकली। और जो हमारा कंटेंट होता है वो हमारे किसी भी कंटेंट की बॉडी है एक तरीके से, जिसपे पूरा प्रोग्राम जो है वो चलेगा। लेकिन कॉपी राइटिंग जो है उसका पर्पस होता है कि उस कंटेंट से किस तरीके से सेल्स की जाए, किस तरीके से चीजों को मार्केट किया जाए। तो ये डिफरेंस है कंटेंट राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग।
0: ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल। तो अच्छा, आप जैसे लिखते हो तो आपको इमोशनल, सोशल, इंस्पिरेशनल, प्रमोशनल, किस तरह का कंटेंट लिखना सबसे ज्यादा पसंद है? क्या आपका फेवरेट क्या है इसमें?
1: सर अगर मैं पर्सनल लेवल पे बताऊं तो मुझे इमोशनल और मोटिवेशनल चीजें लिखना पसंद है जो कि पोएटिक वे में होती हैं, और एक अपने विचार हो गए, वन लाइनर्स होते हैं, मुझे वो लिखना शुरुआत से बहुत पसंद है, रेडियो के टाइम से पसंद है। पर अब क्योंकि मैं इसको प्रोफेशनली करती हूँ तो फिर मुझे सभी तरीके की चीजें लिखनी होती हैं। मतलब इट्स लाइक अ टास्क कि आपको जो भी बताया गया है उस पर आप रिसर्च करते हैं और उस पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। अब वो सामाजिक भी हो सकता है, वो टेक्निकल भी हो सकता है, वो इमोशनल हो सकता है, और वो फनी या क्रिएटिव भी हो सकता है।
0: तो अच्छा, एक मेरे को तो बड़ा डिफिकल्ट सा काम लग रहा है ये। अच्छा आप ये बताओगे, जैसे आपके सामने कोई भी चीज आएगी भाई इस पे आपको लिखना है, तो आप उसके बारे में सोचते रहते होगे हर टाइम? मतलब थोड़ा विचार चलता रहता होगा, घर भी जाते हो तो सोचते होगे, रास्ते में भी सोचते होगे, तो कभी कोई ऐसा स्पार्क आता है कि अरे ये चीज सही है, ऐसा क्या कैसे करते हो ये?
1: सर हाँ ऑब्वियसली ये एक प्रोसेस है, राइटिंग हमेशा एक प्रोसेस ही रहेगी, लेकिन आजकल एआई ने उस चीज को काफी आसान कर दिया है। आप आज एक छोटा सा आइडिया अगर अपने दिमाग में लेके आते हो और आप एआई की मदद से जो चीज सोचने में हम पहले शायद 2 घंटे लगा दिया करते थे या 3 लगा दिया करते थे, अब वो छोटा सा भी आइडिया अगर हमारे दिमाग में है, हम एआई से बात कर सकते हैं, वो हमारे पास 100 आइडियाज लेके आ जाता है।
0: अच्छा,
1: तो मेरे ख्याल से ये इस चीज को बहुत ही इजी कर दिया है एआई ने। पर हाँ, आज भी हम ये नहीं कह सकते कि हम एआई से सब कुछ करा सकते हैं, उसे वो थॉट आपको देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो उस चीज को इम्प्रूव कर सकता है। तो आजकल जो राइटिंग है वो ह्यूमन थॉट्स का और एआई की एफिशिएंसी का एक मिक्स है।
0: बहुत बढ़िया, मैं अगला सवाल ये पूछने वाला था कि आज एआई और कॉपी पेस्ट के बारे में आप जो अपना मौलिक लेखन कहते हैं या जो बेसिक लेखन कहते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट रह गया है? हाँ, तो आपका मतलब है इंस्ट्रक्शन तो देनी पड़ेगी आपको सोच के अपने आप?
1: बिल्कुल देनी पड़ेगी, अगर आप और आपको आपके एआई को पूरा ट्रेन करना पड़ेगा। इस अगर आप कोई भी रैंडम ऐप पे जाकर उससे कुछ बात करेंगे तब आपके पास में वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आप चाहते हैं, या फिर कोई भी कहे कि अरे हम ये कर सकते हैं, नहीं करना ये है कि थॉट्स तो आपको अपने ही रखने पड़ेंगे। अभी एआई उतना भी वो नहीं हुआ है, जो वो आपको लिख के देगा उसमें भी आपको करेक्शंस करने पड़ेंगे, पर हाँ ये है कि वो आपका टाइम बचा लेता है। आपको जो काम करने में 2 घंटे लगते थे अब वो आप 2 मिनट में कर सकते हैं या फिर उससे भी कम टाइम में शायद, और ये अभी के लिए तो वो चीज भी बिल्कुल अप्लाई नहीं होती कि हाँ भाई एआई आपकी जॉब ले सकता है, क्योंकि अभी आपको एआई सीखना है और उसे भी सिखाना है बहुत कुछ, तो ये अभी थोड़ा थोड़ा दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है।
0: बड़ा हाँ, मतलब यू आर राइट कि एक ट्रांजिशनल सा फेज चल रहा है अभी तो। हाँ। अब इसके बाद में आगे जाके क्या होगा ये पता नहीं। और ये सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भी जो हमारी लेखन की पुरानी शैली थी उसको भी काफी बदल दिया है। आपका जो पहले अपना लेखन का, जैसे आपने अभी बताया कि इंट्रोडक्शन देते थे ऐसे लिखते थे, वो अब तो जो भी बात कहनी है डायरेक्ट कहनी है और ऐसी कहनी है कि वो बिल्कुल आदमी के जहन में एकदम टच कर जाए, उतर जाए।
1: अच्छा नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ये इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, क्लिकबेट।
0: ओके, क्लिकबेट।
1: पूरी चीज, पूरा सोशल मीडिया आज क्लिकबेट पे चलता है, चाहे थंबनेल हो, आपकी वीडियो की लाइन का हुक हो, सब कुछ क्लिकबेट है। आपके वीडियो के अंदर अगर वो बात नहीं भी है तो भी आप देखते होंगे कि वो थंबनेल पे लोग लिखते हैं उसे, ताकि उस पर एटलीस्ट लोग क्लिक करें। सेम विद वीडियो है, अगर इंस्टाग्राम पे आपकी रील आती है तो वो 3 सेकेंड के लिए आपको कुछ ऐसा लिखना है या उसमें कुछ ऐसा विजुअल डालना है कि लोगों का अटेंशन ग्रैब हो और वो उसको फिर थोड़ा और देखें। तो हाँ, ये राइटिंग अब पहले होता था कि हम गहराई से लिखते थे अपनी पर देखें, तो हाँ ये राइटिंग अब पहले होता था कि हम गहराई से लिखते थे अपनी बात कहने का समय लेते थे, अब हमें वो समय तो लेना ही नहीं है, बस अपनी बात कह देनी है
0: और कहनी भी इस तरह से है कि आदमी मजबूर हो जाए उस पर क्लिक करने के लिए किसी तरह से।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो चलिए, ये जो सोशल मीडिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस पे रुक के हम एक गाना सुनते हैं और फिर आगे बातचीत का, अब थोड़ा सा आपके दिल्ली की जिंदगी के बारे में भी बात करना चाहते हैं, हमने ये बातें कर ली, अब तो एक गाना सुन के और बातें करते हैं।

0: हाँ, वेलकम बैक संध्या जी। आप बरेली की रहने वाली हैं, जयपुर में भी अपनी कॉलेज लाइफ और अर्ली लाइफ रेडियो की व्यतीत कर चुकी हैं और अब दिल्ली जैसे महानगर में रह रही हैं आप। तो ये बताइए कि जो वर्किंग वीमन होती है दिल्ली में, आपको क्या चैलेंजेस नजर आ रहे हैं?
1: वर्किंग वुमेन के लिए आई थिंक हर जगह, मेरे ख्याल से वुमेन के लिए हर जगह एक ये चैलेंज यही है, अगर वो काम कर रही है तो, कि उसे काम तो करना ही है, साथ के साथ उसे फैमिली भी बैलेंस करनी है। तो चाहे अब जैसे मैं सिंगल, अगर मान लो मैं यहाँ रहती हूँ तो भी मुझे आने के बाद में एक अपना पर्सनल टाइम है, मुझे अपना घर संभालना है, तो वुमेन के साथ ये चीज एक हमेशा रहेगी। पर वुमेन की अच्छी बात यह है कि वो ये सब चीजें बहुत ही एफिशिएंटली कर भी लेती है।
0: मल्टीटास्किंग होती है महिलाएं। अच्छा ये बताइए,
1: जी
0: जैसे आप मीडिया के क्षेत्र में काम कर रही हैं या फील्ड में, तो मीडिया
1: हाँ
0: में आपके किस तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है या महिलाओं को कुछ आपको ज्यादा अपने आप को प्रूव करना पड़ता है वर्किंग एनवायरनमेंट में, क्या होता है?
1: सर, मुझे जहाँ जिस माहौल में अभी तक मैं रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं को फेस करना पड़ता है, क्योंकि महिलाएं इतनी कैपेबल हो गई हैं आज की डेट पे कि वो अपने टैलेंट से वो जगह हासिल कर रही हैं। तो नहीं, मुझे अभी तक मेरी जर्नी में भी डिस्क्रिमिनेशन मुझे महसूस नहीं हुआ। और जो मैं अपने आसपास और भी देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारी पावरफुल लीडर्स हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, मैं और भी जगह देखती हूँ, और हम मेन स्ट्रीम मीडिया में भी देखते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी एंकर्स हैं वो लेडीज ही हैं आज की डेट पे, उनका नाम है। तो मुझे लगता है कि ये स्किल्स के बारे में ज्यादा है, ये एफिशिएंसी के बारे में ज्यादा है। अगर आपके पास में वो है तो आप शायद डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज आपके बीच में कभी आएगी भी नहीं। तो ये पूरे तरीके से मेरे ख्याल से दिल्ली में, तो यहाँ मुझे लगता है कि हाँ, ये टैलेंट के बारे में ज्यादा है।
0: तो चलिए, कोई कोई खास ऐसा सजेशन आप देना चाहो वर्किंग प्लेस पे महिलाओं के लिए, आप कोई चेंजेस चाहते हो, ऐसा कुछ आपके दिमाग में, ऐसा कोई कभी दिमाग में आता है यार ये होता तो बहुत अच्छा होता, मैं जहाँ काम करती हूँ, ऐसा कोई दिमाग में है चीज?
1: सर, इसको लेके यही है कि क्या होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं।
0: हाँ, मतलब ऐसा कोई चेंजेस आप चाहो अपने वर्किंग प्लेस में, क्या कुछ ऐसे कोई चेंजेस देखना चाहती हो आपके और इस तरह का अच्छा हो वहाँ?
1: सर, महिलाओं को लेके जहाँ मतलब मैं काम करती हूँ वहां, तो मुझे तो कभी ऐसा अलग सा महसूस नहीं होता, लेकिन हाँ, कई बार जब महिलाएं जो है, लाइक अभी मैं एक चीज फेस करती हूँ, जैसे हमारे आसपास में थी कि एक लेडीज थी जो प्रेग्नेंट है अभी,
0: ओके
1: और उन्हें एक मैटरनिटी लीव चाहिए कुछ महीनों का। अब वो लीव उन्हें मिल जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, बट उस चीज में एक ये चीज होती है कि वो कहीं ना कहीं जब वो वापस आना चाहती हैं, तब कंपनियां उन्हें उस लेवल पे सपोर्ट नहीं करती। ये चीज मैंने ऑब्जर्व की, तब मैं चाहती हूँ कि वहां पे उनको ज्यादा अच्छे से अगर सपोर्ट किया जाए, क्योंकि वो वापस आती हैं तो वो एक डबल जिम्मेदारी के साथ वापस आती हैं, तो उनको रिप्लेस ना किया जाए, बल्कि उनको और बेटर तरीके से वेलकम किया जाए। ये चीज मैं थोड़ी सी और देखना चाहूंगी, जो और बेटर तरीके से हो पाए।
0: वेरी गुड, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया, मैं समझ
1: जी
0: गया। क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर तो मैटरनिटी लीव और सेबेटिकल लीव
1: हाँ
0: का बहुत अच्छे प्रोविजन हैं, बैंकों में भी हैं, सब कुछ है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा इस बारे में दिक्कत हो
1: हाँ
0: सकती है,
1: वो उन्हें
0: मैं
1: खुद ही अकेले ही सब मैनेज करना
0: सभी
1: पड़ता है
0: मैनेज
1: फिर।
0: करना पड़ता था। चलिए तो हम रुक के एक गाना सुनते हैं, फिर थोड़ा सा रेडियो के बारे में बात करते हैं, संगीत के बारे में बात करते हैं, आपके और शौकों के बारे में बात करते हैं, ऐसा करते हैं, है ना?
1: जी

0: तो संध्या जी वेलकम बैक। आपने रेडियो या एंकरिंग का कोई ऐसा अनुभव या कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको लगता है जो आज भी याद आता है तो आपको बड़ा मजा आता है, इमोशनल है, कोई ऐसा लाइफ का कोई एक्सपीरियंस ऐसा है?
1: सर मेरी लाइफ का जो रेडियो वाला, जितने भी टाइम में रेडियो से जुड़ी रही, चाहे जब मैं वो सीख रही थी उस वक्त या फिर जब मैं रेडियो के लिए काम कर रही थी उस वक्त भी, वो पूरा ही चीज मेरे लिए बहुत ही यादगार है और बहुत ही मेमोरेबल, मतलब मैं उसको कह सकती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी चीज थी जो मैं दिल से किया करती थी उस वक्त।
0: अच्छा,
1: तो हाँ, वो पूरा एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत यादगार है। मतलब मैं ऐसी कोई एक याद तो मैं अभी नहीं याद कर पा रही हूँ, पर वो पूरा ही माहौल बहुत अच्छा मुझे लगता था, क्योंकि वहां पे आप हैप्पी फील करते हो उस माहौल में, आप जो चाहते हो वो आप कह पाते हो, एक्सप्रेस कर पाते हो अपनी ओपिनियन, ना सिर्फ खुद तो आपकी ओपिनियन है ही, बल्कि लोगों तक भी वो आप ओपिनियन दे पाते हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत खूबसूरत चीज है कि आप अपनी बात जब कह रहे हैं तब हजारों हजार लोग आपकी वो बात सुन रहे हैं और वो उस बात पे बिलीव करते हैं कि जो एक बंदा एक चीज को कह रहा है कि हाँ वो कुछ अच्छा कह रहा होगा, पे भरोसा करते हैं। तो ये चीज मुझे एक रेडियो के बारे में बहुत खूबसूरत लगती है और बहुत मेमोरेबल भी लगती है।
0: सही, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए फिर ऐसा करते हैं कि अब ये बताइए, संध्या के शौक क्या है, काम के अलावा आपकी हॉबीज क्या है? म्यूजिक से आपको दिलचस्पी है या म्यूजिक अच्छा लगता है? आपकी लाइफ में म्यूजिक की क्या जगह है?
1: सर मेरी लाइफ में म्यूजिक की जगह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर मैं अपने घर से निकल के ऑफिस तक जा रही हूँ और वो रास्ता 10 मिनट का भी है, तो मैं उसमें म्यूजिक सुनना पसंद करती हूँ। इतनी ज्यादा मेरी लाइफ में म्यूजिक की जगह और इम्पोर्टेंस है। बाकी हॉबीज और मैं अपने टाइम पास की बात करूं, जब मैं खाली रहती हूं तो मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद है।
0: मतलब वेरी गुड
1: जी, मैं कोई भी दूसरी चीज पे मैं कभी सोच ही नहीं पाती कि मुझे क्या करना है। अगर मेरे पास खाली समय है तो मैं कोई अच्छी फिल्म देखती हूँ। इसके अलावा मुझे घूमना फिरना पसंद है, जब भी टाइम होता है तो मैं अपने आस पास या फिर पॉसिबल हो तो आउट ऑफ स्टेशन घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: Wonderful.
1: तो ये दो शौक है मेरे जो जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी लगते हैं मुझे खुद को।
0: वेरी गुड। अच्छा, तो कोई लेटेस्ट पिक्चर आपने देखी हो जो आपको बहुत पसंद हो, बताइए उसके बारे में, कौन सी देखी है?
1: लेटेस्ट सर मैं अभी याद कर पा रही हूँ, मैंने जो लास्ट फिल्म नेटफ्लिक्स पे देखी थी, इट्स माँ बहन उस फिल्म का नाम है।
0: अच्छा।
1: और वो प्योर जो है विमेन एम्पावरमेंट को लेके है, कि जिसमें माधुरी दीक्षित है और भी एक दो हीरोइंस हैं। उसका यह है कि कैसे एक समाज महिलाओं को देखता है, नॉर्मल समाज, और कैसे एक महिला होती है, उसका एक बहुत ही साफ साफ उन्होंने दिखाया है डिफरेंस।
0: अच्छा अच्छा
1: तो वो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी।
0: वेरी गुड। और कोई संध्या का अगर कोई गाने का शौक है, अगर आप कोई गुनगुनाना चाहें एक लाइन या कोई गजल, एनीथिंग कोई आप सुनाना चाहें तो स्वागत है आपका।
1: नहीं नहीं सर, गुनगुनाने में मैं काफी बुरी हूँ। और जब हम रेडियो स्टेशन पे जब सीख रहे थे तो मेरे एक मेंटर ने मुझे एक बात कही थी कि जब आरजे को गुनगुनाना ना आए तो उसे नहीं गुनगुनाना चाहिए। तो यस, तो हाँ, नहीं गुनगुनाना मतलब वो मेरी स्पेशलिटी बिल्कुल भी नहीं है।
0: Okay.
1: हाँ, मुझे बात करना पसंद है।
0: कोई शेर व शायरी सुनाना चाहती हो, कुछ एनीथिंग, कोई भी आप, कोई
1: सर शेर व शायरी सर मैं ऐसे कुछ प्रिपेयर करके नहीं आई सर।
0: चलो
1: तो
0: कोई बात नहीं, कोई बात। तो फिर ऐसा करो कि जो महिलाएं, खासकर लड़कियां, यंग लोग रेडियो या कंटेंट राइटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कुछ उनको संदेश आप दे सकती हो, कुछ एडवाइस देना चाहो तो फिर दीजिए।
1: आज की डेट की अगर आप कंटेंट राइटिंग में जाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी एडवाइस यही है कि एआई टूल्स को जितना जल्दी हो सके आप सीख लो और उनको अपने हिसाब से, अपने थॉट के हिसाब से आप ट्रेन करना सीख लो, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है आपको हाथ से बैठ के टाइप करके लिखना नहीं पड़ेगा, आपको एआई को अपना थॉट देना पड़ेगा कि मैं ये आपसे लिखवाना चाहता हूँ और आपको ये लिखना है, मुझे ये रिजल्ट चाहिए। अब जो राइटिंग है वो चाहे रेडियो की कंटेंट राइटिंग हो या मैं कहती हूँ फिल्म्स हो गई, कुछ भी हो गया, सॉन्ग राइटिंग हो गई, कुछ भी हो गया, अब वो सब कुछ आने वाले टाइम में बहुत ही फास्ट पेस्ड करना पड़ेगा राइटर्स को और वो

0: संगीत प्रेम के बारे में जिस तरह से खुलकर बात की है वो हमारे श्रोताओं को निश्चित रूप से प्रेरित करेगी। हमारी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हम चाहते हैं कि आप यूं ही उत्तरोत्तर आगे बढ़ती रहें और सफलता की सीढ़ियां चढ़ती रहें। थैंक यू वेरी मच।
1: थैंक यू सो मच सर, इस तरीके से इनवाइट करने के लिए। और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो लोगों तक जाएगा, अगर वो कुछ सीख सके तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। थैंक यू सो मच।
0: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही प्रेरणादायक व्यक्तित्वों की अनकही कहानियां। नमस्कार।
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है स्टेज और थिएटर की दुनिया का एक बहुरंगी रंग। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस सफर की जहां लॉजिक से क्रिएटिविटी मिलती है, जहां स्टेज की लाइट से इनर हीलिंग की शांति जुड़ती है। हमारी आज की गेस्ट है एक स्टेज आर्टिस्ट, एक थिएटर टीचर, एक एंकर और एक होलिस्टिक हीलर। इन्होंने थिएटर में विजय तेंदुलकर, मंटो, डेरियो फो और ईव एंसलर जैसे राइटर्स के प्ले किए हैं। नुक्कड़ नाटक से लेकर एक्सपेरिमेंटल थिएटर तक का सफर तय किया है, और साथ ही ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन के जरिए हीलिंग की दुनिया से भी जुड़ी हुई है। आज हम उनसे जानेंगे कैसे इंजीनियरिंग से थिएटर तक का सफर शुरू हुआ, स्टेज पे खड़े होकर क्या महसूस होता है, और थिएटर व मेडिटेशन से कैसे लाइफ को बैलेंस देना सिखाते हैं। तो चलिए बिना देर किए वेलकम करते हैं तरुषा सक्सेना को। वेलकम टू द शो तरुषा जी।
2: थैंक यू सो मच, और आपको और आपके सारे लिसनर्स को मेरा बहुत ही प्यार भरा नमस्ते।
1: तो चलिए शुरुआत से ही करते हैं तरुषा जी। अब ये बताइए कि आपका सफर इंजीनियरिंग से शुरू हुआ और थिएटर और हीलिंग तक पहुंचा, ये सारा जर्नी जो है बहुत ही इंस्पायरिंग लग रही है। तो बताइए शुरुआत में आपका बचपन कैसे रहा, फॉर्मेटिव ईयर्स कैसे रहे, कैसे आप इंजीनियर से थिएटर तक आ गई, कुछ इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें।
2: तो मुझे आपकी लाइन बहुत अच्छी लगी जो आपने कहा शुरू से शुरू करते हैं। ये अक्सर मैं यूज करती हूँ। तो हाँ, तो बेसिकली बचपन मेरा आई वुड से कि बचपन जैसा था, क्योंकि काफी लोग होते हैं जिनका बचपन बचपन जैसा नहीं रहता। तो मैं लकी थी, मेरा बचपन बचपन के जैसा था, मुझे एक बच्चे की तरह रहने को मिला था, और मेरा जो फैमिली एनवायरनमेंट था, मैं मेरे नानी नाना मम्मी और सबके साथ में रही हूँ, और मेरा जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे वो मेरी लाइफ में बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं आज तक भी। मेरे फैमिली में, हालांकि मैं काफी

0: बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे और प्रोफेशनल फैमिली से आती हूँ। मेरे यहाँ पे प्रोफेसर्स रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, तो मैं उस फैमिली से आती हूँ। हालांकि मैं तो उनमें से कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक इंजीनियर और एमबीए हूँ और मैं अपना अपनी खुद की कंपनी चलाती हूँ। पर उन सब के साथ में मेरे फैमिली में क्रिएटिव इंटरेस्ट हमेशा से हर किसी को रहा है। मेरे नाना जी बहुत अच्छे पेंटर थे, मेरे जो मौसा जी हैं ही इज अ डॉक्टर और वो बहुत अच्छे पेंटर है, मेरे फादर बहुत अच्छा स्केच करते हैं, मेरे फादर और उनकी सिस्टर्स गाने में काफी माहिर हैं, मेरी मम्मी बहुत अच्छी स्टोरीज लिखती हैं, शी इज ऑल्सो एन ऑथर एंड अ राइटर, तो मम्मी बहुत अच्छी स्टोरीज लिखती हैं, शी इज ऑल्सो एन ऑथर एंड अ राइटर। तो एक कला की तरफ रुझान मेरी फैमिली में मैंने हमेशा से देखा है। और एक चीज ये है कि मेरी जो नानी थी उनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी जिंदगी पर। वो एक होममेकर थी पर उन्होंने बहुत बहुत लोगों की पर आई थिंक उन्होंने होममेकर से ज्यादा फिलेंथ्रोफी वर्क ज्यादा करा है। एंड जब वो इस दुनिया से गई तो वो 96 की थी, लेकिन आई थिंक कि मैंने अपनी जिंदगी में इस उनसे ज्यादा ओपन माइंडेड इंसान, उनसे ज्यादा एक्सप्लोरेटरी नेचर रखने वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और मैंने अपनी जिंदगी में जो सीखा है वो सबसे ज्यादा उनसे सीखा है और मेरे नाना जी से सीखा है और मेरी माँ से सीखा है, जिन्होंने मुझे हमेशा सिखाया है कि बॉक्स के बाहर और बाउंड्रीज के बियॉन्ड एक्सप्लोर करना चाहिए। तो उन्होंने हमेशा से ही मेरी परवरिश ऐसे हुई है कि कोई भी चीज तुम्हें बताई जा रही है तो पूछो क्यों, क्या, कैसे। तो वो जो एक क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेटरी एनवायरनमेंट में जो मैं मेरा बचपन गुजरा, तो उन चीजों का इम्पैक्ट मेरी लाइफ में आज तक रहा है। एंड आई थिंक दैट हैज प्लेड अ वेरी क्रूशल पार्ट इन द वे आई थिंक, द चॉइसेस दैट आई हैव मेड। और हाँ, तो आई वुड जस्ट से कि एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे इस तरीके का बचपन मिला। तो
1: वंडरफुल, आपकी नानी जी के बारे में जान के तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब 96 की उम्र उन्होंने पाई और उनकी जो आउटलुक थी वो हमेशा से एक फॉरवर्ड लुकिंग थी, ये मैं कहना चाहूंगा कि वाह, बहुत मजा आ गया सारी बात सुन के। और ये भी आपने बताया कि कल्चरल सा बैकग्राउंड था आपके सारे घर का, सब लोग किसी न किसी फील्ड में बहुत ही अच्छे माहिर थे और बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग लोग थे। चलिए,
0: बिल्कुल,
1: तो फिर आप ये बताइए कि आपने बीटेक किया, फिर एमबीए किया, फिर ये थिएटर में आप कैसे आ गई, यहाँ क्या, कैसे कैसे कैसे जुड़ा हो गया?
0: तो जब मैं तो बीटेक और एमबीए में था तो होता यह है कि मेरे बहुत बचपन से ही मैंने एक परफॉर्मेंस दिया था जब मैं काफी छोटी थी। तो तभी जो मुझे फील हुआ था स्टेज पे वो मुझे आज भी याद है। और somehow फिर ये हुआ कि जब मैं आई थिंक मैं शायद टीन एज में थी, तब पता नहीं क्यों बट मुझे कुछ चीजें मेरी लाइफ के बारे में पता थी कि मैं फॉर एग्जाम्पल 10-15 साल किसी कंपनी में काम करूंगी और फिर उसके बाद मैं एक हाई रैंक पे जाके आई विल लीव दैट करियर। उसके बाद मुझे पता था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ साल बिजनेस करूंगी, क्या करूंगी नहीं पता था पर बिजनेस करूंगी, ये मुझे बहुत क्लियर, मुझे पता था कि मैं करूंगी। ऐसे ही मुझे ये भी पता था फॉर सम रीजन कि मैं अपनी जिंदगी में थिएटर भी करूंगी और अराउंड 40-45 की एज पे करूंगी थिएटर। तो ये मेरे को बहुत क्लियर पता था उस टाइम, क्यों, क्या, कैसे, उसका आप मुझसे कारण पूछेंगे तो मुझे नहीं पता, पर वो मेरा, मैं ये भी नहीं कह सकती वो मेरा विजन था, वो मुझे पता था। पर ये होता है ना कि ये तो मुझे पता था लेकिन जिंदगी अपने फ्लो से ही करती है, चलती है, तो सब मेरी लाइफ में थोड़ा अपने टाइम से पहले आ गया, जो मैंने सोचा था उससे काफी पहले। तो मैंने सोचा था 40-45 पे करूंगी बट थिएटर एंटर्ड माई लाइफ व्हेन आई वाज 31-32 ईयर्स। तो ये था।
1: नहीं, थिएटर आ गया और आपको पता था ये कोई टैरो या होलिस्टिक, इससे तो कुछ नहीं पता था या वैसे ही पता था,
0: नहीं
1: अंदर
0: नहीं
1: से इंट्यूशन थी?
0: इंट्यूशन पता नहीं, एक होता है इंट्यूशन एक होती है नोइंग, तो मुझे वो नोइंग थी हमेशा से कि ये तो है, ये है, तो वो नोइंग थी मुझे हमेशा से। और टैरो तो मेरी जिंदगी में अगेन व्हेन आई वाज इन माय 30s तब आया था। तो या
1: या कोई ऐसा ट्रिगर जिसने आपको थिएटर की तरफ ले आया, आपको कभी ऐसा कोई व्यक्ति मिला या कोई ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से थिएटर आ गया लाइफ में?
0: हाँ, जब मैं, जैसे मैंने पहले बताया, तो मैं उस वक्त आई थिंक 4 या 5 साल की थी और जयपुर में एक ऑडिटोरियम

0: है रविंद्र भारती, रविंद्र मंच। तो रविंद्र मंच पे मुझे अब याद नहीं है क्या इवेंट था, क्यों था, किस वजह से था, बट उसमें मैंने इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया था। मैं 4 या 5 साल की थी
1: ओके ओके
0: और साड़ी वाड़ी पहन के गई थी, और मुझे बस इतना ही याद है। और मैंने क्या बोला मुझे वो भी याद नहीं, बस स्टेज पे पूरा बड़ा स्टेज, 4 साल की बच्ची स्टेज पे अकेले इतने बड़े स्टेज पे, कुछ मुझे मुझे स्पीच देनी थी जो मैंने दी। अब देने की मुझे आज भी याद है, बाकी कुछ याद नहीं है, मुझे सिर्फ वो मोमेंट याद है। मैं आज भी अपनी आंखों में, मतलब अपने दिमाग में वो, मैं वो देख सकती हूँ कि मैं स्टेज पे 4 साल की बच्ची खड़ी हूँ, और मुझे वो जो महसूस हुआ था उस वक्त वहां बोलते हुए, मैं बोल कुछ रही थी लेकिन मुझे अंदर महसूस कुछ और हो रहा था, और वो जो मुझे महसूस हो रहा था वो ये हो रहा था कि दिस इज होम। तो उस वक्त तो मैं बहुत छोटी थी टू कॉम्प्रिहेंड कि मैं क्या फील कर रही हूँ, बट मुझे ये पता था कि मैं जो फील कर रही थी वो बहुत अच्छा था, वो मैजिकल था, और मुझे ये पता था कि बस यही है जो है। तो वो चीज मुझे आज भी, मैं वो चीज महसूस कर सकती हूँ, और अब जब बड़े हो गए हैं तब आई कैन पुट इट इन वर्ड्स कि इट फेल्ट लाइक होम फॉर मी, बट वो फीलिंग मुझे आज भी याद है। और फिर उसके बाद मैंने जैसे बताया कि जब मैं टीनेज में आई तो मुझे पता था थिएटर मैं कभी करूंगी, और फिर जब व्हेन आई वाज अराउंड 31, जब मेरा बेटा 6 महीने का था, तो उसके बाद मुझे बस अंदर से एक ट्रिगर आया कि मुझे, मैं उस वक्त एक्चुअली आफ्टर चाइल्ड बर्थ काफी वेमेन गो थ्रू आइडेंटिटी क्राइसिस, तो वो मेरे साथ आई थिंक आई वॉज गोइंग थ्रू दैट। और तब मुझे लगा कि मैंने देखा कहीं पे थिएटर वर्कशॉप हो रहा है, और मुझे लगा कि मे बी दिस विल हेल्प मी कनेक्ट विद माई सेल्फ अगेन, तो मुझे लगा कि ये करके देखते हैं। तो तब मैंने ऐसे ही कर लिया था, उतना नहीं सोचा था कि मैं इसको लेके मैं कहाँ क्या क्या करूंगी, बट हाँ बस उस ट्रिगर ने मुझे ज्वाइन कराया, और फिर वहां से फिर, पर हाँ स्टेज पे मैं बचपन से ही कनेक्टेड रही क्योंकि स्कूल में हम लोग डांस करते थे काफी, और थिएटर करते थे स्कूल में भी, और इंजीनियरिंग में हमने मुशायरे फ्रॉम द स्क्रैच हमने मुशायरा किया, एंड आई थिंक दैट हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मेंस सो फार। वो जो हमने बनाया था वो एक बहुत ही कमाल की चीज बनाई थी, उसके बाद हमने कितने प्ले करे, बट हाँ दैट वॉज समथिंग। तो छोटे बड़े पैमाने पे कनेक्टेड तो मैं रही हूँ, बट प्रॉपर थिएटर मैंने फिर 31 की एज में ज्वाइन किया।
1: चलो, तो इसी आपके थिएटर से जो आपका लगाव हुआ और बचपन में जुड़ाव हुआ और इंदिरा गांधी का जो रोल किया, इसके नाम पे रुक के एक एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं और फिर हम बातचीत को जारी रखेंगे।
0: बिल्कुल।

0: ओके वेलकम बैक। अब आपने ये तो बता दिया कि थिएटर से आपका पहला इंट्रोडक्शन कैसे हुआ था। अब ये बताइए कि आपने जो अपना पहला थिएटर वर्कशॉप था उसी मेंटोर के साथ किया था जिन्होंने विजय देवर कोंडा और विजय
1: देवरकोंडा
0: वर्मा को ट्रेन किया था। तो उस ट्रेनिंग में या उस मेंटोरशिप में ऐसी क्या खास बात थी कि वो किस तरह से मेंटोर करते हैं, किस तरह से ट्रेन करते हैं, कोई ऐसी विशेष बात है जो इतने बड़े बड़े नाम जिन्होंने ट्रेन किए हैं?
1: हैदराबाद में तो उनका नाम है विनय वर्मा एंड ही इज अ वेरी सीनियर एंड अ वेरी सीजन्ड थिएटर एक्टर एंड अ कास्टिंग डायरेक्टर इन हैदराबाद. और
0: अच्छा
1: उन्होंने खुद ने
0: अच्छा
1: भी अभी काफी पिक्चरें करी हैं,
0: अच्छा
1: तेलुगु भी और हिंदी भी. तो पर विनय का एक ये है कि वो काफी स्ट्रिक्ट मेंटर माने जाते हैं. तो जैसे थिएटर का कन्वेंशनली एक आइडिया है, आप कहीं भी सीखेंगे कि ये बहुत ही डिसिप्लिन फील्ड है. आपको बहुत डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, आपको टाइम के बिल्कुल पाबंद होने पड़ता है. लाइक अगर आप 30 सेकेंड्स भी टाइम से लेट हैं तो आप बाहर हैं क्लास के, आप अंदर नहीं आ सकते. फॉर किसी भी रीजन अगर आप लेट हैं आप अंदर नहीं आ सकते. तो विनय तो बहुत, उनके जो वर्कशॉप्स होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस, बहुत स्ट्रिक्ट आपको, मतलब वो पूरा ये उनका वर्कशॉप का ही होता है कि आप उनके वर्कशॉप्स में, अब हम एक एज एन एडल्ट ही आते हैं तो हमारी एडल्ट लाइफ 25 या 30 इयर्स जी के हम आते हैं वहां पे. तो 25-30 इयर्स हमारी जिंदगी का लगभग एक तिहाई हिस्सा होता है. तो हमने काफी एक्सपीरियंसेस गेन करे होते हैं और वहां पे ये होता है कि जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं, एज में आगे चलते जाते हैं, एज अ ह्यूमन बींग हम क्लोज होते जाते हैं. आप एक छोटे बच्चे को देखिए, वो बहुत खुला, उसका बॉडी लैंग्वेज खुला होता है, वो खुले मन का, खुले दिल का होता है. वो ये नहीं सोचता कि मैं क्या बोल रहा हूँ. लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारी बॉडी बहुत कन्फाइन होती चली जाती है, हम बहुत कॉन्शियस होते चले जाते हैं इमोशनली, मेंटली और फिजिकली. तो जब हम उतने बंद होके जब हम विनय वर्मा जैसे वर्कशॉप पे जाते हैं तो उनका सबसे पहला काम होता है आपको तोड़ना. आपने जितने बैरियर्स बनाए हैं अपने इर्द गिर्द, जो चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, आपको वो पूरा तोड़ देंगे. और वो तभी टूट सकता है जब आप उतने स्ट्रिक्ट उसके अंदर आप जो है आपकी ग्रिलिंग होती है एज एन एक्टर. तो बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते हैं, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, जो आपको, जिनसे आपको गुजरना पड़ता है. और फिर जो टूटने के बाद जो फिर एक जो चीज अंदर बचती है वो आप होते हैं.
0: वाह क्या
1: तो
0: बात है, मजा आ गया सुन के। तो ये जो बड़े बड़े स्टार्स हैं देवर कोंडा, विजय वर्मा, ये सब भी उसी प्रोसेस के थ्रू निकले हुए हैं?
1: अब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने क्या करा है, लेकिन हाँ ये उनका फॉर्मेट है लॉन्ग टर्म वर्कशॉप का. तो आई एम श्योर कि विजय और दोनों विजय ने उनसे वही वर्कशॉप्स करे हैं. बिकॉज अभी जब विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी भी हुई थी तब भी विनय सर जो है, विनय वर्मा सर, वो उनकी शादी में उनको ब्लेस करने के लिए गए थे एंड ऑल. तो आई एम श्योर उनका काफी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है. तो और खाली वो ही नहीं, हैदराबाद के भी तेलुगु इंडस्ट्री के बहुत सारे नोन एक्टर्स हैं जो बॉलीवुड में नोन नहीं है पर हैं. तो उनको भी, वो भी विनय वर्मा से सीख के गए हैं. तो ही इज अ गुड
0: बड़ा
1: मेंटर.
0: नाम है उनका। और विजय वर्मा भी तो मुझे याद है, इनकी तो अभी एक कोई बहुत अच्छी फिल्म आई है, बहुत बढ़िया एक्टर हैं, बहुत अच्छे
1: हाँ
0: एक्टर हैं विजय वर्मा, बड़े बड़े वर्सेटाइल एक्टर हैं,
1: बिल्कुल.
0: बहुत अच्छी एक्टिंग की है इन्होंने। अभी हिंदी में कोई पिक्चर आई थी इनकी। जो तलिए तो क्या थिएटर से प्यार धीरे धीरे बढ़ा या पहली बार में ही करेक्ट हो गया था कि धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ा?
1: आई थिंक थिएटर एक वो प्यार नहीं होता जो बचपन में होता है पहली बार, और फिर वो हमेशा के लिए वो पहला प्यार वही रहता है. और एज के साथ वो फिर वो वाइन की तरह मैच्योर होता जाता है. तो आई थिंक थिएटर वो एक वाइन है जिसको आप एक बार चख लेंगे, आपके जुबान पे चढ़ गया, और फिर वो जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं वाइन की तरह वो भी मैच्योर होके बहुत वो उस प्यार का स्वाद और निखरता जाता है. तो ये वो चीज है.
0: मतलब सुरूर धीरे धीरे चढ़ता है, लेकिन फिर एक बार चढ़ जाता है तो उतरता नहीं है,
1: उतरता नहीं है.
0: उतरता नहीं। चलिए इसी पहले प्यार और इसी सुरूर पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही कोई अच्छा सा गाना सुनते हैं यहाँ,
1: जरूर
0: और फिर आगे चलते हैं।

0: थोड़े आपके स्टेज जर्नी और अभिनय के अनुभव तक हम आते हैं। आपने बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं, विजय विजय तेंदुलकर है, डेरियो फो है, सादत हसन मंटो है, ई वेंसलर है, ऐसे राइटर्स के प्ले में काम किया है। तो इनमें से कौन से प्ले राइट का प्ले करना सबसे ज्यादा आपको चैलेंजिंग लगता है, या आपको लगता है कि इसमें आप बिल्कुल खुल के अपनी तरफ से आ सकी हैं, तो ये बताइए मुझे।
1: चैलेंजिंग तो मुझे लगता है कि हर कैरेक्टर होता है। चैलेंज तो अगर आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे अच्छे एक्टर भी शायद मैं तो उतना कोई बहुत मैंने नहीं उतना सीजन्ड एक्टर तो मैं नहीं हूं, लेकिन हाँ जो आप बड़े एक्टर्स का भी सुनेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि हर किरदार अपने में अलग और यूनिक होता है और उस किरदार तक पहुंचने की जर्नी यूनिक और डिफिकल्ट होती ही है। लेकिन इन प्ले राइट्स में से मुझे जो मुझे सबसे अच्छी किसी की अगर राइटिंग लगती है तो विजय तेंदुलकर साहब की लगती है, क्योंकि उनके मैंने प्लेज में काम करा भी है कुछ प्लेज में और बहुत सारे उनके नाटक मैंने देखे भी हैं जो दूसरों ने करे हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने कब कब लिखे थे ये, कम से कम कितना पहले ये प्लेज लिखे हुए थे और आज के जमाने में भी उनके राइटिंग्स रेलेवेंट हैं। देखा जाए तो सादत हसन मंटो की भी राइटिंग्स मुझे बहुत पसंद है और उन्होंने तो कभी लिखा था और भी बहुत 70 साल पहले 75 साल पहले, और वो भी आज के
0: पार्टीशन
1: जमाने में, हाँ पार्टीशन के टाइम, और वो आज भी इतना रेलेवेंट है। पर मुझे ऐसा लगता है कि विजय तेंदुलकर साहब की राइटिंग बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि उनके प्लेज के जो एंडिंग्स होते हैं, काफी सारे उनके प्ले हैं जिनके एंडिंग्स ऐसे होते हैं कि वो आपको स्पून फीड नहीं करते कहानी, वो अंत में आप ओपन एंडेड होते हैं और आप ऑडियंस अपने हिसाब से उसका एंडिंग इंटरप्रेट करके जाते हैं। तो वो मुझे बहुत एक खूबसूरत, उनका राइटिंग बहुत इंटेलिजेंट है।
0: विजय तेंदुलकर वही है जो जिनका शांतता कोर्ट चालू है
1: हाँ
0: इन्हीं का
1: हाँ
0: है
1: हाँ हाँ हाँ हाँ राइट
0: ना। और मंटो के तो खैर बहुत सारी स्टोरीज हमने पढ़ी है, मैंने भी किसी जमाने में कुछ ऑडियो स्टोरी इनकी की थी, जैसे
1: हाँ
0: खोल दो एक इनकी किताब है, और
1: हाँ
0: भी बहुत है बहुत है। तो
1: हाँ
0: इनका तो खैर एक अलग ही तेवर है, एक अलग ही तरह की है, बिल्कुल बेबाकी से सारी बातें कहते
1: बहुत
0: हैं ये,
1: रिबेल थे, बिल्कुल हाँ बिल्कुल,
0: बिल्कुल
1: वो भी
0: रिबेल
1: और
0: थे।
1: अमृता प्रीतम भी,
0: अमिताभ
1: तो
0: प्रीतम भी, बिल्कुल सही बात है,
1: हाँ
0: बिल्कुल सही बात है, इनके प्ले करना बहुत वो है। चलिए बहुत अच्छा। आप ये बताइए कि आपने ऐसे चैलेंजिंग रोल किए हैं इन सभी बड़े प्ले राइट्स के, तो कोई ऐसा रोल या करेक्टर आपको याद है जो आप जिसने आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया, जो आज भी आपके साथ साथ चलता रहता है, आपको महसूस होता है कि उस रोल से आप इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कि हमेशा आपके साथ वो रोल रहता है, ऐसा कोई है?
1: हाँ तो आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं बस ये बोलूंगी कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है मुझे लगता है कि जितने भी किरदार होते हैं कहीं ना, हर प्ले का कहानी का, वो हम सबके अंदर सारे किरदार होते हैं, बस बात इतनी होती है कि हम हमने अभी तक उसको एक्सप्लोर किया है कि नहीं। वो हम सबके अंदर होते हैं सारे किरदार, डेविल भी हमारे अंदर है और भगवान भी हमारे अंदर है। तो रही बात की मेरा फेवरेट कैरेक्टर, तो मुझे विजय तेंदुलकर साहब का एक प्ले है सखाराम बाइंडर,
0: हाँ, सगा माइंडर।
1: और अपने टाइम का ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी प्ले है और आज भी ये प्ले बहुत रेलेवेंट है एंड इट इज अ वेरी इंटेलिजेंटली रिटन प्ले। उसका एक कैरेक्टर है चंपा, तो मैंने चंपा का किरदार की प्रिपरेशन करी थी, और चंपा एक ऐसा कैरेक्टर है जो अगेन वेरी रेलेवेंट टू टुडेज टाइम। अनफॉर्चुनेटली ये कैरेक्टर की जो जर्नी है, इनफैक्ट उसमें जो दोनों फीमेल एक्टर्स हैं वो फीमेल की वो जो जर्नी है वो हजारों सालों से वही रही है, आज 21वीं सदी में भी वो जर्नी उतनी ही रेलेवेंट है। और तो एक वो चीज है, और चंपा का जो कैरेक्टर है मेरे ख्याल से जिस वक्त मुझे वो कैरेक्टर मिला था और उस वक्त अपनी निजी जिंदगी में मैं जिस दौर से गुजर रही थी, तो उस कैरेक्टर ने मुझे मैंने अपने आप को जिन दरवाजों के अंदर बंद करा हुआ था इमोशनली मेंटली, उस कैरेक्टर ने मुझे उनको तोड़ के बाहर आने की हिम्मत दी थी। और पर हाँ ये होता है कि फिर आप तोड़ के कितना वाइल्डली बाहर आते हो, फिर वो तो उस वक्त तो मैं बहुत फिर भी काफी नई थी थिएटर में, तो मैं उस

0: और हमेशा कई कई ग्रुप्स ने इसको स्टेज किया है। अच्छा चलिए मैं एक ऑफ द कफ सवाल पूछता हूँ, इफ यू आर कंफर्टेबल, कि आपने इतने रोल किए होंगे, डायलॉग्स भी आपने खूब बोले होंगे, क्या आप कोई डायलॉग या कोई ऐसा करेक्टर का कोई कोई प्ले कुछ कुछ हमें हिस्सा सुना सकती हैं, अगर आपको याद हो और आप सुनाना चाहें कंफर्टेबल हो तो सुनाइए कोई, हमें रुक जाते हैं हम।
1: अभी तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आना। एक्चुअली मेरा एक जो क्योंकि चंपा मैंने बहुत अभी कुछ 10 साल हो गए होंगे करके, तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरा एक मैंने एक वेब सीरीज करी थी पर वो तेलुगु में थी, और उसका एक मैंने बहुत लंबा मोनोलॉग बोला था। बट अगेन अभी अगर आप मुझे कुछ वक्त देंगे तो शायद मैं याद कर पाऊंगी, मे बी बाय द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू, बट अभी तुरंत एकदम से मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, क्योंकि ऑल्सो दैट इज माई सेकेंड लैंग्वेज।
0: ठीक है, भले तेलुगु में सुना दीजिए, कोई बात नहीं है, हमारे तो इस रेडियो की रीच इतनी है कि सब तरफ सुनने वाले हैं, ग्लोबल रीच है, तो
1: हाँ
0: हमारे
1: जी।
0: साथ साउथ इंडिया से भी बहुत लोग जुड़े रहते हैं, तेलुगु तेलुगु वाले भी हैं, कन्नड़ वाले भी हैं, तमिल वाले भी हैं हमारे साथ,
1: बिल्कुल
0: वो
1: बिल्कुल।
0: सुनते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो आप ये बताइए जैसे एक्सपेरिमेंटल थिएटर है,
1: हाँ
0: थोड़ा
1: हाँ
0: सा ये मुझे फर्क बताइए लेमैन के हिसाब से, कि एक्सपेरिमेंटल थिएटर और ये डिवाइस प्ले जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल थिएटर होता है, इसमें क्या बेसिक फर्क है?
1: देखिए, जो ट्रेडिशनल थिएटर होता है वो तो ये होता है कि एक स्टेज है जिसके तीन तरफ दीवार है, सामने ऑडियंस बैठती है, और मतलब यू नो इट्स अ कलेक्शन ऑफ, या तो आप सिंगल आर्टिस्ट मोनोलॉग परफॉर्मेंस होती है, या फिर मल्टीकास्ट प्ले होता है, म्यूजिक का सपोर्ट होता है, साउंड होता है, लाइट होता है, एक कहानी होती है, एक स्क्रिप्ट होती है जिसको मतलब एक किसी की लिखी लिखाई, जैसे विजय तेंदुलकर साहब या मंटो या किसी का भी आपने प्ले लिखा हुआ उठा लिया और फिर आपने उस पर अपना डायरेक्शन डाल के, और फिर या फिर उन्होंने ही अगर स्क्रीन प्ले लिखा है तो उसी स्क्रीन प्ले के मुताबिक एज इट इज आपने उसको स्टेज कर दिया, कि एज इट इज आपने उसका मंचन किया, पूरा सेट भी वही और निर्देशन भी जो किताब में कहानी में लिखा है एज इट इज आपने फॉलो कर दिया तो। और या फिर ये होता है कि कई लोग उसको थोड़ा अपने हिसाब से अडेप्ट भी कर लेते हैं, तो वो एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्मेट है।
0: ठीक है ठीक है।
1: डिवाइज्ड प्ले ये होता है जिसमें आप सब कुछ फ्रॉम द स्क्रैच करते हैं, मतलब पूरी टीम बैठती है और जो है आप लोग पहले खुद ही अपनी कहानी, एक कहानी बनाते हैं, फिर खुद ही कहानी पूरी डेवलप करते हैं, और फिर उस डेवलपमेंट के बाद सब लोग साथ में बैठ के डायलॉग्स सीन्स सब कुछ साथ में लिखते हैं, और फिर उसके बाद उसको डिवाइस किया जाता है। अब डिवाइस में आप एक नॉर्मल प्ले की तरह भी आप उसको एनेक्ट कर सकते हैं, या उसमें बीच में कुछ आप सजेस्टिव डिवाइसेस डाल सकते हैं कनेक्शन के लिए, कुछ प्रस्पेक्टिव डालने के लिए। इसमें डिवाइस्ड प्ले में वो थोड़ा सा डिवाइस प्ले को आप ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्मेट में भी अडेप्ट कर सकते हैं, या उसको आप एक थिएटर सेटअप से बाहर निकाल के अलग तरीके से एक अलग तरीके के वेन्यू में जाके ऑडियंस के बीच में खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो वो हो गया डिवाइस्ड प्ले। एक्सपेरिमेंटल, तो डिवाइस प्ले थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटल थिएटर के अंदर ही आता है। एक्सपेरिमेंटल थिएटर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल थिएटर जो है इट कट्स ऑफ ऑल द बाउंड्रीज ऑफ द थिएटर, फोर्थ वॉल उसमें नहीं होती, मतलब उसमें, और उसमें जो मेजर इंटरेक्शन होता है इट इज एन इंटरेक्शन, इट इज एज मच अ पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑडियंस एज मच एज द परफॉर्मर्स। और एक्सपेरिमेंटल थिएटर में काफी एक्सपेरिमेंटल थिएटर्स जो है वो सिंगल आर्टिस्ट परफॉर्मेंसेस भी होते हैं, और उसमें ऑडियंस का पार्टिसिपेशन बहुत मेजर रहता है एक्सपेरिमेंटल थिएटर। एंड अक्सर एक्सपेरिमेंटल थिएटर्स जो हैं वो सोशली रेलेवेंट, सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफिक पॉलिटिकल थीम्स पे होते हैं, जो अवेयरनेस के लिए यूज करे जाते हैं, या किसी टॉपिक को सेंसिटाइज करने के लिए यूज करा जाता है एक्सपेरिमेंटल थिएटर।
0: तो नुक्कड़ नाटक भी इसी में आते हैं एक्सपेरिमेंटल थिएटर में,
1: आप कह सकते हैं कि ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि वो एक्सपेरिमेंटल थिएटर के अंदर आ सकता है, उसकी अम्ब्रेला के अंदर में आ सकता है।
0: अच्छा चलिए मैं एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछता हूँ, कि जब एक थिएटर आर्टिस्ट होता है तो उसके अंदर से ऐसा क्या ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब वो इंसान के तौर पर कैसे बदल जाता है, क्या उसके कुछ थिंकिंग में या उसके बिहेवियर में।

0: या उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में कोई बदलाव आ जाता है, एक जो नॉन थिएटर वाला पर्सन है उससे कुछ कुछ आप डू यू फील कि ऐसा कुछ होता है?
1: बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले एक बहुत ही एक बहुत ही सुपरफिशियल लेवल का एक्सप्लेनेशन दूंगी, एग्जाम्पल दूंगी, और उसके बाद में थोड़ा डीप में जाऊंगी. तो जब मैंने फॉर एग्जाम्पल जब मैंने विनय वर्मा के यहाँ पे पहला वर्कशॉप किया था, तो वो एक एक्सरसाइज कराते थे मिरर के अंदर देख के. तो उस एक्सरसाइज में जब उन्होंने बोला कि अब अपने अपनी शक्ल इस मिरर में देख के जो है फलाना एक्सप्रेशन दो, मैं नहीं दे पाई. और वो बहुत बेसिक, कोई कॉमन एक ऐसे बहुत बेसिक जेनरिक एक्सप्रेशन है जो हर कोई दे सकता है, पर वो मैं नहीं दे पाई. और खाली वो मैंने, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम था. और फिर मैंने जब, तो मैंने कई वर्कशॉप जब उस दौरान करे थे, तब मुझे ये लगा कि हाँ, मतलब मेरे फेस का ये हिस्सा तो चलता ही नहीं है. और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं, ये हम सबकी होती है, क्योंकि
0: अच्छा
1: हमारे फेस पे बहुत सारी ऐसी, अब हमारा जो फोरहेड है, हम अक्सर आप देखेंगे अब उसका क्या काम है, पर एक्चुअली उसके भी मसल्स आपको एक्सप्रेशन देने में काम आते हैं. हमारे बहुत सारे फेस पे ऐसे मसल्स हैं जिनका हम यूज ही नहीं करते. तो जो थिएटर एक्टर्स हो, तो थिएटर में आपको एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं जिससे आप उन मसल्स को यूज कर सकते हैं.
0: ओके
1: तो अब ये एक नॉर्मल इंसान, हमको नहीं पता है, तो हमारे तो वो मसल्स डेड हो जाते हैं. तो जब आप पहली बार उनकी एक्सरसाइजेस करते हो, तो आपको बहुत दर्द होता है वहां पे, तो पता लगता है कि अच्छा, यहाँ पर भी एक्चुअली कुछ है. तो ये तो बहुत सुपरफिशियल लेवल का मैंने एक एग्जांपल दिया है. लेकिन डीपर लेवल पे अगर बात करें, तो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तो हम अपने आपको बाउंड्रीज में बंद कर लेते हैं, मेंटल बाउंड्रीज बना लेते हैं. तो थिएटर आप देखेंगे, तो कोई भी एक थिएटर का, आपका थिएटर पर्सनैलिटी बैठा होगा और एक कोई नॉर्मल कॉमन मैन बैठा होगा, तो आप देख सकते हैं कि थिएटर आपकी बॉडी लैंग्वेज खोल देता है. आपकी जो झिझक होती है ना, चाहे वो फिजिकल झिझक हो, वो मेंटल झिझक हो, इमोशनल हो, आपकी वो जो बेड़ियां हैं वो तोड़ देता है. तो इट इज मच मोर इजी फॉर यू टू एक्सप्रेस एंड बी कॉन्फिडेंट. इट मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन. हमको थिएटर में सिखाया जाता है कि आपकी जो बॉडी है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका आप इस्तेमाल करते हो अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बॉडी मोटी है, पतली है, काली है, गोरी है, क्या है. तो अब जैसे ना, विनय वर्मा जी हमसे एक एक्सरसाइज कराते थे, जो नील कमल की प्लास्टिक चेयर देखी है आपने, वो टिपिकल, तो जिसके नीचे चार पाए होते हैं, और चारों पायों में कोई बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता
0: ठीक है
1: है ना. तो उन्होंने क्या करते हैं, वो आपको बोलेंगे कि आप इस चेयर के नीचे से निकलिए. आप ना अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना पैरों का कर सकते हैं, और आपका जो, आप जब इसके नीचे से पार होंगे, तो आपकी बॉडी कहीं टच नहीं होनी चाहिए चेयर पे.
0: अरे बाप रे,
1: अगर
0: अच्छा
1: टच हो गई, तो आपको दोबारा करना पड़ेगा, और आपको इस तरीके से रेंग के जाना है, और आपको कुर्सी के अंदर जाके बाहर निकल के, और फिर दोबारा अंदर जाके बाहर निकल के, पूरा एट बनाना है कुर्सी के इर्द गिर्द.
0: हो
1: आप कितना भी आपका साइज हो, कुछ भी हो, आपको करना है, और टच नहीं होनी चाहिए बॉडी. तो उन्होंने ये चीज सिखाया, जो मैं अपने लाइफ में हर चीज में इम्प्लाई करती हूँ, कि हम अपनी जिंदगी को अपने दिमाग से जीते हैं, अपने फाइट अपने दिमाग से लड़ते हैं, आपकी बॉडी नहीं लड़ती है. आपने कई मूवीज में भी देखा होगा कि जो सोल्जर होता है ना, वो फाइट अपने बॉडी से नहीं करता है, वो अपने दिमाग से फाइट करता है. और यही जो चीज है वो हमने सीखी. तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं थिएटर में. आप थिएटर इज टीचेस यू अ वे ऑफ लाइफ, थिएटर टीचेस यू द वे यू लुक एट लाइफ, थिएटर ऑल्सो टीचेस यू द वे यू परसीव लाइफ. पर ये आपके ऊपर है कि इन सब चीजों को सीख के आपको उनको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है कि नहीं, वो आपके ऊपर है.
0: ब्यूटीफुली, बहुत बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, मजा आ गया। लेकिन आपने बहुत सारी गहरी बातें भी कह दी हैं कि एक एक आम इंसान में, आम क्या मतलब, एक नॉर्मल इंसान में और एक थिएटर आर्टिस्ट में किस तरह का फर्क आता है, क्योंकि वो मेंटली भी उसका लेवल डिफरेंट हो जाता है, फिजिकली भी डिफरेंट हो जाता है, फेशियल एक्सप्रेशंस, अपने अंदर की बातें बाहर भी अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू वो ले आता है। मजा आ गया सारी बातें सुन के। तो चलिए हम यहाँ रुक के एक गाना सुन लेते हैं इस खूबसूरत बातचीत के साथ ही, और
1: बिल्कुल
0: फिर आगे बातचीत करते हैं।

0: हाँ, वेलकम बैक तरुषा जी। अब आपने सीनियर थिएटर स्टारवर्ड्स के साथ काम किया है। पीयूष मिश्रा एक बहुत बड़ा नाम है, उनका गगन दमामा बाजो, ये मेरे ख्याल में एक सिख वो है,
1: भगत सिंह के ऊपर है।
0: भगत सिंह के ऊपर है। तो इसको स्टेज करना कैसा अनुभव रहा, वो भी उनके सामने, पीयूष मिश्रा जी के सामने, इसके बारे में क्या कहेंगी आप?
1: हाँ, ये जरूरत हमसे हो गई है कि कुछ बहुत ऐसे महारथी एक्टर्स के प्लेज हमने उन्हीं के सामने करने की जरूरत करी। पता नहीं किस जोश में थे कि हमने कर दिया, पर खैर, पर मजा आया था। तो गगन दमामा बाजो आई थिंक हमारा सेकंड बड़ा प्रोडक्शन था, उससे पहले
0: अच्छा।
1: हमने चाणक्य किया था। एक्सपीरियंस तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था। हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस था हमारे प्रोडक्शन पे, थोड़ा बड़े लेवल का प्रोडक्शन था। हमें नहीं पता था कि पीयूष जी आ पाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, पर हमने ऐसे हवा में अंधा तीर मारा था और वो लग गया। और पीयूष जी फ्री थे उस टाइम पे और उन्होंने कहा, हाँ मुझे बहुत खुशी होगी, मैं आऊंगा। और फिर वो आए तो वो उस प्ले में मैंने नाटक, मतलब मैंने पार्ट नहीं लिया था, वो मैंने प्रोड्यूस किया था, हमने प्रोडक्शन करी थी।
0: अच्छा।
1: और पीयूष जी को भी काफी पसंद आया था वो प्ले। और जो सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगता है कि जब हम जिनके या तो राइटर्स, जिन ऑथर्स के नाटक हम करते हैं या जिन एक्टर्स के नाटक हमने करे हैं, और जब वो खुद वहां मौजूद होते हैं ऑडियंस में और जब वो प्ले देखते हैं, तो उसके हर प्ले के बाद में हमारी पूरी टीम बैठती है उनके साथ जिनका वो
0: अच्छा,
1: नाटक होता है,
0: फिर
1: उनसे
0: बातचीत
1: फीडबैक के
0: करते
1: लिए,
0: हो।
1: फीडबैक के लिए
0: ओके
1: कि उनको
0: ओके।
1: क्या कमियां लगी, हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो वो क्या होता है ना, वो जो होता है ना, वो होता है कि भगवान आपको खुद स्वयं अपने हाथ से प्रसाद दे रहे होते हैं। तो वो तो
0: बिल्कुल
1: जितना बटोर सकते हो आप बटोर लो, वो एक अपने अंदर एक 2 घंटे की मास्टर क्लास हो जाती है। तो और पीयूष जी तो ऐसे हैं कि मतलब ना, वो तो इतना अच्छा बोलते हैं, इतने अच्छे, यू नो, उनका इतने अच्छे स्पोक्स पर्सन है कि उनका तो लगता है कि वो बैठ के, अगर चाय पे भी बैठ के बातें कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो कोई कविता कह रहे हैं।
0: सही बात।
1: तो
0: ऐसे ही आपने चाणक्य भी किया।

0: रिश्वतबा के सामने, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के सामने मंटो किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और नंदिता दास का तो वो मंटो तो इनकी फिल्म है, बहुत ही शानदार है, मैंने भी देखी है वो पिक्चर, तो
1: हाँ जी,
0: जो
1: तो
0: मंटो पे बनाई है, ऑटोबायोग्राफी टाइप है, बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, तो हमने एक्चुअली मंटो नाटक जो है वो, तो मेरी जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है मेरी आर्ट लाइफ इवेंट्स, तो उसके तहत हमने मूवी प्रमोशन किया था मंटो का, जिसमें नवाजुद्दीन
0: ओके,
1: सिद्दीकी और नंदिता आए थे। तो एज
0: अच्छा,
1: पार्ट ऑफ दैट इवेंट हमने मंटो का नाटक स्टेज किया था उनके सामने, एज पार्ट ऑफ द प्ले, एज एन ओड टू मंटो हिमसेल्फ। तो हाँ, और वो हमारा गुड लक, और वो इतना बेहतरीन प्रोडक्शन था, मतलब आई एम वेरी प्राउड ऑफ पुटिंग अप दैट एक्ट टुगेदर। एंड नवाजुद्दीन, मुझे अभी भी याद है कि मैं स्टेज के साइड में खड़ी थी और नवाज बैठे हुए थे सामने, और मैं सिर्फ उनको देख रही थी, उनकी आंखों में जो चमक थी। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप इस प्ले की वीडियो और पिक्चर्स मुझे भेज पाएंगी, ये मेरा ईमेल आईडी है। मैंने कहा श्योर सर, और फिर हमने उनको मतलब भेजा, और उन्होंने फिर काफी टीम के साथ आई थिंक आधा घंटा बिताया इवेंट के बाद में, और उनको बहुत बहुत पसंद आया हमारा। काफी ऑब्वियसली हमने आर्टिस्टिक लिबर्टी ली थी थोड़ी, हमने अपने ही नजरिए से उसको प्रेजेंट किया था, जो विजुअली उनको जो उनको बहुत पसंद आया। तो उनसे ये सुनना, तो फिर मतलब वो एक बहुत एक अपने अंदर अपने आप में बहुत अच्छी वो थी।
0: नहीं, ये पिक्चर तो मंटो मैंने भी देखी है, नवाजुद्दीन और नंदिता दास की, बहुत ही पावरफुल पिक्चर थी, बहुत बहुत अच्छी मूवी थी,
1: जी
0: मजा आ
1: हाँ,
0: गया था, वाह। और मंटो का तो करेक्टर वैसे भी अपने आप में इतना डाइवर्स है, कलरफुल है और
1: बिल्कुल
0: कंट्रोवर्शियल है, सभी कुछ है।
1: बिल्कुल
0: तो चलिए चलिए, तो अब ऐसा करते हैं कि यहां रुक के हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं और कोई मंटो की फिल्म का ही कोई गाना सुनेंगे और फिर आगे चलते हैं,
1: बिल्कुल
0: ठीक है ना?

0: हम थोड़ा सा आपकी NIFT निफ्ट की लाइफ पे आते हैं। निफ्ट हैदराबाद में आप थिएटर सिखा रही हैं, टीचिंग और परफॉर्मिंग में इनमें क्या फर्क है? आप खुद परफॉर्म भी कर रही हैं और वहां टीच भी कर रही है, तो दोनों में कैसा फर्क आता है आपको?
1: फर्क तो बहुत है। अब जैसे खुद पढ़ के एग्जाम देना हुआ और फिर एक बार क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाना, तो फर्क तो दोनों में होता है। पढ़ाई दोनों में ही करनी पड़ती है, लेकिन एक में पास होने का जो पूरा ओनस है वो हमारे खुद के ऊपर होता है, और एक में होता है कि सामने वाला बच्चा कितना पढ़ के कितना निकाल लेगा। तो एक बेसिक फर्क तो वो होता है, लेकिन हाँ, मतलब जब थिएटर में आप जब परफॉर्म कर रहे होते हो तो अपने किरदार तक पहुंचने की जर्नी हमारी खुद की होती है। अपनी खुद की तैयारी जो है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, उस किरदार की, वो खुद की होती है। इट इज अ पर्सनल जर्नी दैट यू हैव टू ट्रेवल विद टू रीच योर कैरेक्टर एंड देन टू डू जस्टिस एंड डिलीवर योर कैरेक्टर ऑन द स्टेज एज पार्ट ऑफ द एंटायर प्ले। जबकि और एक ये भी होता है कि जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो तो वो एक एक मैजिकल मोमेंट होता है जिसमें आप खुद प्रेजेंट होते हो। वो आपका मोमेंट होता है जो आपसे कोई नहीं ले सकता, वो आपका होता है। लेकिन जब आप टीच कर रहे होते हैं थिएटर, तो फिर ये है कि मैं आई एम अ फैसिलिटेटर टू द स्टूडेंट्स, और मैं उनको सिर्फ टेक्निक सिखा सकती हूँ, पर उस टेक्निक को यूज कैसे वो बच्चे कर पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, कहाँ कहाँ कर पा रहे हैं, वो उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, कितना सक्सेसफुली या अनसक्सेसफुली वो कर पा रहे हैं, वो उनका जर्नी है। वो डिफरेंस एक है।
0: अच्छा, चलिए मैं थोड़ा सा एक बहुत ही एक ऑफ द कफ सवाल पूछ रहा हूं, और हमारी ऑडियंस होती है तरह तरह की, और अगर कोई ऑडियंस में ये जानना चाहे कि वो थिएटर से जुड़ना चाहता है और थिएटर मतलब उसका मन तो है थिएटर से जुड़ने का, तो उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, किस तरह से? आप चूंकि एक थिएटर पढ़ाती भी हैं, सिखाती भी हैं, तो उसके दिमाग में किस तरह से उसको अप्रोच करना चाहिए अगर वो थिएटर लाइन में आना चाहे तो?
1: देखिए, सबसे पहले तो उसको ये क्लियर होना चाहिए कि उसको किस तरीके का थिएटर करना है। सबसे पहले तो लैंग्वेज आपकी क्या है, तो क्योंकि हर शहर में कुछ थिएटर ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंग्लिश थिएटर करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हिंदी के करते हैं खाली, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों के करते हैं और पर वो बहुत कम होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रीजनल लैंग्वेजेस के करते हैं। तो आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है, और उसके अंदर फिर जब आप अपना लैंग्वेज आपका एस्टेब्लिश हो जाए कि ठीक है इस लैंग्वेज में मुझे करना है, फिर आप जाकर रिसर्च करना चाहिए कि कितने कौन उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए कितने ग्रुप्स हैं। फिर ग्रुप्स का थोड़ा स्टडी करना चाहिए, या उसमें जो कोई अगर वर्कशॉप कर रहा है तो उनका थोड़ा फीडबैक, क्योंकि टीम डायनामिक्स से भी बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर कहीं पे आपको दिख रहा है कि कोई वर्कशॉप हो रही है और वर्कशॉप एक प्रोडक्शन में एंड हो रही है, तो देन उसमें क्या होता है कि आपको ये सीखने का भी मौका मिलता है, और सीख के फिर उसको उसका जो है आपको मंच पे जाने का भी मौका मिलता है उस पे व्हेन इट एंड्स। तो काफी प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप्स होती हैं, तो अगर आपको बहुत जल्दी है मंच पे जाने की तो आप ऐसे वर्कशॉप्स भी कर सकते
0: नहीं,
1: हैं। बट
0: ये अच्छा तरीका बताया आपने, क्योंकि

0: का भी होता है और बहुत डिटेलिंग का भी होता है, तो ये कैसे करती है, इसको कैसे आप मैनेज करते हो?
1: एक्चुअली उसमें तो मैंने एक्चुअली बैक स्टेज प्रोडक्शन में मैंने काफी काम किया है स्टार्टिंग शुरुआती दौर में. और आई थिंक हर थिएटर एक्टर को मेरे हिसाब से बैक स्टेज में काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खाली स्टेज पे जाके एक्टिंग करना ही थिएटर नहीं होता है. थिएटर के बहुत एस्पेक्ट्स होते हैं. अगर आप थिएटर में काम कर रहे हैं तो, और अगर प्रोडक्शन का कोई नहीं आया है तो आप मट्टी वाले स्टेज पे तो नहीं जाएंगे, तो झाड़ू भी खुद ही मारनी पड़ती है, फिर खाना चाय पानी भी खुद ही अरेंज करना पड़ता है, कॉस्ट्यूम भी खुद ही करनी पड़ती है, मेकअप भी खुद ही करना पड़ता है. अनलेस फिर आप वो बहुत बड़े लेवल के आप प्लेस कर रहे हैं तो एक अलग बात होती है, बट यू शुड बी रेडी एंड ओपन टू गेट डाउन एंड डू द डर्टी वर्क ऑल्सो. तो वो आपको करना पड़ता है. पर यह है कि तो जब आप वहां से शुरू करते हैं तो फिर आपको पूरी जर्नी पता होती है कि ये भी चैलेंजेस होंगे, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं. और फिर एक ये चीज है कि मेरी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, तो उस वजह से मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस बैकएंड का इसलिए भी है कि ठीक है, मतलब लाइटिंग का ये, साउंड का ये और प्रोडक्शन का ये. तो हाँ, चैलेंजेस तो बहुत होते हैं प्रोडक्शन खड़ा करने के लिए, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, सबके टाइमिंग्स अलग हैं, सबका स्केड्यूल अलग रहता है. तो हर किसी को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, साउंड वालों को लेके आना, लाउड लाइट वालों को, और टू मेकिंग श्योर कि सब रेडी सेम टाइम पे रिहर्सल के लिए आ रहे हैं और सब सिंक में चल रहा है और सब ने अपना काम टाइमली करा है. तो वो एक बहुत बड़े ग्रुप को एक साथ लेके आना और सीमलेसली उसको काम कराना, वो तभी होता है जब वो सिर्फ थिएटर में उतना सीमलेसली हो सकता है, क्योंकि थिएटर बहुत डिसिप्लिन्ड फील्ड है. तो वो चीज है, बट हाँ, वो मुश्किल तो बहुत होता है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट सबको कोऑर्डिनेट करके सीमलेस चलना होता है, तो डिफिकल्ट तो वो काफी है.
0: तो चलिए अब थोड़ी सी हम बात आपकी हीलिंग की करना चाहेंगे। अब थोड़ा सा रुख बदलते हैं और स्टेज हमने काफी डिस्कस कर लिया। अब ये बताइए कि आप ट्विन हार्ट मेडिटेशन आपके जीवन में कैसे आया, और थोड़ा मुझे हमें समझाइए कि ट्विन हार्ट मेडिटेशन होता क्या है, इसमें क्या करते हो आप, क्या क्या है इसके पीछे सारी कहानी।
1: बिल्कुल. सो ट्विन हार्ट मेडिटेशन जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड को मास्टर चुआ कोक सुई ने दिया है. ये मॉडर्न वर्ल्ड के वो एक हीलर थे फिलीपींस से, हु इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न प्राणिक हीलिंग टू द मॉडर्न वर्ल्ड. मैं ये कहूंगी, मेरा मानना यह है कि प्राणिक हीलिंग बहुत पुराने एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, बीच में कहीं शायद लुप्त हो गया था, एंड देन ही इज द वन हु ब्रॉट इट टू द मॉडर्न वर्ल्ड. प्राणिक हीलिंग, तो प्राणिक हीलिंग इज एन एनर्जी बेस्ड हीलिंग लाइक रेकी, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है. तो रही बात प्राणिक हीलिंग की, तो ट्विन हार्ट मेडिटेशन प्राणिक हीलिंग का पार्ट है और सेम कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है. ट्विन हार्ट्स का मतलब होता है कि हमारे अंदर दो हार्ट होते हैं. एक हार्ट तो हमारा जो हमारी फिजिकल बॉडी में जो हार्ट है, हार्ट चक्रा, सेंटर ऑफ आर चेस्ट, दैट इज वन, दैट इज आर हार्ट. सेकेंड हार्ट इज हमारा जो क्राउन चक्रा होता है सर में ऊपर. तो क्राउन चक्रा इज द सेकेंड हार्ट, विच इज द हार्ट ऑफ गॉड. तो ट्विन हार्ट मेडिटेशन में हम हमारा हार्ट चक्र और क्राउन चक्र पे फोकस करते हैं, विच ओपन्स अ ह्यूमन बीइंग टू द डिवाइन कॉन्शियसनेस या यूनिवर्सल एनर्जी. तो हम जब उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर जो मेडिटेशन है वो एक बहुत ही, ट्विन हार्ट मेडिटेशन जो है उसके बहुत बेनिफिट्स हैं, क्योंकि जब आप इन अपने अपने हार्ट और गॉड के हार्ट से आप कनेक्ट करते हो तो इट्स अ वेरी डायरेक्टेड एंड अ वेरी फोकस्ड मेडिटेशन, जिसमें आप एम्पैथी, कंपैशन, लव, आप इन तरीके की पॉजिटिव चीजों पे आप फोकस करते हैं.
0: चलिए, तो बहुत आपने अच्छी तरह से बता दिया कि यही मैं सोच रहा था, ट्विन हार्ट होता क्या है। तो एक तो फिजिकल हार्ट हो गया और एक आपका जो ब्रेन के पीछे हार्ट है, उसके चक्रा है,
1: क्राउन
0: क्राउन
1: चक्र, क्राउन चक्र.
0: चक्र को। चलिए, तो यहाँ रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर थोड़ा सा आपको, अभी ये ऑलमोस्ट बकौल अमीन सयानी हम आखिरी पायदान पर आ गए हैं, और गाना सुनने के बाद आपसे एक सवाल और पूछूंगा बस
1: बिल्कुल.
0: आपसे।

0: हाँ तो तर्षा जी, आपने वेब सीरीज में काम किया, थोड़ा सा उस एक्सपीरियंस के बारे में बता दीजिए हमें कि कैसा रहा, स्टेज और कैमरा एक्टिंग में क्या डिफरेंस है, कुछ ब्रीफ में बताइए हमें कैसा लगा आपको वेब सीरीज का एक्सपीरियंस कैसा रहा।
1: बिल्कुल. तो मेरा पहला जो वेब सीरीज था वो अगर आपको एक्टर साउथ इंडियन एक्टर नागार्जुना मालूम होगा, जिन्होंने काफी हिंदी
0: हाँ
1: मूवीज में भी काम किया है, तो उनका प्रोडक्शन हाउस है अन्नपूर्णा स्टूडियो. तो उनके प्रोडक्शन का था वो, और उसमें मेरा एक कुछ 10 एपिसोड का वेब सीरीज था, जिसमें मेरा अराउंड 8 एपिसोड्स में मेरा काफी अच्छा रोल था, काफी लेंदी रोल था. एंड इट वॉज अ कॉमेडी रोल दैट आई गॉट टू प्ले. कैमरा एक्टिंग करना कभी भी मेरा फोकस नहीं था, क्योंकि स्टेज वॉज ऑलवेज माई होम, बट एक अपॉर्चुनिटी जबरदस्ती मेरी झोली में आके पड़ गई थी. तो फिर मैंने लिया और मैंने एक्सपीरियंस किया. एंड आई थिंक जब मैं वहां गई तो मुझे कैमरा एक्टिंग का कोई आइडिया नहीं था. कैमरा एक्टिंग की अलग ही वोकेबुलरी होती है, थिएटर की वोकेबुलरी अलग होती है, कैमरा एक्टिंग की वोकेबुलरी अलग होती है. मुझे फील्ड नहीं पता था क्या होता है, पायलट नहीं पता था मुझे क्या होता है, और बहुत सारी चीजें थी जो नहीं पता थी, जो वहां जाके मैंने सीखी. बट मेरा वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं काफी एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ काम कर रही थी. दे आर सीजनड एक्टर्स जो तेलुगु मूवीज में बहुत काम कर चुके हैं, और मेरा पहला कैमरा एक्सपीरियंस वो लोग तेलुगु ओरिजिन के, मैं हिंदी ओरिजिन की. तो मेरे लिए ये भी प्रेशर था कि मेरी तेलुगु की गलती की वजह से उनको रीशूट ना करना पड़े. तो हमारे बार बार पता लगा, बार बार टेक्स हो रहे हैं. तो मैंने जो है मतलब, तो ये हुआ था कि मतलब मैंने इतनी इतना 3 महीना तेलुगु के डायलॉग्स इतना मांझ लिए थे कि थैंक गॉड कि मेरी वजह से किसी को रीटेक नहीं लेना पड़ा था. पर
0: तो
1: वो मेरा
0: आप
1: एक्सपीरियंस.
0: तेलुगु तेलुगु तेलुगु बोल लेते हो
1: हाँ, मैं तेलुगु बोल लेती हूँ. आई एम मैरिड टू अ
0: वहाँ?
1: तेलुगु फैमिली. तो हाँ, तो इसलिए उस वजह से भी मुझे थोड़ा सा इजी रहा था तेलुगु. तो बट इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, और मेरी जो टीम थी दैट वॉज वेरी सपोर्टिव एंड वेरी एनकरेजिंग. तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं नई हूँ. एंड आई थिंक मेरा थिएटर की जो तैयारी थी ना, थिएटर बैकग्राउंड रियली हेल्प मी इन डिलीवरिंग द वर्क दैट आई वॉज सपोज टू डिलीवर इन द वेब सीरीज. तो आई थिंक वो थिएटर की तैयारी बहुत काम आती है. बाकी फर्क ये होता है थिएटर और कैमरा का, कि थिएटर में आपको थोड़ा लाउड रहना पड़ता है फिजिकली और वोकली, कैमरा में आपकी वो हल्की सी फूंक भी पकड़ लेता है.
0: सही बात।
1: और थिएटर में ये है कि ऑडियंस आपके साथ ही रहती है, मतलब आपको ऑडियंस को, सॉरी, कैमरा में ऑडियंस आपके साथ रहती है, क्योंकि कैमरा आपको फॉलो करता है. लेकिन आप स्टेज पे जब होते हो तो आपको ऑडियंस को अपने साथ लेकर चलना पड़ता है.
0: लेकर चलते,
1: तो
0: बहुत
1: वो एक
0: प्यारी
1: फर्क
0: बात
1: होता है.
0: है। अच्छा, चलते चलते अगर वो तेलुगु डायलॉग याद आ गया हो तो बता दीजिए।
1: हाँ ओके, मेरे को सिर्फ 2 लाइनें याद आई हैं अभी, तो मैं वही सुनाती हूँ.
0: ओके ठीक है।
1: तो कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि मैं ऊपर नेबर आंटी हूँ, और मेरे नीचे एक फैमिली रहती है, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली है, और उनका जो बड़ा बेटा है ही इज डेटिंग अ तेलुगु फिल्म एक्ट्रेस जिसका नाम है आयरा. और क्योंकि मैं बहुत बीबीसी ब्रॉडकास्ट जैसा गॉसिप मॉन्गर हूँ, तो मुझसे छुपा के रखा है, मेरा नाम है सुशी आंटी उस मूवी एक्चुअली, उस वेब सीरीज में. तो मुझसे छुपा के रखा है कि सुशी आंटी को मत बताना, वो पूरी कॉलोनी में चिपका देगी. सो आयरा उनके घर पे फैमिली का कोई ऐसा ट्रेडिशन फेस्टिवल होता है, तो आयरा उनके घर पे आके लंच करने आई होती है. तो मुझे पता लग जाता है, और मैं उनके घर में बेल बजा के घुसने की कोशिश कर रही होती हूँ, जब उस बेटी लड़के की जो मम्मी है वो मुझे कह रही होती है कि अभी नहीं, बाद में आना. तो मेरा डायलॉग है कि अच्छा, मतलब आयरा आई है, मैंने देखा कितनी गोरी है ना, एकदम चमकती है. तो ऐसा डायलॉग है. तो मैं उससे बोलती हूँ कि आयरा आयरा वच्चिंदी चूसना ఎంత మరుస్తుంది. तो मतलब कि आयरा आई है, मैंने देखा कितनी चमकती है ना उसकी स्किन.
0: हाँ समझ
1: दैट
0: गया
1: इज अ
0: समझ
1: डायलॉग.
0: गया। ओके
1: तो
0: वेरी गुड, चलो मजा आ गया, वंडरफुल। तो तरुषा जी, आज की बातचीत सच में बहुत दिल से जुड़ी रही। आपकी कहानी ये बताती है कि लाइफ पे एक ही रास्ता नहीं होता, पैशन बदल सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है, लेकिन अगर इंटेंट क्लियर हो तो जर्नी हमेशा मीनिंगफुल रहती है। थिएटर हो या हीलिंग, स्टेज हो या स्ट्रीट, आपका काम ये याद दिलाता है कि एक्सप्रेशन भी थेरेपी हो सकता है। तो तर्षा जी, आपका आज हमारे से जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और शुक्रिया। हम दुआ करते हैं कि आप इसी तरह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती रहे और नए नए रास्ते तलाशती रहे और उन पे फतेह हासिल करती रहे। थैंक यू वेरी मच।
1: थैंक यू सो मच. थैंक यू टू यू एंड योर स्टेशन, एंड ऑल द बेस्ट टू योर लिसनर्स.
0: तो दोस्तों मैं आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी और एक नए सफर के साथ। तब तक टेक केयर, स्टे माइंडफुल एंड कीप लिसनिंग जिंदगी के रंग गीतों के संग। थैंक यू।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ जिंदगी के रंग गीतों के संग के इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं दिव्या भारती। दिव्या भारती जी का जन्म 25 फरवरी 1974 में हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की ऐसी अभिनेत्री थीं जिनकी अभिनय विविधता ने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे आकर्षक युवा अभिनेत्री होने का गौरव दिया। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, 90 की दशक से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दिव्या ने कई बेहद सफल फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़, तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं, तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: 1992 से लेकर 1993, यानी कि सिर्फ एक साल में ही दिव्या भारती ने मात्र 19 साल की उम्र में 7 हिंदी फिल्में और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की। इतने कम समय में इतनी सारी फिल्मों करने का उन्हें ये उपलक्ष्य हमेशा दिया गया। लीजिए सुनिए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

शाम चुराने आए चमचा चिलमचा कोर्च रैया चू चू चू चल रहा है भैया चू चू का मुरब्बा भैया चू चू का मुरब्बा टकला टकलू टाक तवोरी टकिया टकी

सुने सरसाए, सांप सुने सरसाए, साए साए सुरमा सा सा संग समाए, समय सबक समझाए, खोखा खोखा जी मेरा खोखा खोखा है। फांसी फंदा फुसकी फांके फुंगी फन फैलाए, फिरते फिरते फेरा फेरी फेरे से

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। हालांकि दिव्या भारती को अपने पूरे करियर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को ढूंढ ही निकाला और बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाया। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना?
1: टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में आज की कलाकारा हैं हेलन। जी हाँ, हेलन जो बहुत प्रसिद्ध डांसर रही, एक्ट्रेस रही हमारी हिंदी फिल्मों की। हेलन का असली नाम है हेलन एंड रिचर्डसन खान। जी हाँ, हेलन दरअसल एक क्रिश्चियन हैं। आइए उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत सुनते हैं।

0: श्रोताओं, हम स्वागत करते हैं महेंद्र गौतम जी का जयपुर से। गौतम भाई, जरा ये बताइए अदाकारा हेलेन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: शी वॉज अ वेरी गुड डांसर एक्चुअली। उनकी केमिस्ट्री जो आयशा भोसले के साथ में है और उनके जो गाने हैं वो आपको वैसे ही थिरकने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो वो उनके गाने अपने आप में बहुत मजेदार गाने होते थे। आप थिरकते थे उनसे, आज भी थिरक उठते हो।
0: बेहतरीन बेहतरीन गौतम भाई, थैंक यू सो मच गौतम, आपका बहुत बहुत आभार।
1: थैंक यू।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

हेलन का जन्म 21 नवंबर 1938 को बर्मा में हुआ। उनके पिता की मौत वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हो गई, तभी उनकी फैमिली भारत में शिफ्ट हो गई। यहीं पर हेलन का करियर बॉलीवुड फिल्मों में शुरू हुआ। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

बड़ी ही मजेदार बात है कि एज एक्ट्रेस हेलन और उनके लिए गाना गाने वाली हमारी प्रसिद्ध गीत गायिका आशा भोसले जी की बेहद गहरी दोस्ती थी। आशा भोसले जी ने हेलन के करीब करीब सारे गाने गाए हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

हेलन ने सलीम खान जी से शादी की, जिसकी वजह से वो सलमान खान जी की फैमिली से जुड़ी। यूं देखा जाए तो सलमान खान उनके सौतेले बेटे हैं, बट दोनों के बीच बेहद प्यार है। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

हेलन को सबसे पहला बढ़िया ब्रेक हावड़ा ब्रिज नाम की मूवी में मिला, जिनका बहुत ही फेमस गाना है, बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, मेरा नाम चिंग चिंग चू। आइए दोस्तों सुनते हैं यही गीत।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि हेलन को ऐश्वर्या राय और अक्षय कुमार के साथ साथ पद्म श्री अवार्ड्स के लिए भी चुना गया। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

ये मेरे साथ, मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। मैंने जब दरवाजा खोला ना भैया, तो उसकी आंखों में आंसू थे, सांसों में तेजी थी, दिल में बेबसी थी। परली ने पहले बताया ही नहीं कि दरवाजे में उसकी उंगली फंसी थी।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: आइए दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अल्फाज से एहसास तक के इस बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम में। हमारी रेडियो दोस्त आरती रॉय जी लेकर आई हैं एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता अल्फाजों का, गजलों का। गजल सिर्फ शब्द नहीं होते दोस्तों, एहसासों की एक खूबसूरत दुनिया होते हैं जहां मोहब्बत, यादें, खुशी और दर्द सब अपनी आवाज पाते हैं। तो आइए कुछ देर के लिए हर फिक्र को पीछे छोड़ दें और डूब जाएं दिल को छू जाने वाली चुनिंदा गजलों के साथ जो आरती जी हमारे लिए लेकर आई हैं। शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को।
1: शाम महके तेरे तसव्वुर से।
2: एक शजर की तरह रह गुजर में ठहरा हूँ मैं, एक शजर की तरह रह गुजर में ठहरा हूँ। थकन उतार के तू किस तरफ रवाना हुआ, ये हवा सारे चिरागों को उड़ा ले जाएगी, ये हवा सारे चिरागों को उड़ा ले जाएगी। रात ढलने तक यहाँ सब कुछ धुआं हो जाएगा। नमस्कार, आदाब और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील के साथ। मैं हूं आपकी हमनवर, आपकी रेडियो दोस्त भारती रॉय। दोस्तों, शो अल्फाज से एहसास तक में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका एक पैर तो लेबोरेटरी के माइक्रोस्कोप पर रहा, तो दूसरा पैर कथक के घुंघरुओं और संगीत के सुरों पर। कैंसर बायोलॉजी जैसे बहुत गंभीर विषयों पर रिसर्च करने वाले मशहूर बायोटेक्नोलॉजिस्ट और कालीकट यूनिवर्सिटी के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर के मनीष जी आज हमारे मेहमान हैं। गाजियाबाद की गलियों से शुरू हुआ उनका बचपन, केरल का खूबसूरत माहौल, IISc बेंगलोर की रिसर्च और दिल में बसती पेंटिंग व संगीत की दुनिया। मनीष जी की जिंदगी किसी दिलचस्प किताब जैसी है जिसके पन्ने आज हम आपके साथ मिलकर धीरे धीरे खोलेंगे। तो आइए मनीष जी, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत बहुत स्वागत है, आइए तशरीफ लाइए।
3: धन्यवाद धन्यवाद आरती जी, बहुत खुशी हुई आपसे जुड़ने की, ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसके लिए मैं सभी श्रोताओं को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। बताइए।
2: बहुत बहुत खैर मकदम है आपका, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाइए, हम दोनों दोस्त हैं, ये कोई इंटरव्यू नहीं है मनीष। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, पहला मेरा जो सवाल है वो ये है मनीष कि आपका जन्म और बचपन जो है आपने बताया था कि यूपी के गाजियाबाद में बीता, जहाँ आपके फादर एक इंजीनियर थे और आपकी शुरुआती स्कूलिंग होली चाइल्ड स्कूल में हुई, राइट? फिर अचानक 11th के बाद आपकी पूरी फैमिली केरल शिफ्ट हो गई। फिर आपने बताया था कि ना, मैं ये जानना चाहती हूँ कि नॉर्थ इंडिया के माहौल से निकलकर जब आप साउथ इंडिया के उस नए कल्चर और माहौल में गए तो खुद को एडजस्ट करने का, मतलब आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब आपको कोई मुश्किल हुई, क्या हुआ, आप वो हमारे साथ शेयर करिए हमारे दोस्तों के साथ।
3: जरूर जरूर आंटी जी, ऐसा क्या ऐसा हुआ कि वहाँ पर मदर टंग तो मेरी हिंदी हो गई थी, घर में भी हम हिंदी बोल लिया करते थे, और जो हमारी केरल की भाषा जो है मलयालम, वो माता जी और पिताजी से सुन के थोड़ी कुछ आती थी, लेकिन जब केरल शिफ्ट हुए तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉलेज जाना पड़ता था तो बसें पकड़नी पड़ती थी, तो उसमें हिंदी में तो नहीं मलयालम में लिखा हुआ होता था तो टाइटल, तो वो मुझे पढ़ना भी नहीं आता था और मुश्किल हो गई मुझे। हाँ, फिर मैंने घर में बैठ के मम्मी जी थी और मेरी कजिन सिस्टर थी, उन्होंने मेरे को मतलब मलयालम के अक्षर सिखाए, मतलब एक दो महीने में मैंने मलयालम पढ़ना भी सीख लिया और लिखना भी सीख लिया, थोड़ी गलतियां तो होती थी। तो ये पहला जो ये क्या कहते हैं, एक एक्सपीरियंस था अपनी ही मदर टंग को सीखना, घर में बैठ कर सीखना, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था।
2: पर आपने बहुत जल्दी सीख लिया, लाइक दो महीने में मलयालम, तो कहते हैं ना कि इसके अल्फाबेट्स भी ज्यादा हैं बाकी हिंदी के ग्रामर से और इंग्लिश के 26 हैं, तो जैसे मलयालम में कहते हैं 46 होते हैं,
3: 56
2: गुड गॉड,
3: बहुत ज्यादा है, बहुत
2: तो आप दो महीने में सीख ली, क्या जीनियस।
3: दो महीने में नहीं, ऐसा है था कि क्रैश कोर्स की तरह मेरी जो कजिन थी उन्होंने सिखाया मुझे। हाँ। और मैंने थोड़ा कुछ सीख भी लिया, मतलब इतना सीख लिया कि बस के वो टाइटल्स पढ़ लूं। हाँ, ये बस
2: exactly. कि कहीं बरेली जाते जाते झुमरी तलैया तो नहीं पहुंच जाएंगे इतना तो आपने सीख लिया, बहुत खूब बहुत खूब, वाह मनीष जी, उत्तर से दक्षिण का ये सफर आपके मतलब पर्सनालिटी की डाइवर्सिटी और आपकी भाषा की मिठास सब कुछ घोल गया, जिसने आपको हर माहौल में ढलने का हुनर सिखा दिया। मतलब आप मनीष अगर यहाँ गाजियाबाद और वहाँ का कल्चर कितना डिफरेंट है, और आपका बचपन ही वहाँ से बीता और फिर आप वहाँ गए, इंटायरली डिफरेंट कल्चर साउथ का, मगर फिर भी आप उसमें अपने आप को आपने ढाला, तो आप में दोनों चीजें आ गई ना, यहाँ की भी मिठास आ गई और वहाँ की भी आ गई, तो
3: ये तो है।
2: अच्छा मनीष जी, ये बताइए कि आपका, आपने बताया कि कालीकट यूनिवर्सिटी के उस पीएचडी रिसर्च लैब से जुड़ा एक बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक पहलू भी आपकी लाइफ का हिस्सा है, जहाँ आपको अपने रिसर्च गाइड के अंडर में ही अपनी सोलमेट डॉक्टर जयश्री जी भी मिल गई। रिसर्च और पढ़ाई की उस बिजी लैब में ये तो बताओ मनीष, ये दोस्ती और प्यार का रिश्ता कैसे शुरू हो गया?
3: ये तो भाई इस सिचुएशन में क्या हुआ कि मतलब वो मेरी जूनियर थी और धीरे धीरे धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी, वो बिल्कुल चुप रहा करती थी, ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, बहुत बहुत रिजर्व मिजाज की थी, और मुझे मतलब अपनी तरफ से थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि दोस्ती बढ़ानी पड़ी, और वो मुझे हेल्प भी करती थी एक्सपेरिमेंट्स में, और मैं भी उनको काफी रिसर्च के आर्टिकल समझा दिया करता था, तो 3-4 साल जरूर लगे मुझे। और फिर मन कहता है ना कि जब पता चल जाता है कि हाँ यही है बंदा, यही है बंदी जो आपके लिए बनी है ऊपर से है, तो जब ये एहसास हुआ तो हमने एक दिन उनको प्रपोज कर दिया, तो वो कहने लगी आपने तो बड़ी देरी कर दी, हम तो कब से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप प्रपोज करोगे, और वो तो इतनी मतलब वो शर्मीली टाइप की है, वो तो खुद कभी ना कर पाती, तो फिर मैंने तो मैंने पता नहीं लगा इस दिन तो मैंने कहा
2: आप तो करती थी ना वो भी आपसे,
3: नहीं बिल्कुल बिल्कुल वो तो करती थी, लेकिन वो ना इतनी रिजर्व है कि वो बता भी नहीं सकती थी, लेकिन आंखों में थोड़ा झलकता तो जरूर था। हाँ। तो मैंने एक दिन बाद में कह दिया कि अच्छा या तो मैं आपसे शादी करूँ या फिर आप मुझसे शादी कीजिए, एक एक ये कुछ होना जरूर चाहिए ये, तो वो हंसने लगी और फिर उन्होंने कह दिया कि भाई हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप कभी ना जरूर इसको बात को बढ़ाएंगे, किसी ना किसी तरह मुझे इत्तला जरूर देंगे, तो ये हो गया, मतलब पता नहीं ना चल।
2: बहुत खूबसूरत, बहुत खूब, साइंस लैब में जन्मी आपकी ये मोहब्बत और एक साथ IISc तक का ये सफर ऐसे लगता है जैसे किसी सुंदर फिल्म की स्क्रिप्ट चल रही हो, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों इसी खूबसूरत एहसास और मोहब्बत की ताजगी के साथ सुनते हैं मनीष की अपनी आवाज में गाई हुई ये गजल। तो है कौन सी, पंकज उदास जी की आपने गजल ये गाई है, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। चलो गजल थोड़ी सीरियस है, कोई बात नहीं। तो आइए दोस्तों फिर सुनते हैं मनीष की गाई हुई ये खूबसूरत सी गजल।

0: बहुत कमाल की गजल थी मनीष, बहुत सुंदर गाई आपने, मजा आ गया। हमारे दोस्तों को भी बहुत पसंद आई होगी। ये बताइए मनीष जी के IISc बेंगलोर में रिसर्च के बाद आपने कालीकट यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में बतौर प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपने अपनी सर्विस दी, राइट? तो आपके मेन फोकस जो थे वो कैंसर बायोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग पर रहा आपका, जहाँ इतनी गंभीर, इतनी सीरियस बीमारी पर दिन रात रिसर्च चल रही हो, वहाँ पर मेंटली खुद को शांत रखना और पॉजिटिव बने रहना, मतलब कैसे आप ये सब कुछ कर पाते थे?
1: ओके आरती जी, एक छोटा सा करेक्शन ये है कि मैं जब बायोटेक्नोलॉजी में ज्वाइन किया था तो लेक्चरर पोजीशन में ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद प्रमोशन हुआ, एसोसिएट प्रोफेसर बना, उसके बाद फाइनली प्रोफेसर बना और HOD बना। तो ये
0: ठीक है,
1: छोटा सा मतलब ये है नॉर्मल
0: हाँ हाँ
1: जो उसका।
0: ठीक है,
1: हाँ हाँ
0: हाँ
1: अच्छा, आपका ये क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब ये जो रिसर्च करते समय टेंशन और स्ट्रेस, वैसे पता है क्या है, ऊपर वाले की ऐसी दुआ है मुझ पे कि मेरा जो प्रोफेशन जो है लेक्चरिंग मुझे बहुत पसंद है।
0: ओके
1: और प्रोफेशन, और कहते हैं कि अगर आपका पैशन जो एक हो जाए, जैसे इफ यू बोथ ऑफ योर प्रोफेशन एज वेल एज योर पैशन गेट रोल्ड इन टू वन, देन यू आर सपोज टू बी अ वेरी लकी चैप। और मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड मानता हूँ इस मामले में कि मेरे को वही प्रोफेशन मिला जो मुझे बहुत पसंद है। और सच मानो तो ये 30 साल ऐसे गुजर गए, पता ही नहीं चला। लेक्चर दे के, बच्चों को पढ़ा के, बायोटेक्नोलॉजी ही नहीं बाकी काफी चीजें भी उन्हें पढ़ाता था मैं, मतलब कि कैसे फोकस करना है, कैसे एनर्जी को चैनलाइज करना है, व्यायाम की जरूरत, योगा की जरूरत, मेडिटेशन की जरूरत, माइंड को साफ रखना, ये सब मैं सिखाता था। तो ये पता नहीं, ये सफर इतना सिंपल सा और बहुत ही मजेदार सफर रहा है मेरा, मतलब रिटायरमेंट तक। तो ये तो भाई बहुत ही किस्मत की बात है।
0: नहीं, वही बहुत अच्छी बात है। मतलब इंसानियत को बीमारियों से बचाने के लिए लैब में बिताई गई आपकी ये रातों की मेहनत वाकई पूरे समाज के लिए आपका एक महान योगदान ही है। आप जैसे लोग ही तो ये सब कुछ करते हैं, तभी तो बाकी लोग इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। मनीष, ये बताइए
1: हाँ
0: कि साइंस
1: हाँ
0: जैसे सीरियस सब्जेक्ट के साथ साथ आपके अंदर एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट भी बसता है। बचपन से ही आपने बताया कि आपको सिंगिंग, पेंटिंग और यहाँ तक कि कथक डांस की भी ट्रेनिंग मिली है। तो साइंस के लॉजिक और आर्ट्स के एहसासों के बीच ये बैलेंस आप कैसे बना के रखते थे?
1: ये पता नहीं, ये ना थोड़ा सा जेनेटिक्स है मेरे घर में, मेरे फादर मदर सब ब्रदर सब गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, और फादर मदर तो बहुत अच्छा चेस भी खेलते हैं। मतलब घर का माहौल इस तरह का था कि आर्टिस्ट्री काफी थी। तो मतलब गाना बजाना हम लोग घर में ही, मतलब मेरे ब्रदर्स बोंगोस बोंगोस उनसे बजाते थे भैया, और जो दूसरे भैया हैं मेरे वो फ्लूट वगैरह अच्छा बजाते थे, और सिंथेसाइजर वगैरह भी मैंने सीख रखा था। तो हम घर में ना हम लोग एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा की तरह ही था बचपन में, कॉलेज तक हम लोग गाते बजाते बहुत थे। और बचपन में क्या हुआ कि पता नहीं डांस भी कर लेता था, तो मैं रिकॉर्ड डांस करता था स्कूल में, तो टीचर वगैरह अच्छा लगता था। तो वहां पर एक कथक के मास्टर जी थे और एक टीचर भी थी, तो उन्होंने कहा, मेरे जब डांस देखा तो उन्होंने कहा भी इसको तो सिखाना, इसीलिए तो बहुत अच्छा करता है डांस, तो सिखा देते हैं। तो फिर मैंने काफी साल कथक भी सीखा उनसे, और इसी तरह मतलब ये जो आर्ट का जो का ये जो चक्कर जो है वो
0: हाँ
1: बचपन
0: हाँ
1: से ही चला और आज तक रहा है मेरे साथ।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब ये आपने कथक वगैरह सब केरला, मतलब वहां जाके ही सीखी ना?
1: नहीं
0: गाजियाबाद
1: नहीं
0: तक तो
1: कथक तो
0: नहीं ना?
1: मैंने हाँ नहीं गाजियाबाद में ही सीखा था, गाजियाबाद में होली चैट स्कूल में, वहां
0: हाँ,
1: पर एक मास्टर जी
0: अच्छा,
1: पढ़ाने आते थे। हाँ
0: ओके
1: हाँ तो वहीं सीखा।
0: ओके ओके, वेरी नाइस। साइंस तो दिमाग को बहुत वो करता है, जैसे कि डिसिप्लिन रखता है, और आर्ट्स जो
1: हाँ
0: है वो हमारी रूह को सुकून देती है। तो कितना ब्यूटीफुल फलसफा है ना आपका। तो आइए दोस्तों, आप सुनते हैं मनीष जी की रूहानी आवाज में ये बहुत सुंदर सी गजल। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। जगजीत सिंह की आवाज में हमारे मनीष जी ने ये गजल गाई है। और आइए फिर देखते हैं और सुनते हैं।

0: बहुत सुंदर गजल आपने गाई मनीष। इसका तो ये नगमा तो वैसे भी बिल्कुल सुकून दे जाता है। मनीष ये बताइए, आप सिर्फ पढ़ाई और लैब तक सीमित नहीं रहे, बल्कि आप स्पोर्ट्स में भी, आपका जज्बा जो था वो भी कमाल का रहा। आपने बताया कि आप कैरम, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में भी आपका बहुत इंटरेस्ट रहा। स्पोर्ट्स की इस हैबिट ने आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कितना फायदा पहुंचाया?
1: हाँ, ये तो है, क्योंकि ना जैसे आपने कहा कि एक संपूर्ण ह्यूमन बीइंग के लिए जो हमारा जो प्रोफेशन है, पढ़ाई लिखाई है, उसके अलावा आर्ट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। उसी तरह मेरे को लगता है स्पोर्ट्स का जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। मैं स्कूल में कैरम्स का चैंपियन था, और फिर केरल आने के बाद मैंने टेबल टेनिस वगैरह यहाँ पर हॉस्टल में सीखा था, टेबल टेनिस वगैरह। बैडमिंटन तो बचपन में खेलते थे, पापा भी बहुत अच्छा खेलते थे, बड़े भैया भी बहुत अच्छा खेलते थे। तो यहाँ पर फिर केरला में आने के बाद फिर मैंने बैडमिंटन, हमारे घर में ही बड़ा सा काफी मतलब जमीन हमारे जो घर के सामने काफी स्पेस था, तो हमने वहां पर एक बैडमिंटन कोर्ट डाला था मैंने और ब्रदर्स ने, और हम लोग रेगुलर खेलते थे। तो उससे फायदा यह है कि भाई शरीर भी मतलब व्यायाम भी मिल जाता है, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। और पढ़ाई से पहले हम लोग शाम को खेला करते थे और उसके बाद नहा धो के फिर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते थे। तो मतलब एक बहुत ही बैलेंस्ड लाइफस्टाइल बन जाता था उससे, कि गाना बजाना भी है, खेलना कूदना भी है और पढ़ाई लिखाई भी है। तो ये मतलब मुझे लगा कि बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल बन गया था कॉलेज के जमाने में, बचपन से ही था और वो अभी भी है। अभी भी मैं योगा करता हूँ, फिटनेस करता हूँ, इस उम्र में भी मतलब मैं जिम जाता हूँ। तो वो अभी भी चल रही है वो हैबिट्स, जो अच्छी हैबिट्स
0: बहुत
1: हैं।
0: खूब, बहुत खूब, बिल्कुल सही। वो सब कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ और रचनात्मक दिमाग का निवास होता है। आपकी, अगर आपकी बॉडी अगर फिट है तो बाकी सारी चीजें अपने आप फिर फिट ही होती हैं, माइंड भी सेट होता है उसी तरीके का। बहुत
1: बिल्कुल
0: खूब,
1: बिल्कुल
0: बहुत
1: बिल्कुल
0: खूब।
1: सही कहा आप।
0: तो मनीष जी, अब आप ये बताइए कि कोविड आ गया अब जैसे, तो आप कोविड लॉकडाउन से ठीक पहले आप यूनिवर्सिटी से, आपने बताया कि आप रिटायर हो गए थे, ठीक है ना? तो
1: हाँ हाँ
0: इतने
1: बिल्कुल
0: लंबे कैरियर के बाद आपका अचानक काम से फुर्सत मिल गई और फिर ऊपर से लॉकडाउन का वो टाइम, तो फिर आपने उस समय को, उस वक्त को आपने अपनी पेंटिंग्स, म्यूजिक और शौक के साथ कैसे स्पेंड किया? आप क्या क्या करते थे उस टाइम का, मतलब बिताने
1: दैट्स
0: के
1: अ
0: लिए?
1: वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आरती जी। क्या हुआ कि ये सही बात है कि काम से भी फुर्सत मिल गई तो थोड़ा सा गैप सा बन जाता है कि भाई इतनी साल काम कर रहे हैं, सडनली एक सुबह देखो कि आज से कोई काम नहीं है। तो मुझे काफी मतलब विजिटिंग प्रोफेसरशिप वगैरह इधर उधर मिली थी, लेकिन कोविड का टाइम था तो फिर जाना आना मुश्किल हो गया था। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा गाने पर ध्यान देना शुरू किया और थोड़ा सा पेंटिंग वगैरह की मैंने, और थोड़ा सा वाइफ के साथ मतलब गार्डनिंग उनको बहुत पसंद है तो उनको भी हेल्प कर लेता था, और रसोई में भी मतलब कैसे मैं कुकिंग कर लेता हूँ, रसोई में भी उनका काम बता दिया करता था। तो और मतलब रीडिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बहुत मतलब साइकोलॉजी, फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा मैं आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता हूँ, क्योंकि ये सब सीखने के लिए, और कॉन्शियसनेस के ऊपर भी मतलब मेडिटेशन वगैरह टेक्निक्स वगैरह प्रैक्टिस करना, ये सब किया करता था। तो मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि वो लॉकडाउन क्या हुआ, कि अंदर की ओर जो जो जर्नी होती है ना, तो हम लोग बाहर की ओर की जो जर्नी जो है भौतिक लेवल पे सभी लोग करते हैं, लेकिन अंदर की तरफ अपने अंदर झांकना, अपने माइंड को क्लियर करना, आज से मुक्त होना और फ्यूचर की एंग्जाइटी से मुक्त होना, ये सब चीजें जो है अभी लॉकडाउन में मैंने उसको फोकस करना चालू किया था। तो अच्छा टाइम स्पेंड वॉज वेल स्पेंड।
0: वाह, क्या बात है। मतलब आपने कितना अच्छा, मतलब उस टाइम का कैसे इस्तेमाल किया, आप अपनी कला की तरफ वापस लौट गए, और और आपने वक्त का इतना खूबसूरत इस्तेमाल किया, और ये भी अपने आप में किसी कला से कम नहीं, क्योंकि हर आदमी नहीं टाइम मैनेजमेंट ठीक तरीके से कर पाता, और आपने कितना एप्टली उस टाइम को यूज किया आपने, तो बहुत खूब, बहुत खूब।
1: या
0: अच्छा मनीष, अब हम सुनेंगे आपकी पसंद की तीसरी गजल, ठीक है? तो अब आपने ये गजल हमारे को जो गा के भेजी है, ये है मेहदी हसन साहब की गजल। मतलब आपने पहले पंकज उदास की गजल गाई, फिर आपने जेएस की गजल गाई, और अब आप मेहदी हसन साहब की गजल सुना रहे हैं, और वो भी मेरी फेवरेट। कौन सी है, जरा एक लाइन गा के बताइए।

0: भुला ना सकोगे। ये गजल मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। पता नहीं क्यों, इतनी सिंपल है लेकिन बहुत टचिंग है, तो
1: बहुत अच्छी है,
0: मुझे लगता है
1: बहुत
0: हाँ लिसनर्स को पसंद
1: बहुत
0: आएगी जरूर।
1: बहुत सुंदर गाई आपने। अनप्लग्ड वर्जन भी बहुत जबरदस्त था। तो आइए दोस्तों, फिर मनीष ने अगर अनप्लग्ड वर्जन इतना अच्छा गाया, सोचो म्यूजिक के साथ कितना अच्छा गाया होगा। तो चलिए हम सब सुनते हैं मनीष की गाई हुई ये खूबसूरत सी गजल।

0: बेहद बेहद खूबसूरत आवाज में गाई गई गाई हुई ये तीसरी गजल भी बहुत ही मनमोहक थी मनीष। अब आप ये बताइए, मजा आ गया सुन के। आप ये बताइए मनीष कि आपकी बेटी का नाम है अनन्या, ठीक है, और आपने बताया कि आपके जो दामाद हैं उनका नाम है इंद्रजीत, और वो दोनों ही मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छे मुकाम पर हैं, और वो गोवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अपनी एमडी की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं दोनों बच्चे। तो एक साइंटिस्ट और फादर के रूप में नेक्स्ट जनरेशन को अपने ही नक्शे कदम पर मानवता की सेवा करते देखना आपको कितना खुशी का एहसास देता है कि मेरी बेटी और मेरे दामाद कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये क्या फीलिंग होती है? हाउ डू यू फील इट?
1: ओह दैट इज अ हेवनली फीलिंग आरती जी, क्योंकि ना ये तो पता नहीं, ये मेरा सौभाग्य है कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, वो यहाँ पर सीबीएसई में डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट थी साइंस की, और मतलब वो काफी अच्छे, मतलब 96-97% मार्क्स थे उसके सीबीएसई में, और उसको इंस्पायर का स्कॉलरशिप भी मिला था उसको, और लेकिन उसने अपने आप ही चुना है, मैंने उसको फोर्स नहीं किया था, क्योंकि वो बहुत अच्छा, मतलब रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी थी, तो मैंने कभी फोर्स नहीं किया। तो उसने कहा पापा मैं एनीवे मेडिसिन ही लेना चाहती, तो मैंने कहा अच्छा तो फिर भाई पढ़ाई करो और आपको एंट्रेंस क्रैक करना है। तो उसने केरला का एंट्रेंस क्रैक किया, ऑल इंडिया क्रैक किया, फिर कॉमर्स कोई करके कर्नाटका में वो टॉप 15 के अंदर आ गई थी। तो मतलब उसने हमें प्राउड ही फील करवाया है, और हम बहुत खुश थे उसकी, मतलब स्कॉलास्टिक जो उसकी जो जो जो जो कर्व जो था उसका ऊपर की तरफ बहुत ही बढ़िया था, फिर उसके अपने आप ही मिल गया। तो मैंने कहा ठीक है भाई अच्छी बात है, हम बहुत ही खुश थे। और मैंने ये एक बात कही है कि जब अपना क्लिनिक डालोगे तो ये देखना कि 10 पेशेंट्स में कम से कम 3 या 4 ऐसे पेशेंट्स हों जो गरीब हों, जो जो जो मेडिसिन का वो नहीं दे सकते इतना खर्चा वगैरह, तो हो सके तो उनकी मदद जरूर करना फाइनेंशियली, मतलब या तो उनसे फीस नहीं देना है या उनको दवाइयां फ्री देनी है, कुछ तो कुछ करना जरूर है। तो उसने मेरी प्रॉमिस मान ली है, कहती पापा मैं ऐसा ही करूंगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया।
0: तो वो डॉक्टर लोगों को ओथ दिलवाते हैं ना, शपथ दिलवाते हैं, जो कि हार्डली ही बाद में डॉक्टर बनने के बाद लोग उसको फॉलो कर पाते हैं ट्रू सेंस में। बट आपने कितने अच्छे संस्कार दिए अपनी बेटी को, जो मतलब आप बीइंग फादर आप उसको इस तरीके से गाइड कर रहे हो, और वाकई बहुत बहुत काबिले तारीफ बात है ये। पेरेंट्स की तपस्या से जब बच्चों की सफलता बनकर चमकती है, बच्चे जब सफल बन के मतलब वो अपना उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है, तो नेचुरली पूरी फैमिली का जो सर है वो गर्व से लाइक मस्तक ना ऊंचा हो जाता है, तो सारी फैमिली के लिए प्राउड मोमेंट होता है। नॉट ओनली योर फैमिली, आपके सारे रिलेटिव्स, आपके मम्मी डैडी, आपके भाई, सारी बिरादरी में मतलब बंदे का सर ऊंचा हो जाता है, तो ये वाकई बड़ी खुशी और गर्व का एहसास होता है। तो अब इसी के साथ अब हम आपके हमारे सुनने वालों को सुनाते हैं आपकी एक और बड़ी खूबसूरत सी गजल, ये है झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, यही है ना। दबा दबा सही सही दिल में प्यार है कि नहीं, तो गाइए ना एक लाइन इसकी भी आप।
1: हाँ ये बहुत पसंद है मुझे ये गजल दिलजीत सिंह जी की।
0: हाँ बोलिए।
1: हाँ मतलब ये मुझे बहुत पसंद है, इनको उनकी आवाज ना एक स्पेशल क्वालिटी है उनकी आवाज में, मतलब वैसे काफी सारे गजल सिंगर्स हैं लेकिन पता नहीं मुझे उनकी आवाज बहुत पसंद है, तो ये मेरी पसंदीदा एक गजल है जो मैंने गाया है, होपफुली सबको पसंद आया जाएगा मेरे ख्याल से।
0: ठीक है ठीक है, तो फिर आइए सुनते हैं आपकी गाई हुई ये गजल दोस्तों, चलिए फिर।

0: वाह, क्या नफासत और गहराई है इस गजल के शेरों में मनीष। वाकई बहुत
1: थैंक यू,
0: आपने गाए भी बहुत बाकमाल है। तो मनीष, अब आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप एक बिल्कुल फोकस्ड साइंटिस्ट रहे, समर्पित जिसको बोलते हैं, टीचर रहे, आर्टिस्ट रहे और एक कामयाब फादर के रूप में आपके 67 सालों के इस लंबे और एक्सपीरियंस सफर को देखने के बाद आज हमारे दोस्तों को और खास करके यंग जनरेशन को आप क्या खास मैसेज देना चाहेंगे?
1: अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल है आरती जी। देखिए, ये जनरेशन जी से मैं ये कहूंगा कि जो भी मतलब डू व्हाट यू लाइक एंड लाइक व्हाट यू डू, यू नो द थिंग इज दैट लव व्हाट यू डू। मतलब जो कुछ भी आप चुन के प्रोफेशन लेना चाहते हो उसमें अपना हार्ट एंड सोल डालिए, सारी एनर्जी डालिए, अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप सोसाइटी के कोई काम आए, अपने ही नहीं। मतलब यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी तो हमें हेल्प करती है हर चीज में। तो हमारी लाइफ सोसाइटी के थ्रू, फादर मदर के फैमिली से और बाहर सभी से तो मिलता है, स्नेह भी मिलता है, एनकरेज भी मिलता है। तो ये जरूरी हो जाता है कि ऐसे कुछ सिटीजन हम अपने सोसाइटी को बैक कुछ ना कुछ तो दें, मतलब ऐसा कुछ दें

0: दोस्तों सुना आपने कितनी खूबसूरत गजल थी और कितनी खूबसूरती से गाई हमारे मनीष जी ने। तो आज प्रोफेसर मनीष जी से बातें करते हुए एक बात बहुत गहराई से समझ में आई, वो ये कि इंसान अपने प्रोफेशन से बड़ा तब बनता है जब वो अपने अंदर के पैशन को कभी मरने नहीं देता और इंसानियत को मरने नहीं देता। साइंस ने उनके दिमाग को दिशा दी तो आर्ट्स ने उनके रूह को जिंदा रखा। तभी तो आपने उनकी बातें सुनी कितनी खूबसूरत थी। ये सिर्फ ये एक साइंटिस्ट और इतनी खुश्क पढ़ाई करने वाला इंसान तभी कर सकता है जब वो उसके उसका पैशन जिंदा है और वो आर्ट्स में भी उनकी उतनी ही रुचि थी। तो अगर आज के शो से हम एक बात भी अपने साथ घर ले जा सकें तो वो ये है कि काम चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, अपने शौक और अपनों के लिए वक्त हमेशा निकालिए, क्योंकि यही चीजें जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। चलते चलते सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जिंदगी सिर्फ पन्नों और दफ्तरों का नाम नहीं है। दिल में अगर कोई हुनर है तो उसे आवाज दीजिए। काम तो उम्र भर चलता ही रहेगा साहब। कभी फुर्सत में बैठकर खुद से भी मुलाकात कीजिए जनाब। तो इसी खूबसूरत ख्याल के साथ अब आपकी दोस्त रेडियो दोस्त आरती राय आपसे लेती है इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए अल्फाज और कुछ खूबसूरत एहसासों के साथ। तो आप सुनते रहिए 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते भी रहिएगा, अपनों से मोहब्बत जरूर कीजिएगा। तो शब खैर, शुभ रात्रि, रब राखा, फिर मिलेंगे।
1: वो घड़ी दो घड़ी जहां बैठी।
2: तो दोस्तों कैसा लगा ये गुलदस्ता जो आरती जी ने सजाया? तो आज की इन गजलों ने आपके दिलों को छुआ होगा और कुछ तो खूबसूरत एहसास आपके लिए छोड़ गई होंगी। अगली मुलाकात के लिए फिर लेकर आएंगी आरती जी ऐसे ही शानदार गजलें और दिलकश नगमे। तब तक मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने सभी का ख्याल रखिए। मिलते हैं।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आप लो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और अब हमारे किसान साथी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अब हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो गई है और मध्यम गति से ये बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम विभाग क्या कहता है इस पर आज नजर डालेंगे। साथ साथ में साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज हम काफ़ी विषयों पर बातचीत करने जा रहे हैं, जैसे कि कपास की खेती। चूंकि अगर देखा जाए झाबुआ जिले को देखा जाए तो यहाँ पर कपास की खेती का विशेष ध्यान दिया जाता है, किसान विशेष तौर पर इस खेती को करते हैं। कौन सा

0: રેડિયો ટાંટિયા ભીલ 90.8 FM આપણો રેડિયો આપણી વાતે.
1: अब नई चीज हम जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों को हम वही चीजें बताते रहते हैं, वही बातें सुनाते रहते हैं. आज कुछ नया करते हैं. आज हम बात करने जा रहे हैं अब कि सीप की खेती, जो मोतियों की खेती रहती है, वो किस तरीके से होती है. ये भी एक व्यवसाय है हमारे किसान साथियों की, नई चीज है. आइए जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मोतियों का खेती कर सकते हैं. लेकिन साथियों, इनसे बातचीत करने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं प्यारे से गीत को.

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मोती और खेती कर सकते हैं, कैसे इसका प्रशिक्षण, कहाँ प्रशिक्षण मिलेगा, इसकी सारी जानकारी इस सेगमेंट में सुनते हैं।
1: भारत में मोतियों का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे हम सरल भाषा में सीप पालन या मोती की खेती कहते हैं। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप में बनता है। जब सीप में कोई बाहरी पार्टिकल जैसे मिट्टी के कण या कोई सूक्ष्म जीव चला जाता है, तो वो उसे बाहर निकालने के लिए एक तरल छोड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे उस कण पर सीप परत दर परत एक चमकदार कोटिंग बना देती है और फिर एक निश्चित समय बाद यही मोती बन जाता है। सीप पालन को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करना होता है, जहां सीप को आसानी से पाला जा सके। सीप को छोटे स्तर से घर में पाला जा सकता है, जबकि बड़े स्तर पर पालने के लिए तालाब की जरूरत होती है। इसके बाद किसान को सीप खरीद कर सीपों को खुले पानी में 2 दिन के लिए रखते हैं, जिससे धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दें। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है, तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है, जो मोती में बदल जाता है। सीपियों के प्रकार: लेमिनेनिस मार्जिनेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10x10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर यानी 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ बीट के चारों ओर जमने लगता है, जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 माह बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी ली जा सकती है।
0: अभी आपने हमारे किसान साथियों ने सुना कि किस तरीके से मोतियों का हम खेती कर सकते हैं, यानी हम मोतियों का जो खेती रहती है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे प्रशिक्षण लिया जाता है, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से जानी है। और भी बातें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम, यानी लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बनी रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: किसान की मेहनत सार्थक होती है तो खेतों में खुशी की तरंगे बिखरने लगती है और बंजर जमीन भी हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। वैसे तो राजस्थान की धरती को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के किसान प्रकृति का सीधा सामना करते हुए सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने कृषि का शायद ही कोई क्षेत्र छोड़ा हो जिसमें कामयाबी ना पाई हो। जयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां से करीब एक घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालख गांव, जो पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से, जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं। उनके यहाँ जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम कृषि के साथ साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पॉली हाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना और सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर खेती के हर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज वो जिस मकाम पर है उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही है जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल है। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती है जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है।
1: ये राजस्थान में पानी की काफी कमी है, रेगिस्तान है और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस है, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे फार्म पॉन्ड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉन्ड में जो साइज है मेरी 50x50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉन्ड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉन्ड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉन्ड से पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें भी मैंने कनेक्शन ले रखा है और जिसमें 67,000 रुपए मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपए मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियां डाल रखी, जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियां हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियां हैं जो अलग अलग लेयर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है, वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगोकर देते हैं और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करता है। और साथ ही हमारा जो पानी का EC और PH है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियां नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है, इस वजह से इसको मछलियां डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से सलाह देना चाहता हूं कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पॉन्ड बनाएं, मछली पालन कर सकते हैं, साथ में खेती कर सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, जैसे पॉली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है, इन सब का उपयोग करके अपने अच्छे से आप नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, अभी आपने इन सफल किसानों की कहानी को सुना और जाना कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है, यानी खेती के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने योजनाओं का लाभ लिया है, उन्होंने आधुनिक पद्धति से खेती की है, उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट पर जोर दिया है, तो तमाम प्रकार की उन्होंने योजनाओं का लाभ लेते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि सफल किसान के नाम से उनको जाना जाता है राजस्थान में। तो साथियों, हमें आशा है कि ऐसे ही हमारे किसान साथी अब सोच रहे होंगे कि हम भी एक उन्नतशील किसान बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आप समय समय पर कृषि विस्तार अधिकारी अपने झाबुआ जिले में बैठे हुए हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, खासतौर पर जो KBK रहता है उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो नई नई पद्धति से और नई नई योजनाओं के साथ लाभ लेकर आप एक अच्छी पद्धति से खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं, यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। मित्रों, अब हमारा समय होता है आज के कार्यक्रम के।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का कार्यक्रम खेती बाड़ी में आपके आरजे मनीष बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और किसान मित्रों कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी बड़ी ध्यान से हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे और आशा करते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों तक हम पहुंचाते हैं, हम अपने किसान साथियों के लिए जो जानकारी उपलब्ध कराते हैं वो बहुत बेहद उपयोगी सिद्ध हो रही होगी। और हम आशा करते हैं कि यदि आपको वास्तव में लगता है कि हमें खेती की नई प्रजातियां और खेती में किस तरीके का हम मुनाफे का सौदा हम कर सकते हैं, खेती में किस तरीके से हो सकता है, इस पर भी आप हमें पूछ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर केबीके झाबुआ जिले में हमारा केबीके खुला हुआ है वहां पर जाकर संपर्क कर सकते हैं या हमारे कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मई माह चल रहा है और ऐसे में हमारे किसान साथी क्या कर सकते हैं, मई महीने में किसान भाई क्या करें क्या ना करें, खरीफ फसल के लिए कैसे करें अपनी खेत की तैयारी, बागवानी फसलों की देखरेख में किस तरह की बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये जानकारी आज आपके हमारे कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आज हम आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं इसके बारे में कि गेहूं की कटाई लगभग अब तो पूरी हो चुकी है, बिल्कुल खत्म। अब किसान भाई खरीफ सीजन की फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर खरीफ सीजन की फसलों में अच्छी पैदावार आपको चाहिए तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। रबी फसलों की कटाई के बाद अगर खेत खाली पड़े हैं तो खेतों में को सुधारने के का यह बहुत अच्छा समय है। ग्रीष्म काल में खेतों की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से या बखर चलाकर कर दें, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि हमारे किसान साथी झाबुआ जिले में छोटी छोटी जगह है, पथरीला इलाका है, तो ऐसे में हल से हमारी खेती करते हैं हमारे किसान साथी, तो उनसे अच्छी तरह से हल से उनकी जुताई कर दें, बखर से भी उनकी जुताई कर दें। गर्मी में जुताई करने से मिट्टी में छिपे हुए कीटों के अंडे लार्वा आदि बाहर आ जाते हैं और धूप में अधिक तापमान के कारण ये मर जाते हैं। इसी प्रकार कई मिट्टी जनित रोगों के रोगाणु भी भूमि में दबे रहते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर गर्मी में गहरी जुताई करते हैं तो ये रोगाणु भी मर जाते हैं जिससे फसलें रोग मुक्त पैदा होती हैं। कुछ बहुवर्षीय खरपतवारों से फसलों को अधिक नुकसान होता है, उन्हें कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। गर्मी में गहरी जुताई करने से ऐसे खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है जो खेत ऊबड़ खाबड़ हैं और उनको कंप्यूटर चलित लेजर समतल से समतल कर लेना चाहिए ताकि अगली फसलों में अंकुरण अच्छा हो और पानी की बचत हो। अब बात आती है कि खरीफ फसलों की बुवाई से पूर्व क्या तैयारी करना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, ये भी हमारे किसान साथी बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा कि मई महीने के अंत तक खरीफ फसलों की बुवाई से पहले की तैयारी शुरू कर लें ताकि समय पर बुवाई की जा सके। अगर हमारे किसान साथी धान की नर्सरी जून की शुरुआत में डालना शुरू हो जाता है, इसलिए उनके लिए उन्नत बीज, खाद, खरपतवार नाश कीटनाशी आदि के खरीद कर रख लें और खेत की तैयारी भी पहले से करके रखें। अरहर या कपास की बुवाई हमारे किसान साथी करते भी हैं, उनका समय पर हो सके इसके लिए खेत की जुताई, उन्नत बीज की खरीदारी जैसी तैयारी समय रहते पूरी कर लें ताकि बुवाई में देरी ना हो और जिन फसलों की मध्य जून तक बुवाई करनी हो उसके खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट आदि इसी माह डालकर मिट्टी में मिला दें। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं अपनी खेती किसानी में आगे बढ़ाने के लिए। अब साथियों एक हम यहाँ पर विराम लेते हैं और एक अच्छा सा गीत को सुन लेते हैं, इसके बाद आपकी हमारी बातचीत कार्यक्रम खेतीबाड़ी में होती रहेगी।

0: हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपड़ी बातें।
1: आइए सुनते हैं एक और सुंदर गाना अपनी ही संस्कृति का, जो कि हम फेरे लेते समय उस गाने को अधिकतर गाया करते हैं। आइए सुनते हैं गाना।

रेडियो टांटा भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी आपने भीली गीत को सुना, इसका आनंद लिया और कार्यक्रम में और भी कुछ बातें हैं जो हम अपने किसान साथियों को बताने जा रहे हैं कि बागवानी फसलों के लिए क्या तैयारी करना चाहिए, क्योंकि मई माह का महीना चल रहा है और ऐसे में किसान साथी गहरी जुताई के साथ साथ बागवानी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आय को बढ़ाने के लिए एक अच्छा विकल्प है। मई महीने में किसान भाई आम यानी मैंगो के बागों का विशेष ख्याल रखें। आम पर मिली बग कीटों के अंडों और नए प्रजननों को नष्ट करने के लिए जुताई कर सकते हैं। पेड़ के मुख्य तने पर लगभग 1 मीटर की ऊंचाई तक पर प्लास्टिक 1 फीट चौड़ा का एक चद्दर तने के चारों ओर लगाएं तथा ग्रीस से भी सभी प्रकार के छिद्रों को बंद कर दें। मौसम को ध्यान में रखते हुए अंगूर और आलू बुखारा आदि के फल वृक्षों में नमी करने के लिए सिंचाई कर दें। जहां तक संभव हो सके इस माह किसी भी कीटनाशी का प्रयोग आम में ना करें, परंतु आम के भुनगे का प्रत्यधिक प्रकोप होने की स्थिति में मोनोक्रोटोफास और डाइमेथोएट के घोल का एक छिड़काव अवश्य कर दें। आम में खर्रा रोग का प्रकोप होने पर डिनोकेप कवचनाशी का छिड़काव की आवश्यकता है और भुनगा कीट और खुर्रा रोग की रोकथाम हेतु कीटनाशी

0: व कवक नासी को एक साथ मिलाकर भी छिड़काव हमारे किसान साथी कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि हमारे किसान साथी सब्जी करना चाहते हैं कि सब्जी फसलों में क्या करना चाहिए इस माह में, सब्जियों में चेपा के आक्रमण की निगरानी करते रहें। वर्तमान तापमान में यह कीट जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो इसमें आप नज़दीकी हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र बना हुआ है या फिर कृषि विभाग है वहाँ पर वैज्ञानिक के पास जाएं और उनसे कहें कि इस तरीके की हमारे सब्जियों में रोग लग रहा है, उसके बचाव के लाने हमें क्या करना चाहिए, इस पर विशेष तौर पर ध्यान दें। सब्जियों की फसलों पर छिड़काव के बाद कम से कम एक सप्ताह तक तुड़ाई ना करें और बीज वाली सब्जियों पर चेपा का आक्रमक का विशेष ध्यान रखना चाहिए हमारे किसान साथियों को। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमारे किसानों को हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से देनी थी। आज के इस कार्यक्रम में, खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आज हम जानेंगे, क्योंकि हमारे किसान साथी जो हमारी रबी की फसल थी वो करके पैदा करके उन्होंने घर पर रख ली है। अगर बीजों की बात करें तो हमें अच्छे किस्म के बीज जो रहते हैं उसके बारे में आज एक महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे, यानी संकर प्रजाति के जो बीज रहते हैं क्या है, कैसे इस्तेमाल हमारे किसान साथी कर सकते हैं। साथ साथ में बकरी पालन पर भी बात करेंगे और साथ में एक सफल महिला किसान की कहानी इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में हम सुनाने जा रहे हैं। तो देर नहीं करते हैं आपको, सबसे पहले हम खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आपको जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं उनसे जानते हैं संकर प्रजाति के बीज क्या होते हैं। तो आइए सुनते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट को, बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटा भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें।
1: किसान साथियों, आप तो अक्सर अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए संकर किस्म के बीजों का चुनाव करते हैं, लेकिन संकर किस्म के बीजों से खेती करने के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी भी बेहद जरूरी है। आइए इनके बारे में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। देश विकास के साथ साथ कृषि जोत छोटी होती जा रही है। अब ऐसे किसानों की संख्या ज्यादा है जो कम जोत में खेती करके अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक चीज है जो किसानों को काफी संबल देती है और वो है संकर किस्में। कृषि अनुसंधान संस्थान रात दिन शोध करके ऐसी किस्में तैयार करता है जो कम स्थान में भी भरपूर फसल दे सकें। आज फसलों में ऐसी हजारों किस्में मौजूद हैं जो हर विपरीत हालात में भी किसान को मुनाफा देने में सक्षम है, लेकिन कभी कभी अधूरी जानकारी से नुकसान भी हो जाता है। ऐसे किसान को चाहिए कि वे कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर किस्म का चुनाव और बुवाई का काम करें। संकर किस्मों को लगाते समय या चुनाव करते समय किन बातों का खास ख्याल रखें ताकि भरपूर पैदावार हो और मिट्टी को भी नुकसान न पहुंचे, बता रहे हैं मेरठ केवीके के प्रभारी और विशेषज्ञ डॉक्टर मिकार्टी।
2: किसी भी फील्ड में जब वो काम कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो हो सकता है कि वो गेहूं और धान की खेती कर रहा है, लेकिन उसमें परेशानी क्या आ रही है कि हमारा किसान के पास जानकारी अधूरी है। वो वही वैरायटी बो देता है जो कि पहले उसने लगाया है, पुरानी वैरायटी बो दी, अब उसको मालूम है कि, अब जैसे मैं उदाहरण आपको बताता हूं कि आपने भी सुना होगा कि हाई यील्डिंग वैरायटी होती है और हाइब्रिड होती है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी हो गई और हाइब्रिड, तो हाइब्रिड जब हम बोते हैं तो हाइब्रिड सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम है, एक बार बोने के लिए होती है वो, और वो सबसे ज्यादा उत्पादन देती है। इस वक्त जो हमारे यहाँ पे जो कंडीशन है वो हाइब्रिड की ही चल रही है कि हमको जो है कम जगहों पे, जैसे आप हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी जो जमीन है वो शिंक होती जा रही है, वो सिकुड़ती जा रही है, और जैसे जैसे वो कम होती जा रही है वैसे वैसे हम और हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमारी संख्या जब बढ़ रही है तो हमको उत्पादन उसी कम से कम जमीन में लेनी है, तो जब कम से कम जमीन में लेनी हो तो जो पुरानी हमारी वैरायटी है वो 10 क्विंटल 8 क्विंटल 5 क्विंटल उत्पादन देती हैं, और आज के समय में जो हम हाइब्रिड ले रहे हैं तो 14 क्विंटल 18 क्विंटल 20 क्विंटल तक हमको उत्पादन मिल रहा है। अभी रिसेंटली गेहूं में कोई वैरायटी बिहार में आई है जो कि 80 क्विंटल तक दे रही है, बहुत ज्यादा मुझको डिटेल नहीं मालूम है क्योंकि मैं पशुपालन का आदमी हूं, लेकिन मैंने पेपर में उसका पूरा आर्टिकल पढ़ा है कि वो 80 क्विंटल दे रही है। तो ये सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज होती रहती है, तो वो इसी बात को फोकस करती है कि हमारे जो जमीन सिकुड़ रही है उसमें हमको कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेना है। और ये सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम होती है, हाइब्रिड जो होती है। किसान क्या करता है, उस सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम को ना समझ करके पहले एक ही बीज को बोता है और बहुत अच्छा उत्पादन होता है, मोटे दाने होते हैं, बड़ा उत्पादन में ज्यादा उत्पादन होता है। तो वो क्या सोचता है कि ये वाला बीज अगर हम नेक्स्ट ईयर बोएंगे तो हमको इसी तरह का उत्पादन मिलेगा, लेकिन जेनेटिकली जो उसकी उसका कैरेक्टरिस्टिक है उस बीज का, वो सिर्फ एक ही टाइम के लिए होता है। तो इस तरह की जानकारियां जो हैं वो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा ही किसानों को दी जाती हैं। तो इस तरह की जानकारियां जो हम लोग देते हैं, तो इन चीजों को लेकर के किसान जो है और फायदा उठा सकता है। तो हमारे जो मैंडेट एक्टिविटीज होते हैं इसमें हम ये प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले।
1: इन बातों से साफ जाहिर होता है कि केवीके के विशेषज्ञ किस तरह से किसानों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं, और साथ ही किसान इन छोटी लेकिन अहम जानकारियों को ध्यान में रखकर न सिर्फ अच्छी पैदावार ले सकते हैं बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनाए रख सकते हैं।
3: तो जाना आपने कि किस तरह से संकर किस्म के बीजों का चुनाव कर अगर आप खेती कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए।
0: अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पशु पालन पर हम चर्चा करेंगे और बकरी पालन पर खासतौर पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, बने रहिए आरजे मरीज के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: आइए अब बात करते हैं हमारा पशुधन सेगमेंट में बकरी पालन की। जी हाँ, बकरी पालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिसे किसान खेती के साथ साथ अपना सकते हैं और इससे अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। जहाँ एक तरफ किसानों की भी कई तरह की जरूरतें इससे पूरी होती है, वहीं कम लागत में से शुरू करके किसान इसे व्यवसायिक तौर पर अगर आगे बढ़ाते जाएं तो अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं कि बकरी पालन के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें।
1: खेती के साथ साथ किसान पशुपालन कर अतिरिक्त आय कमा रहे हैं। कम स्थान और कम व्यय पर छोटे पशुपालकों में सबसे ज्यादा बकरी पालन का प्रचलन है, क्योंकि इसके लिए ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती और इनकी संख्या में आसानी से इजाफा भी होता रहता है। बीते 5 सालों में बकरियों की संख्या में इजाफा देखा गया है। हर 5 साल में होने वाली पशु गणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012 की तुलना में पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। ये संकेत पशुपालन में होने वाले मुनाफे की ओर इशारा करते हैं। बकरी पालन से और अधिक कमाई कैसे की जाए, आइए जानते हैं। पशुधन बढ़ता रहे और मुनाफा भी होता रहे, इसके लिए बकरियों के प्रजनन में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बकरी लगभग 1.5 साल की उम्र में प्रजनन करने लायक हो जाती है। एक बकरी 2 साल में 3 बच्चों को जन्म दे सकती है। इस तरह इनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है। ब्लैक बंगाल बकरी का प्रजनन बीटल या सिरोही नस्ल के बकरों से कराना चाहिए। बीटल या सिरोही नस्ल से उत्पन्न संकर पाठी या बकरी का प्रजनन संकर बकरा से कराएं। इसके अलावा इनके आहार पर भी खास ध्यान रखें। गाभिन बकरियों को अंतिम 1.5 महीने में चराने के अलावा कम से कम 200 ग्राम दाना का मिश्रण अवश्य दें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि बकरियों के आवास में प्रति बकरी 10 से 12 वर्ग फीट की जगह दें और एक घर में एक साथ 20 बकरियों से ज्यादा ना रखें। बच्चा जन्म के समय बकरियों को साफ जगह पर रखें। जन्म के बाद नाभि को 3 इंच नीचे से ब्लेड की सहायता से काट दें, साथ ही टिंचर आयोडीन या वोकाडिन दवा लगाएं। बच्चों को रोगों से बचाने के लिए जरूरी टीकाकरण कराएं। बकरियों के अच्छे विकास में आहार की अहम भूमिका होती है, इसलिए बकरियों के पोषण के लिए प्रतिदिन दाने के साथ सूखा चारा दें। दाने में 57% मक्का, 20% मूंगफली की खली, 20% चोकर, 2% मिनरल मिक्सचर, 1% नमक होना चाहिए। इसके अलावा सूखे चारे में गेहूं का भूसा, सूखी पत्ती, धान का भूसा, उड़द का भूसा या अरहर का भूसा होना चाहिए। इस तरह ध्यान देने से बकरी में मांस के साथ साथ दूध में भी वृद्धि हो सकेगी। बकरी पालन में जितना जरूरी बकरी का होना है, उतना ही जरूरी सही जानकारी का भी होना है, और सही जानकारी के लिए किसान या पशुपालकों को प्रशिक्षण लेना चाहिए। साथ ही मौसम के हिसाब से छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर बड़े नुकसान की आशंका से बचा जा सकता है और पशुपालन से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।
0: रेडियो टांटिया वी 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने बकरी पालन की देखरेख किस तरीके से हमें करना चाहिए, किस तरीके से हमें बकरी पालना चाहिए, कौन कौन से पौष्टिक आहार उनको देना चाहिए और किस तरीके की सावधानी हमें बरतनी चाहिए उनकी रख रखाव के लिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी जानने के बाद साथियों हमारा वक्त हो चुका है अगले सेगमेंट का, यानी सफल महिला किसान की कहानी सुनाने का। लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपका रेडियो अपनी बात है।
1: पर्यावरण में हो रहे बदलाव के साथ साथ युवा वर्ग की सोच भी बदल रही है। युवा अब हर वो कदम उठा रहे हैं जो प्रकृति और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यही वजह है कि युवा अपनी सोच को नया रूप देकर अपने बनाए उत्पादों को बाजार में ला रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही युवा उद्यमियों से मिलवाएंगे जो बेहतर स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक पहल कर रहे हैं। हरजोत की रुचि घर के बने उत्पादों में थी। छोटे रूप में वो घर में कुकीज और अन्य उत्पाद बनाया करती थी। अपने इस शौक को व्यावसायिक रूप देने के लिए उन्होंने PAU से प्रशिक्षण लिया। वो बताती है कि पहले उनके 20 से 100 ग्राहक ही थे, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान उन्हें मार्केटिंग के तरीके भी सिखाए गए। इन तरीकों से हरजोत को अपने उत्पाद को विस्तार देने में मदद मिली। आज हरजोत के करीब 1000 ग्राहक हैं जो उनके उत्पाद ले रहे हैं। वो बताती हैं कि PAU से उन्हें करीब 16 लाख की ग्रांट भी मिली, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने में काफी सहायता मिली। क्या है उनकी आगे की रणनीति, जानते हैं उन्हीं से।
6: मैंने पहले अपने प्रोडक्ट्स घर से बनाने शुरू किए। घर से मैंने अपनी डॉटर के लिए स्टार्ट किया था। उसके बाद मेरे को लगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम मार्केट से ले रहे हैं, ये केमिकल और फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो मेरे को लगा कि आजकल जो नीड है वो विदाउट प्रिजर्वेटिव्स की है। तो उसके लिए मैंने ट्रेनिंग्स यहाँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ली। उसके बाद मेरे को पता चला कि यहाँ पे RKVY रफ्तार प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर में है, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया और वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई। तो सिलेक्ट होने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट्स थे, जैसे मैं बना रही थी, तो जैसे मेरे 20 या 100 कस्टमर्स थे, इन्होंने यहाँ से मेरे को पैकेजिंग का कैसे मार्केटिंग करनी है सब कुछ बताया। तो उसी को मैंने फिर वही, मेरी प्रोडक्शन भी बढ़ गई, मेरे 1000 से ऊपर अब कस्टमर्स हैं, जिसके हिसाब से अब मेरे को गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिली है। तो उसके साथ साथ मैंने अब जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो कुकीज़ हैं, मिलेट कुकीज़ हैं, ग्लूटेन एलर्जी वाले लोगों के लिए हैं, वीगन्स के लिए हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं। अब हम अपनी आउटलेट भी खोलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो सारी प्रोडक्शन है, ये हम खाली ये नहीं कि मैं अपने तक सीमित रखना चाहती हूँ। अगर मैं काम शुरू कर रही हूँ तो मेरे अंडर अब 20 से 25 जिन लोगों को जो अनएम्प्लॉय हैं, जिनको आगे गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती या और जिनके स्किल्स अभी इतने नहीं हुए, उनको दे रही हूँ। क्योंकि मैंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो न्यू जनरेशन, जो कमिंग जनरेशन है, वो आ रही है, वो भी अपने जो उसका पैशन है उसको प्रोफेशन बनाए, ताकि हम किसी पर डिपेंड ना होए। तो
1: वहीं PAU के छात्र परमप्रीत का कहना है कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही खुद का व्यवसाय शुरू किया। परमप्रीत का उद्देश्य लोगों को हेल्दी सलाह देने का है। इसके लिए उन्होंने एक किट तैयार की जिसमें शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व मौजूद हैं। परमप्रीत मानते हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय का अभाव है, इस वजह से वो संतुलित और पोषण से भरपूर भोजन से दूर होते जा रहे हैं। इसी कमी को भरने के लिए परमप्रीत ने ये कदम उठाया है। वे बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया, साथ ही पीएयू ने उन्हें वित्तीय सहायता भी दी।
7: मैंने अपनी शिक्षा के साथ साथ मैंने एक स्टार्टअप, मेरे एक पार्टनर है अनुपमा, वो उनके साथ मिलकर हमने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, वो है माइक्रोग्रीन्स और एक्जॉटिक वेजिटेबल्स का। तो हमने अपनी जो शिक्षा है उसके साथ साथ ही स्टार्ट किया था, लेकिन अब हम इसे कंपनी के रूप में अभी एक स्टार्टअप रजिस्टर करा दिया है। जो हमारा स्टार्टअप है वो इनक्यूबेट कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर, जहाँ पे हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है कि हम कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे अपने प्रोडक्ट को शोकेस करना है। सारा का सारा हमें हेल्प करते हैं डॉक्टर रियाड सर, जो हमारे पाबी प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंडर हमें गवर्नमेंट फंडिंग भी मिली हुई है, उसके अंडर हमें 12 लाख की जो गवर्नमेंट फंडिंग मिली हुई है जिसमें हम इंडोर फार्मिंग का प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है। इंडोर फार्मिंग हम क्या कर रहे हैं, जैसे माइक्रोग्रीन्स का हमारा है, माइक्रोग्रीन्स क्या होते हैं कि जो छोटे फॉर्म के कह सकते हो 10 दिन की ग्रोथ है पौधे की बीज से उगने तक, वो उसे माइक्रोग्रीन कहते हैं। तो वो काफी न्यूट्रिशियस होते हैं और उसके साथ साथ हमारे काफी ऐसी वेजिटेबल्स भी हैं जैसे केल हो गया या स्विस चार्ड हो गया या मैस्को ब्रोकली हो गया, जो डिफरेंट टाइप्स की एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं जो काफी न्यूट्रिशियस होती हैं लेकिन हमारी मार्केट में नहीं मिलती हैं।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
0: रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने बकरी पालन की देखरेख किस तरीके से हमें करना चाहिए, किस तरीके से हमें बकरी पालना चाहिए, कौन कौन से पौष्टिक आहार उनको देना चाहिए और किस तरीके की सावधानी हमें बरतनी चाहिए उनकी रख रखाव के लिए।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
8: आइए सुनते हैं अपनी ही संस्कृति का एक और सुंदर गाना।

0: था।
1: दोस्तों हम सुन रहे हैं खेती किसानी कार्यक्रम और इस प्रोग्राम में हमने इस कार्यक्रम के द्वारा हमने काफी जानकारियां एकत्रित की है, वो चाहे हमारे बीजों को लेकर हो, पशुपालन को लेकर हो और अन्य कई प्रकार की चीजों में हमने किस तरीके से खेती को किस तरीके से हमको ध्यान में रखना है, उसका समय समय पर हमें कौन कौन सी सावधानियों को रखना है, इन सब चीजों को लेकर अभी हमने चर्चा की थी दोस्तों। तो आइए सुनते हैं एक और हमारी संस्कृति का एक और सुंदर सा गाना।

0: और के
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और इन महत्वपूर्ण सेगमेंट को सुना हमने, जाना कि किस तरीके से इस माह में, चूंकि मई महीने का सीजन चल रहा है, उसमें किस तरीके से हमारे किसान साथी अपने खेतों में जुताई करें और किस तरीके से बागवानी लगाते समय क्या क्या सावधानी उसमें बरतनी चाहिए, उस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, इस बारे में बातचीत को सुना। साथ साथ में सफल महिला किसान की बातचीत को सुना। साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में कल फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।

0: सुधा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपका जन्म स्थान क्या है और उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
1: नमस्कार समीर जी और मेरे प्यारे दोस्त सुनने वालों को। मेरा जन्म स्थान है चेन्नई, वहाँ पर सुंदर समंदर का किनारा है, उसे मरीना बीच के नाम से भी जाने जाते हैं और वो टॉलीवुड यानी कि तमिल फिल्मों के लिए बहुत ही फेमस है, वहाँ काफी सारी शूटिंग्स होती रहती है।
0: बहुत बढ़िया, तो लीजिए दोस्तों सुनते हैं सुधा जी की ही आवाज में ये गीत।

0: बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर गीत। सुधा जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि अभी आप कहाँ रहते हैं और उस जगह के बारे में क्या खास है?
1: जी, अभी मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। ये मोदी जी का शहर है, उससे बड़ी रोचक बात और क्या हो सकती है। और यहाँ पर देखने लायक बहुत सारे खूबसूरत, जैसे सीधी सैयद की जाली है, गांधीनगर में अक्षरधाम बहुत फेमस है।
0: जी, तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं सुधा जी की ही आवाज में ये एक और गीत।

0: सुधा जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या करती हैं, किस तरह के प्रोफेशन में हैं या थी और कब से?
1: जी, मैं हूँ तो एक रिटायर्ड टीचर और मैंने उन करीबन 30 साल तक स्कूल में सेवा की है, लेकिन मेरा पहला पैशन हमेशा संगीत रहा है।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी। तो लीजिए दोस्तों, सुने सुधा जी का ही गाया हुआ एक और गीत।

0: बहुत सुंदर गायकी, बहुत ही प्यारा गीत। सुधा जी, गाने का शौक आपको कब से हुआ, कब से गा रही हैं आप?
1: संगीत का शौक बचपन से हुआ है और मुझे ये संगीत विरासत में मिला है। मेरे भैया, उनकी बहुत बड़ी ऑर्केस्ट्रा थी चेन्नई में। मेरे पिताजी बहुत अच्छा गाते थे। अभी एट प्रेजेंट माय मदर एट द एज ऑफ 91, वो बहुत ही सुंदर गाती है
0: जी। तो आइए दोस्तों, हो जाए एक और गीत सुधा जी का।

0: सुधा जी, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको संगीत में क्या क्या पसंद है, किस तरह के गाने, फिल्मी गाने, नॉन फिल्मी गाने, गजल्स, भजन या कुछ और?
1: संगीत एक ऐसी चीज है जिसमें पसंद ना पसंद की बात होती नहीं है। फिल्में हो या नॉन फिल्में हो, गजल हो या भजन हो, शास्त्रीय हो या नॉन सेमी क्लासिकल हो, सारे म्यूजिक, हर तरह के संगीत मुझे पसंद है, लेकिन क्लासिकल मुझे ज्यादा पसंद है।
0: जी, तो लीजिए दोस्तों, सुधा जी की ही आवाज में एक और गीत।

0: बहुत ही प्यारा गीत। सुधा जी, आपका सबसे पसंदीदा गायक या गायिका कौन है और क्यों?
1: पसंदीदा गायक और गायिका तो लिस्ट बहुत, सब इतनी अच्छी सुंदर गायिकाएं हैं, इतनी बढ़िया आवाज, मधुर आवाज, सबके बहुत अच्छे गाते हैं सब जैसे, लेकिन लता जी का स्थान आज तक किसी ने नहीं लिया है, तो मेरी पसंदीदा गायिका भी लता जी है। और अभी क्योंकि तो कोई रीजन नहीं, उसको तो सरस्वती माँ का दर्जा दिया है। और अभी आज के युग में पूछो तो मुझे श्रेया घोषाल बहुत ही पसंद है
0: जी। तो सुधा जी, हमारे सुनने वालों को एक और गीत सुनवाइए।

0: बहुत प्यारा गीत। सुधा जी, आपका सबसे पसंद का गीत कौन सा है और क्यों?
1: गीतों की भी लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है और मैंने जो आज प्रोग्राम में गाए हैं वो सारे मेरे पसंदीदा गीत है
0: जी। तो सुनने वाले हमारे सारे दोस्तों, एक और गीत सुनते हैं सुधा जी का।

0: सुधा जी, आपकी हॉबीज क्या हैं? अपने खाली वक्त में आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मेरी हॉबीज तो है संगीत, मेरा पहला प्यार हमेशा रहा है, और उसके अलावा मुझे योगा बहुत पसंद है, और मैं काफ़ी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में भी बिजी रहती हूँ। मैं स्वामीनारायण सेक्ट से बिलोंग करती हूँ, तो उनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी मुझे बिजी रखती है और मुझे वो बहुत पसंद है
0: जी। तो हमारे सुनने वालों को एक और गीत सुनाइए सुधा जी।

0: सुधा जी, अपने जैसे ही सिंगर्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप?
1: बस मैं सभी सुनने वाले सिंगर्स को यही कहूंगी, गाते रहिए। और हमारा सौभाग्य है कि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जो आजकल काफी लुप्त हो गया था।
0: तो लीजिए दोस्तों, एक और गीत सुधा जी की आवाज में।

0: और सुधा जी, अब वक्त आ गया है जब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए, ऑडियंस के लिए कुछ कहिए, उन्हें कुछ संदेश दीजिए।
1: सुनने वाले दोस्तों को यही कहूंगी, खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मधुर, अपने जिंदगी जैसे गीत संगीत मधुर है वैसे अपनी जिंदगी को भी मधुर बनाइए। थैंक यू सो मच।
0: लीजिए दोस्तों, एक और गीत सुधा जी की आवाज में।

0: बहुत ही सुंदर गीत, बहुत ही सुंदर गायकी। सुधा जी आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपके गीतों को सुनकर सचमुच बहुत मजा आया।
1: लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरी ये आवाज है, ये सब ऊपर वाले की देन है, इनकी कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहे, वही एक प्रार्थना रहेगी। थैंक यू।

तो दोस्तों ये थी सुधा जी अहमदाबाद से। तो दोस्तों मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। हम जल्द ही और भी इसी तरह के कलाकार आपके सामने लेकर आएंगे। सुनना ना भूलिएगा और अकेले मत सुनिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को भी बताइए। फिर मुलाकात होती है, सुनते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। आज के कलाकार का एक बहुत ही मासूम, बहुत ही प्यारा, बहुत ही पवित्र, पायस, ब्यूटीफुल एपिसोड लेकर मैं आपका रेडियो दोस्त समीर हाजिर हैं। और आज जो टैलेंट हमारे साथ है, आप उनकी बातचीत सुनेंगे दोस्तों, उनके गीतों का लुत्फ उठाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। मैं वेलकम करूँगा मनस्वी का। बाकी मनस्वी अपने बारे में खुद बताएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। बस इतना सा ज़रूर बताना चाहूँगा मैं दोस्तों कि मनस्वी एक बिल्कुल यंग लेडी है, शी इज़ ओनली 14 ईयर्स ओल्ड, एंड वी सिंसियरली वेलकम मनस्वी इन अवर आज के कलाकार फैमिली एज द यंगेस्ट सिंगर, यंगेस्ट टैलेंट, यंगेस्ट प्रतिभा। तो मनस्वी आपका स्वागत है, वेलकम टू अवर प्रोग्राम। और सभी लोगों से बात कीजिए ना, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए।
1: जी सर, नमस्ते, मेरा नाम मनस्वी है और मैं बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट सिंगिंग और सभी गाने बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, स्पेशली 90s के गाने हिंदी में। और I am right now studying in 9th grade और मुझे श्रेया घोषाल जी के गाने बहुत अच्छे लगते हैं।
0: Okay. Oh God, oh so cute. I understand, Manasvi. You be very very comfortable with our family. हम लोग सब आज के कलाकार एक family हैं। तो दोस्तों आपने जाना कि मनस्वी को श्रेया घोषाल के गीत बहुत पसंद है, एंड सरप्राइजिंगली बड़ी प्यारी सी बात कही उन्होंने कि उनको 90s के सॉन्ग्स पसंद है। तो मनस्वी आपने बताया आप 9th में हैं और आपको 90s के सॉन्ग्स पसंद हैं, तो कोई स्पेसिफिक सॉन्ग है, कोई गाना है 90s का, जैसे आपने कहा ना, जो आपको बहुत बहुत पसंद हो, हमको उसके बारे में बताइए ना।
1: सर, मुझे लगता है कि वो फेवरेट गाना बदलता रहता है, क्योंकि कभी कभी मैं एक नया गाना सुनती हूँ तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे और फिर
0: वो चेंज हो जाता है।
1: लेकिन हाँ,
0: सो क्यूट। ओके, फिर भी चलो ना यार, बताओ ना, दो तीन गाने जो चेंज हो गए होंगे। अच्छा चलो, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है फेवरेट वो तो बता दो।
1: अभी
0: टेक योर टाइम, आराम से सोचो, बताओ ना।
1: जी सर, अभी थोड़ा और मॉडर्न गाना है ये,
0: चलेगा,
1: सुन साथिया, का नाम है सुन साथिया।
0: थोड़ा सा गुनगुना के बताओ ना यार।
1: जी सर, सुन साथिया माहिया बरसा दे इश्का की साहिया।
0: वाओ, सो ऐसा होता होगा ना मनसी कि आप अपने आप से, जैसे ये वाला गाना अभी आपको आपके मुंह पे चढ़ा हुआ है तो दिन भर इधर उधर कहीं आते जाते गुनगुनाते रहते होंगे इसको, है ना।
1: जी सर बिल्कुल।
0: या फिर शायद आपके फोन में आपने इसको डाल के रखा होगा तो आप लगातार इसको सुनते रहते होंगे, करेक्ट।
1: जी सर,
0: कौन सी फिल्म का गाना है बेटा
1: ये? ABCD2 यानी अच्छा, एनीबॉडी कैन डांस 2 मूवी का है।
0: ओके, तो यार एनीबॉडी कैन डांस तो वही 90s की मूवी है ना?
1: नहीं, 2000 के बाद ही,
0: 2000 के बाद की है क्या? चलो, वाओ। तो दोस्तों आपने सुन भी लिया, मनस्वी ने गुनगुना के बताया भी कि कौन सा गीत अभी उनका फेवरेट चल रहा है। और जाहिर सी बात है, गीत

0: ब्यूटिफुल सिंगिंग एंड ब्यूटिफुल स्टार्ट। तो चलिए मनस्वी आगे चलते हैं, थोड़ा सा म्यूजिक के बारे में और जानते हैं कि आपने सिंगिंग कब से शुरू की, पहले तो मुझको ये बताओ। और दूसरा, यूं तो आपने बता ही दिया कि श्रेया घोषाल आपके फेवरेट सिंगर हैं, करेक्ट? तो साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि 90s के गाने आपको पसंद है। तो चलिए बात यहां पर सिर्फ ये रह जाती है कि आपने सिंगिंग कब से शुरू की और किसने आपको मोटिवेट किया।
1: सर मैं बहुत सालों से मतलब क्लासिकल सिंगिंग सीख रही हूँ, कर्नाटिक वोकल्स, कर्नाटिक म्यूजिक, उसे मैंने 4 साल सीखा है। और अभी मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीख रही हूँ। और
0: या टेक इट इजी, टेक योर टाइम, आराम से सोच के बोलो, कोई बात नहीं।
1: मैंने अपना जूनियर्स एग्जामिनेशन दिया है कर्नाटक में। और अभी मैं शंकर महादेवन एकेडमी में हिंदुस्तानी सीख रही हूँ सर।
0: ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड। दोस्तों देखिए ना, इतना प्यार से वो अपने म्यूजिक को प्यार करती हैं, लव करती हैं, पैशनेट हैं कि वो अभी शंकर महादेवन एकेडमी से हिंदुस्तानी म्यूजिक सीख रही हैं। बाकी कर्नाटका म्यूजिक वो सीख चुकी हैं। ऑफ कोर्स अब सभी सोच के देखिए ना, अभी से मनस्वी इतना पैशनेट है अपने म्यूजिक को लेकर, लगातार लर्निंग लर्निंग एंड लर्निंग, तो कहाँ तक वो जाएंगी। We wish all the very best and of course, अब तो हम मनस्वी से जुड़ गए हैं, पूरी फैमिली हमारी, all 350 singers are there with मनस्वी, और हम उसको देखेंगे कि वो कितना दूर तक जाती हैं। Amazing मनस्वी, amazing, congratulations.
1: Thank you sir.
0: तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए मनस्वी के ही गाए हुए इन गीतों का आनंद ले। और जब आपको ये पता चल चुका है कि मनस्वी कितना मेहनत कर रही हैं, तो आपको इन गीतों को सुनने में और भी मजा आएगा। सुनिए ना।

0: ब्यूटिफुल। मनस्वी चलिए अपने बारे में थोड़ा सा और बताते हुए मुझे ये बताइए, म्यूजिक के अलावा, एक्सेप्ट म्यूजिक, म्यूजिक को छोड़ दीजिए, म्यूजिक तो आपका फर्स्ट लव है, फर्स्ट पैशन है, तो वो तो कहीं नहीं जाएगा, है ना। लेकिन म्यूजिक के अलावा आप किस चीज को लेकर पैशनेट हैं? मेरा कहने का मतलब है मे बी सम स्पोर्ट्स, मे बी ड्रामा एक्टिंग, मे बी बुक्स, मे बी राइटिंग, मे बी पोइट्री, मे बी पेंटिंग, आई डोंट नो, आप किस चीज को लेकर पैशनेट हो?
1: सर, मैं बैडमिंटन काफी खेलती हूँ।
0: सो क्यूट, ओके।
1: और मतलब जब भी हो मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत हूँ।
1: और एक और पैशन है मेरी कि मैं गानों को विजल कर सकती हूँ, तो वो कॉमनली करती रहती हूँ।
0: ओ माय गॉड, दैट इज येट अनदर वेरी हार्ड स्किल। आप गानों को विसिल करने के लिए कितना ब्रेथ चाहिए होता है, कितना सांस आपको भर के रखना पड़ेगा तब आप विसिल कर पाएंगे, करेक्ट?
1: यस सर।
0: सो इट इज नॉट दैट इजी, आई अंडरस्टैंड। और जो आपने पहले कहा बैडमिंटन, तो मैं तेरे को सच बताऊं मनसी बेटा, मैं स्पोर्ट्स में कभी भी अच्छा नहीं था, मतलब कभी खेला ही नहीं एक्चुअली, बचपन से कभी नहीं खेला। लेकिन सारे के सारे स्पोर्ट्स में, आपकी कसम झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरे को सिर्फ बैडमिंटन ही अच्छा लगता है। आई मीन बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, नाम ले तो वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, मे बी टेबल टेनिस, मे बी टेनिस, मैं क्रिकेट का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे क्रिकेट अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन इन सब चीजों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद बैडमिंटन रहा। तो अभी आप बैडमिंटन खेलते हैं, तो क्या आप अपने स्कूल वगैरह में भी खेलते हैं?
1: जी सर, मतलब कोई कंपटीशन हो तो बिल्कुल खेलती हूँ, और उसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी खेलती हूँ।
0: दैट्स वेरी नाइस। तो आपके जहाँ पर भी आप रहते हो, आपके पास आसपास कोर्ट्स होंगे कोई, या तो सीमेंटेड कोर्ट होगा या वुडन कोर्ट होगा, कैसा कोर्ट है?
1: दोनों है सर।
0: वुडन कोर्ट भी है?
1: हाँ शायद।
0: दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि एक्चुअली बैडमिंटन का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस ना वुडन कोर्ट पर ही आता है।
1: जी सर।
0: आपको मालूम है क्यों? क्योंकि लकड़ी के ऊपर खेलने से ना, लकड़ी से आपको पुश मिलता है जंप लेने के लिए या फौरन रिस्पॉन्ड करने के लिए, ज्यादा अच्छा पुश मिलता है, और आपके नीज वगैरह को भी चोट नहीं लगती इसलिए।
1: जी सर, मुझे पता नहीं था।
0: ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो दोस्तों चलिए, येट अनदर बैडमिंटन स्टार इज इन मेकिंग हमारी आज के कलाकार फैमिली में। I am so happy about that. तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए अभी तो मनस्वी के गीतों का मजा लें जो उन्होंने हमारे लिए प्रिपेयर किए, आइए सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया मनस्वी, दैट वॉज सीरियसली अमेजिंग. ओके, आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे या शायद रिलेटिव्स, कोई कजिन, कोई यू नो अंकल आंटी चाचा जिनको बोलते हैं या ताऊजी जिनको बोलते हैं, आप क्या बोलते हो मुझे मालूम नहीं है, तो या फिर फ्रेंड्स होंगे जो आपकी सिंगिंग को मोटिवेट करते होंगे कि नहीं यार मनस्वी गाओ, ये वाला गाना गाओ, ये वाला गाना गाओ, ये वाला गाना गाओ, इसकी प्रिपरेशन करो, क्योंकि ऑलरेडी आप कर्नाटक म्यूजिक सीख चुके हो, अब हिंदुस्तानी म्यूजिक सीख रहे हो. सो माई क्वेश्चन इज, कौन कौन लोग हैं वो जो आपको लगातार मोटिवेट करते हैं, मे बी योर मॉम डैड, कोई भी, उनका नाम लीजिए, क्योंकि अगले सॉन्ग्स हम उनको ही डेडिकेट करेंगे.
1: जी सर, मुझे लगता है सबसे ज्यादा मोटिवेट मुझे मेरी मम्मी करती है.
0: आहा, ओके.
1: और पापा भी बहुत मोटिवेट करते हैं. और उनके अलावा स्कूल में मेरे दोस्त बहुत बार कहते रहते हैं कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, गाते रहो तुम, कोई गाना गाओ वैसे.
0: ऑलराइट, ओके. तो ये लोग हैं जो लगातार, एक दो फ्रेंड्स के नाम लो ना यार, उनको भी अच्छा लगेगा, अगर वो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो उनको अच्छा लगेगा कि मनस्वी ने हमारा नाम लिया. मतलब आप सभी दोस्तों को प्यार करते होंगे, आप सभी दोस्त अच्छे होंगे आपके, फिर भी 2-4-5 जितने भी नाम आप लेना चाहो, यू आर मोस्ट वेलकम.
1: यस सर, मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसका नाम धन्विता है, वो बहुत मोटिवेट करती है मुझे. और मेरी मतलब और बहुत फ्रेंड्स है, जैसे सानविका है उसका नाम, वो सबसे ज्यादा कहती रहती है कि तुम्हारा मतलब आवाज बहुत बहुत ही अच्छा है.
0: ओके, दैट्स सो ब्यूटीफुल. चलिए फिर दोस्तों, किस बात की देर, हम लोग ये गीत सुनते हैं जो मनस्वी के मम्मी पापा और उनकी ये दो बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड्स को डेडिकेट करते हैं. ये लीजिए मनस्वी की फ्रेंड्स, यह गीत मनस्वी ने आपके लिए प्रिपेयर किया, सुनते हैं.

0: ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। चलिए मनस्वी जी, अब ये बताओ आपके म्यूजिक का पैशन और बैडमिंटन, चलिए ये दो चीजें तो हैं ही, आप अपने म्यूजिक के पैशन को किस लेवल पर ले जाना चाहते हो? अभी तो देखिए आप 14 इयर्स के हो, लेट्स से एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं 10 इयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 10 साल के बाद, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन म्यूजिक? व्हाट आर योर प्लान्स?
1: सर, मैं पहले साउंड इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती हूँ।
0: ओके।
1: और फिर आईड लाइक टू डू प्लेबैक सिंगिंग, मतलब कोई रियलिटी शो में जाकर उससे कोई स्टार्ट मिल सकता है मुझे। तो वैसे, और फिर मैं अपनी ही स्टूडियो को खोलकर मैं ही खुद गाना बना के से गाना चाहती हूँ सर।
0: ओके, तो इस चीज के लिए आपको, यू आर राइट, साउंड इंजीनियरिंग पहले आपको सीखनी होगी। द सेकेंड थिंग इज दैट यू नीड टू लर्न द कंपोजिशंस, राइट?
1: यस सर।
0: तो वो ऑलरेडी आप कर्नाटक म्यूजिक कर चुके हैं और आप हिंदुस्तानी म्यूजिक कर रहे हैं, तो राग और जो भी क्लासिकल चीजें हैं वो आपको आ जाएंगी, सरगम आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएंगी, तो आप कंपोज करना शुरू कर सकते हैं। मजेदार वाली बात यह है दोस्तों कि मनस्वी उस एरा में है जहां पर ऑडियो इंजीनियरिंग या कॉम्पोजिशंस करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि एआई, कंप्यूटर सिस्टम्स बहुत इजीली हमारे पास अवेलेबल है। एनीबडी हु सो एवर इज पैशनेट एंड इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस कैन डू इट एट होम। दो मनस्वी हमारे साथ है, मुझे लगता है बहुत जल्द, मे बी अ ईयर और टू, हमें मनस्वी के कंपोज किए हुए और गाए हुए गीत सुनने को मिलेंगे। सेकेंडली, मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि वी हैव अ म्यूजिक प्रोड्यूसर इन अवर फैमिली, कैजाद पटेल मुंबई में है, जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं। ही कैन ऑलवेज ऑलवेज हेल्प मनस्वी इन लर्निंग। अब क्योंकि वो प्रोफेशनल प्रोड्यूसर हैं, इज अ सिंगर ऑल्सो, तो ही कैन वेरी वेल हेल्प मनस्वी इन क्रिएटिंग हिज हर ओन ड्रीम कमिंग इन टू रियलिटी। ब्यूटिफुल, ऑल द वेरी बेस्ट मनस्वी, हम इंतजार करेंगे आपके साथ, आपके इस सपने को बनते हुए देखेंगे। चलिए ना, तब तक ये गीत हम सुनते हैं आपके इन सपनों के नाम।

0: ब्यूटिफुल सिंगिंग अगेन। मनस्वी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वैसे आपने बोला बहुत कम, ज्यादा तो मैं ही बोलता रहा लेकिन बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके। तो बस अब सारा आज के कलाकार की फैमिली मेंबर को आपके दिल में जो बात है ना, सच्ची सच्ची कह दीजिए।
1: थैंक यू सो मच ये मौका देने के लिए, क्योंकि ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए कि मेरे गाए हुए गाने ऐसे दूसरों को सुनने का मौका मिलेगा। थैंक यू, बस इतना ही कहना चाहती
0: हूँ। डोंट वरी अबाउट इट, आप लगातार हमारे साथ टच में रहेंगे, हमारे ग्रुप में रहेंगे, और जितने भी गीत आप गाएंगे प्लीज हमारे साथ शेयर करते चलना, सो दैट वी कैन नो कि मनस्वी किस स्पीड से अपने विजन की तरफ बढ़ रही हैं। थैंक यू सो मच मनस्वी अबाउट फॉर योर टाइम, फॉर योर थॉट्स, फॉर योर पोलाइटनेस, फॉर योर अम्बलनेस एंड फॉर योर सिंगिंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, प्लीज टेक केयर।
1: थैंक यू सर।

तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कलाकार, जिनके गीत हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा हुनर कभी सीमाओं का मोहताज नहीं होता। हर कला के पीछे छुपा होता है समर्पण, संघर्ष और एक ऐसा सपना जो दुनिया को कुछ नया देने की चाह रखता है। उम्मीद है आज की ये मुलाकात आपको भी अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ने की तो प्रेरणा देगी। इसी तरह नए कलाकारों और उनके प्रेरणादायक गीतों के साथ हम फिर मिलेंगे आज के कलाकार में। नमस्कार।

90.8 FM झाबुआ की आवाज में आपका स्वागत है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ भक्तिमय दिव्य दर्शन में। ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सुनते रहें रेडियो टंटिया भील 90.8 FM। सन 1884 की बात है। कलकत्ता में उन दिनों चैतन्य लीला नाटक की धूम मची हुई थी। बड़ी संख्या में लोग वो नाटक देखने जा रहे थे और उसकी काफी प्रशंसा भी कर रहे थे। कुछ भक्तजन स्वामी रामकृष्ण परमहंस को महान भक्त चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर आधारित इस नाटक को दिखाने के लिए नाट्य गृह में ले गए। विनोदिनी दासी नामक नगर वधु ने चैतन्य लीला में सजा